0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Chillax with Radio Musty.
1: गुड मॉर्निंग. वैसे यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, वक्त गुजर रहा है वो भी तेज़ी से. एंड अभी अभी तो वीकेंड में एंट्री ली थी हमने. एंड दिस सून इट्स संडे मॉर्निंग. 5:07 हुए हैं ना मॉर्निंग के 3 घंटे यानी कि 8 बजे तक. नमनी आपके साथ में होगी. सो स्टे ट्यून्ड यही आर एम टू वीडियो मस्ती पर, क्योंकि आपके इस मॉर्निंग को बनाने वाले हैं हम वेरी अमेजिंग आपके ही आर एम टू वीडियो मस्ती पर.
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: Well friends, खुशियां खुशियां होती जिंदगी में तो लाइफ सेट हो जाती ना, लेकिन सोचिए अगर हम हर वक्त खुश ही रहते तो स्ट्रगल की वैल्यू कैसे समझते, मेहनत के बाद मिलने वाली सक्सेस की खुशी कैसे फील करते और मुश्किल वक्त के बाद सुकून की इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत कैसे समझते। जिंदगी में ना हर इमोशन का अपना ही रोल होता है। कभी सैडनेस हमें स्ट्रांग बनाती है, कभी स्ट्रगल हमें पेशेंस सिखाता है और कभी वेटिंग हमें ग्रैटिट्यूड का। इसलिए हर वक्त हैप्पी रहने की जरूरत नहीं है, बस जो भी फेज में है उसे एक्सपीरियंस कीजिए, उसे सीखिए और जिस चीज के लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि शायद लाइफ सेट तब नहीं होती है जब सब कुछ परफेक्ट हो। लाइफ तब ब्यूटीफुल लगती है जब हम इम्परफेक्ट मोमेंट्स में भी मीनिंग ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे ही आपके लिए टाइमलेस रेट्रो सॉन्ग्स लाते रहेंगे, आप बस कनेक्टेड रहिए अपने आरएमजू रेडियो मस्ती के साथ।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: साढ़े पांच बजे है और हमारे कुछ दोस्त जुड़ चुके हैं. बिग हेलो टू जयशन जी जो सभी फ्रेंड्स को विश कर रहे हैं वेरी ग्रेट संडे. अब्दुल जी और सायरा बानो जी भी साथ दे रहे हैं. रवि गाना जारी किए कर रहे हैं अपने दो साथियों के लिए नुशरीन शाकिल केशव जो कि काम कर रहे हैं इस वक्त. एंड नेक्स्ट मैसेज वी हैव अपने नाम नहीं लिखा लेकिन अपने लिखा है प्यारी सी सुबह में आपका स्वागत है. हमारे यहाँ आज कनाडा में बेटा कृष्ण सुमारो का जन्मदिन है और आपके जरिए विश कर रहे हैं तीन भाई उत्तम सुयश शर्वान दो बेटे मिलान शैलान कैथोबोन से और पापा सूर्यदेव मम्मी माला तथा सभी सुमारो फैमिली की तरफ से बिग विशेज बेस्ट विशेज कृष्ण सुमारो के लिए. सो हैप्पी बर्थडे टू यू जी. आई होप यू हैव अ ग्रेट डे वाइल लिसनिंग टू आई एम टू रेडियो मस्ती. एंड ऑल्सो आपके लिए जल्द ही चलाने वाले हैं हैप्पी बर्थडे वाला गाना. एंड नेक्स्ट गाना करते हैं जो दोस्त जो साथ दे रहे हैं ऑन दिस लवली संडे मॉर्निंग.
0: With Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: ये चलिए देखते हैं आज के सितारे आपके लिए क्या कह रहे हैं। और हाँ, अपना लकी नंबर कलर नोट जरूर कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं विद
2: एरीज मेष राशि।
1: जी हाँ, आज का दिन फैमिली और अपनों के साथ वक्त बिताने का है। पुरानी यादें शेयर करके दिल खुश होगा। लकी कलर आज आपका है रेड और लकी नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज थोड़ा स्लो डाउन कीजिए। जो चीज़ें आपने इतने सालों में अचीव की है उनके लिए खुद को क्रेडिट दीजिए। लकी कलर आज आपके है घुई और नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज किसी पुराने दोस्त या रिलेटिव से बात हो सकती है। एक सिंपल सा फोन कॉल अभी संडे को स्पेशल बना सकती है। लकी कलर आज आपके है पिंक और नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि।

0: घर का सुकून और फैमिली का प्यार आज आपकी सबसे बड़ी खुशी रहेगी। दिल की बात अपनों से जरूर कहिएगा। कल आपका है व्हाइट और नंबर है 2।
1: लियो सिंह राशि,
0: आपकी पर्सनालिटी आज नेचुरली शाइन करेगी, लेकिन संडे है बॉस, थोड़ा रेस्ट भी बनता है। लकी कल आपका है गोल्डन और नंबर है 1।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: वैसे जो काम पूरे हफ्ते पोस्टपोन करते आए हैं उनमें से सिर्फ जरूरी काम ही कीजिए, बाकी कल देखेंगे। लकी कल आपका है लाइट ब्लू और नंबर है 5।
1: लीब्रा तुला राशि,
0: आज मन की शांति को प्रायोरिटी दीजिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी खामोशी भी खूबसूरत होती है। लकी कल आपका है रेड और नंबर है 6।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। दिल अगर कह रहा है कि किसी अपने से मिलना चाहिए तो मिल आइए। लकी कल आपका है मरून और नंबर है 8।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: संडे का मतलब है थोड़ा आउटिंग, थोड़ा म्यूजिक और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी। आज कुछ नया एक्सपीरियंस करने का मूड बन सकता है। लकी कल आपका है येलो और नंबर है 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आपने बहुत मेहनत की है, आज खुद को थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए। हर वक्त कुछ अचीव करना जरूरी नहीं है, कभी कभी एंजॉय करना भी अच्छा होता है खुद के लिए। लकी कल आपका है ब्राउन और नंबर है 4।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज किसी की छोटी सी काइंडनेस आपके मूड को ब्राइटन कर सकती है और आप भी किसी के संडे को एक स्माइल से बेहतर बना सकते हैं, सो स्माइल करना जरूर। लकी कल आपका है स्काई ब्लू और नंबर है 7।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: इमोशंस आज आपके थोड़े नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं, पुराने गाने, पुरानी यादें और अपने लोग संडे के लिए परफेक्ट कॉम्बो है। लकी कल आपका है पर्पल और नंबर है 3।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: अच्छी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: अच्छा हुआ मिली, वरना मेरा गेम खराब हो जाता।
2: एक्सक्यूज मी, आपको मेरा नाम किसने बताया?
1: आपका नाम मुझे क्या मालूम, आपका नाम क्या?
2: अभी अभी तो आपने कहा अच्छा हुआ मिली।
1: ओ, वो मैं अपने बॉल के लिए कर रहा था, अच्छा हुआ मिली। आप भी मिली है क्या?
2: जाइए यहाँ से, एक तो मेरी पेंटिंग खराब कर दी ऊपर से।
1: पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग?
0: रविवार 27 सितंबर को MBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म बाबुल 2006 की मूवी सलमान खान और अमिताभ बच्चन पर फिल्माई गई बाबुल।

0: Chillax with Radio Musty.
1: पांच बजकर 56 मिनट हुए हैं और पहला हवा खत्म होने को है। मिलेंगे जल्द ही संक्षिप्त समाचार के लिए। फिर ना हुआ लता जी की आवाज में इस पहले हवा का क्लोजिंग करते हैं तूने वो रंगीले गाने के साथ। सो आई होप आप एंजॉय करें और अगर अभी अभी आप उठे हो और कनेक्टेड हो चुके हो आरएम जो रेडियो मस्ती के साथ, गुड मॉर्निंग।
0: With Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Welcome to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Suprabhat, subah ki 6 baje hai. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे करुणा जी नमस्कार.
5: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार. एमएमएम बीते कल, आज और आने वाला कल, कर्तव्य और जिम्मेदारी, यह विषय चुना गया है एमएमएम के 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर, जो कि इस रविवार 27 सितंबर को गैजू में मनाया जाएगा. जनवरी 2027 से निजी माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में एक और बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि दो शैक्षणिक संस्थानों को दी जाने वाली सरकारी वित्तीय सहायता समाप्त हो जाएगी. महोवाकवा का जलस्तर नवंबर के अंत तक 20% तक गिर सकता है, यह अनुमान वाटर रिसोर्सेज कमीशन का है. देश का मुख्य जलाशय फिलहाल 38.5% तक भरा हुआ है. आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है. लोगों द्वारा अपने पितरों को याद करते हुए उनकी तृप्ति के लिए खास तर्पण एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जाएंगी. और विदेश में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा है. ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस का अंतिम महासभा सत्र है. गुटेरेस का कार्यकाल रिकॉर्ड संख्या में वैश्विक संकटों, संघर्षों, महामारियों, जलवायु आपदाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक अहम दौर पर भरा रहा. और अब मौसम की रिपोर्ट. पूर्व की ओर से आने वाले बादल रह रहकर हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे. अनुमान है कि सुबह के वक्त पूर्व, दक्षिण एवं

सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिराएंगे और जहां तहां बारिश हो सकती है। दोपहर में मौसम सुहाना रहेगा सिवाय की ऊंचाइयों पर जहां हल्की बारिश हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। आज के लिए सूर्योदय 5:54 पर, सूर्यास्त होगा 6:07 पर। तो पूरा समाचार बुलेटिन 6:30, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।

0: Chillax with Radio Musty.
1: गुड मॉर्निंग, संडे की सुबह है और अगर आप आरएमजी वीडियो मस्ती के साथ 5 बजे से जुड़े हुए हो तो समझ लीजिए कि आज जो मॉर्निंग को रश बिल्कुल नहीं करना है, बस चाय या कॉफ़ी का कप, थोड़ी फ्रेश हवा और बैकग्राउंड में फेवरेट गाना। दिस इज चिलैक्स और मैं हूं नीलमणि। एंड आज का रूल सिंपल है, स्लो डाउन, ब्रीद इन और संडे को संडे की तरह बिहेव करो, एंजॉय करो विद अ स्माइल। हियर वी गो अगेन विद अनदर चिल्ड सॉन्ग आपके ही आरएमजी वीडियो मस्ती पर।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Masti.
1: वैसे संडे मॉर्निंग्स की एक अलग ही फीलिंग होती है ना। पहले के संडेज घर में रेडियो चलता था, किचन से चाय की खुशबू आती थी और कोई ना कोई बोल रहा होता था कि आज हम कहाँ पर जा रहे हैं, कहीं जाना है क्या। वैसे कुछ चीज़ें बदल लग गई हैं, लेकिन अच्छे गाने और वो संडे की वॉर्म्थ वो कभी पुरानी नहीं होती है। तो ऐसे ही रिलैक्स मोड में आगे बढ़ते हैं विद अनदर गाना। इस बार 90s में ले चलते हैं आपको। गाने का नाम मैं नहीं बताऊंगी, म्यूजिक से ही 90s के फैंस पहचान जाएंगे। तो चलिए सुनाते हैं।
0: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: मुझे आप सुनवाएंगे पूरा समाचार फुनाओ प्यारा सा गाना डेडिकेट करते हैं टू ऑल दोज जो अभी हार्ड वर्क कर रहे हैं वो कुहार अगर अभी अभी शिफ्ट खत्म हुआ है क्योंकि काम के बाद घर तक जाने का सफर टायरिंग होता है तो ऑन द वे कुछ खा लेना अभी के लिए लास्ट गाना हो जाए इस आवर का
1: with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

बजे हैं, वक्त हो चला है समाचार बुलेटिन का। नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। एमएमएम बीते कल, आज और आने वाला कल, कर्तव्य और जिम्मेदारी, यही विषय चुना गया है एमएमएम के 57वें स्थापना दिवस के लिए, जो इस रविवार को 27 सितंबर को रिजवी में मनाया जाएगा। जनवरी 2027 से निजी माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक और बदलाव, क्योंकि दुशैक्षणिक संस्थानों को दी जाने वाली सरकारी वित्तीय सहायता समाप्त। महुआक्वा का जलस्तर नवंबर के अंत तक 20% तक गिर सकता है, ये अनुमान वाटर रिसोर्सेज कमीशन का है। देश का मुख्य जलाशय फिलहाल 38.5% तक भरा। आज से पितृपक्ष शुरू, लोगों द्वारा अपने पितरों को याद करते हुए उनकी तृप्ति के लिए खास तर्पण और श्रद्धांजलि। विदेश में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा, ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का अंतिम महासभा सत्र। और अब समाचार विस्तार से। एमएमएम बीते कल, आज और आने वाला कल, कर्तव्य और जिम्मेदारी, यही विषय चुना

0: आ गया है एमएमएम के 57वें स्थापना दिवस के लिए, जो इस रविवार 27 सितंबर को गेजू में मनाया जाएगा। मॉरिशस के राजनीतिक इतिहास में एमएमएम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये देश की उन राजनीतिक पार्टियों में से एक है जो 60-0 के चुनावी जीत से जुड़ी रही। इनमें सबसे हालिया जीत नवंबर 2024 में हुई थी। 57 वर्षों के दौरान एमएमएम ने उतार चढ़ाव भी देखे, जिसमें कई नेताओं और सदस्यों का पार्टी से अलग होना और नए सदस्यों का जुड़ना शामिल है। दरअसल इस पार्टी का जन्म ऐसे राजनीतिक माहौल में हुआ जिसमें छात्र कार्यकर्ताओं की लामबंदी भी प्रमुख थी। अब हम आपको एमएमएम के एक पूर्व सदस्य और ट्रेड यूनियन नेता जग बिजला का अनुभव सुनाते हैं। उनसे बातचीत की राजमिला सीतामुनि ने, विवरण आस्था गोबिंद का है।
1: Un club des étudiants est créé en 68, devenu un premier forum dans la salle des fêtes du QPIP en juin.
2: स्टूडेंट क्लब की स्थापना 1968 में हुई। क्यूपिप टाउन हॉल में हमारा पहला फोरम लगा। हमने अपील की कि देश का भविष्य नौजवानों के बिना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। युवाओं ने अपना हौसला दिखाया। इसके बाद पार्टी का गठन हुआ, मूवमेंट मिलिटेंट मॉरिशियन। 1977 के चुनाव में भी पार्टी ने भाग लिया। 1972 में नेताओं को जेल भी हुई, कई गठबंधन टूटे और छोटे छोटे गुट भी बने।
0: एमएमएम के एक अन्य पूर्व सदस्य आले लारिडू हैं। वे 17 वर्ष की उम्र में पार्टी में शामिल हुई थी। आज उनकी उम्र 74 वर्ष की है। उनका कहना है कि उस समय पार्टी के कार्यकर्ता मॉरिशस को एक बेहतर द्वीप बनाने के लिए नए विचारों और मुद्दों के साथ आगे आते थे। उनके अनुसार वे चिंताएं आज भी प्रासंगिक हैं। आले लारिडू ने इस बारे में राजमिला सीतामुनि से विस्तार से बात की, विवरण आस्था गोबिंद का।
2: देश के हित के लिए काम करना चाहिए, देश प्रेम है और देश के विकास की इच्छा है। कर्मचारी वर्ग से भी अपील है कि देश के भविष्य और उसकी तरक्की के लिए मेहनत करें। कम संसाधन में भी चुनौतियों को पार किया जा सकता है। हमारे पास बुद्धि है और सही सोचने की क्षमता, सही निर्णय लेने का संकल्प। वैश्विक स्तर पर हमारे सामने अभी बड़ी चुनौतियाँ हैं।
0: जनवरी 2027 से निजी माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक और बदलाव देखने को मिलेगा। दो शैक्षणिक संस्थानों को दी जाने वाली सरकारी वित्तीय सहायता समाप्त हो जाएगी। इसके चलते छात्रों और कर्मचारियों को एक नई व्यवस्था के लिए तैयार रहना होगा। छात्रों की पढ़ाई में निरंतरता सुनिश्चित करने और प्रभावित कर्मचारियों की पुनर्तैनाती के लिए भी उपाय किए जाने हैं। इस बारे में अधिक जानकारी उर्वशी भिखारी और आस्था गोबिंद के साथ।
2: सेंट बार्थोलोम्यूज कॉलेज और रॉयल होलोवे कॉलेज को मिलने वाली सरकारी आर्थिक सहायता जनवरी 2027 से बंद होगी। ये फैसला प्राइवेट सेकेंडरी एजुकेशन अथॉरिटी के बोर्ड ने लिया है। दोनों कॉलेजों में छात्रों की संख्या सहायता पाने के लिए तय न्यूनतम संख्या से कम है। सरकार ने इस फैसले का संज्ञान लिया। प्रभावित छात्रों को उनके घर के पास दूसरे कॉलेजों में जगह दी जाएगी। उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए जरूरी इंतजाम भी किए जाएंगे। दोनों कॉलेजों के योग्य स्थायी शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को मॉरिशस एजुकेशन डेवलपमेंट कंपनी यानी मेडको में शामिल किया जाएगा। इसके बाद उन्हें मेडको के दूसरे कॉलेजों, सरकारी कॉलेजों या ऐसे विभागों में तैनात किया जा सकेगा जहाँ उनके काम की जरूरत है।
0: बच्चों को प्रभावित करने वाली बुराइयों से निपटने के लिए रचनात्मकता को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। राइस प्लस कार्यक्रम कल फिनिक्स रोटेरी क्लब द्वारा काथोबोन में स्थित हरिलाल चुरुमुनी गवर्नमेंट स्कूल में पायलट आधार पर शुरू किया गया। ज़वे अफ़ान आवां से यानी खेल के नए और रचनात्मक तरीकों, पढ़ने और गाने के माध्यम से शिक्षा देना, ये 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाने वाला और परिणामों के आधार पर

0: मापा जाने वाला कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूलों में नशीली दवाओं से जुड़ी समस्याओं से निपटना है। कुणाल गोजी की रिपोर्ट।
1: इस नेकेन लादक खेल को बच्चों के लिए नए तरीके से तैयार किया गया है। इसे जमीन पर बनाया गया है जहां बच्चे लामागेल की तरह कूदते हुए खेलते हैं। कुछ खाने अच्छे गुणों को दर्शाते हैं जबकि कुछ में बुरी आदतों जैसे नशीली दवाओं के सेवन को दिखाया गया है। यदि बच्चा सांप के डसने वाले खाने पर पहुंचता है तो वो नीचे जाकर जेल वाले खाने में पहुंच जाता है। इसके साथ बच्चों के लिए एक गीत भी है जिसे खुद बच्चे गाते हैं। इसके अलावा एक कॉमिक बुक भी है जिसमें खलनायक के रूप में नशीली दवाओं का प्रलोभन दिखाया गया है।
2: Nous pas capable imposer un choix aux enfants, mais nous capable montrer ce chemin qu'ils sont capables choisir et pour faire un meilleur choix dans l'avenir.
1: इस कार्यक्रम का नाम Rise Plus है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिनिक्स रोटरी क्लब ने कठबोन में स्थित हरिलाल चुरुमुनि गवर्नमेंट स्कूल में शुरू किया।
3: Our PESAC pass rate fell down from 62% in 2022 to 47.9% in 2025. This reality tells us loud and clear that we must strengthen our support and teach it ways that reach the whole child.
1: इस परियोजना के दूसरे चरण में इसे देश के अन्य इलाकों में 36 रोटरी क्लबों के माध्यम से लागू करने और अगले 3 वर्षों के भीतर इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने का लक्ष्य है। इस शिक्षण पद्धति का शिक्षा मंत्री ने स्वागत किया लेकिन उनका मानना है कि माता पिता की भागीदारी के बिना ये प्रयास अधूरा रहेगा।
4: Beaucoup de jeunes parents disent aux autres qu'ils ont des difficultés pour cause avec d'autres enfants. Ils ont dit aux autres qu'ils enfants là n'est plus écoute d'autres équipe man parents, donne man parents man outils qui manière je capable handle the man enfants à la maison.
1: Ombudsperson for children जिनकी जिम्मेदारी बच्चों के अधिकारों और उनके कल्याण की रक्षा करना है का कहना है कि इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी साधन है।
5: C'est un sujet sensible et on a besoin de pouvoir leur donner à eux aussi les outils pour qu'ils puissent en parler avec les enfants et les adolescents.
1: Deputy Prime Minister ne nashili dawaon ke khilaf sarkar ki pratibaddhata dohrai chahe ye samasya kisi bhi samajik ya aarthik varg mein ho.
5: Le gouvernement est pleinement engagé. Nous renforçons les lois. Nous développons les services de réhabilitation. Nous soutenons les familles touchées. Et aux trafiquants, je dis ceci, l'État ne reculera pas. Mais la répression seule ne suffit pas. La victoire se gagnera dans la prévention, dans l'éducation et dans la mobilisation de tous les citoyens.
1: स्कूलों में बच्चों को प्रभावित करने वाली नशीली दवाओं, धूम्रपान और शराब की समस्याओं के अलावा शिक्षा मंत्री के अनुसार कई अन्य मुद्दे भी सरकार के एजेंडे में हैं। इनमें साइबर बुलिंग, परिवार के विघटन और शिक्षकों के खिलाफ हिंसा शामिल हैं।
0: मोहवाकवा का जलस्तर नवंबर के अंत तक 20% तक गिर सकता है। ये अनुमान वाटर रिसोर्सेज कमीशन का है जिसे सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने गुरुवार को साझा किया। देश का मुख्य जलाशय फिलहाल 38.5% तक भरा हुआ है और यदि द्वीप के इस हिस्से में तेज बारिश नहीं होती है तो CWA ने चेतावनी दी है कि वो प्लेनविलहैम्स मोका और गिवियनुआ के एक हिस्से में पानी की आपूर्ति के लिए यहाँ से और पानी नहीं ले सकेगी। स्थिति में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। 17 सितंबर 2025 को मोहवाकवा का जलस्तर 93.1% था जबकि इस वर्ष इसी तारीख को ये 39.9% दर्ज किया गया। CWA का कहना है कि पानी में अतिरिक्त स्रोतों की तलाश भी की जा रही है। CWA के संचार प्रभारी सुनील गोपाल से बातचीत की शैली निर्बन ने विवरण आस्था गोबिंद का।
6: Une ville de plus en plus importante qui nous continue à servir de l'eau de façon très judicieuse et qui nous collabore dans sa
7: जिम्मेदाराना तरीके से पानी का इस्तेमाल करना होगा। इस दिशा में सभी को राष्ट्रीय एकता का प्रमाण देना होगा। पानी की कमी की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जनता को आश्वासन दिया जाता है कि हम पानी

0: के अतिरिक्त स्रोतों की तलाश में हैं ताकि देश में पानी की आपूर्ति जारी रहे। हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, पानी की कटौती देश भर में जारी है। अगर ये कदम नहीं उठाया जाता तो आज पानी का भंडार खतरे के निशान से और कम होता। अगर आने वाले हफ्तों में बारिश होती है तो कुछ ढील लाई जा सकती है, हम जनता को सूचित करेंगे।
1: Comment nous pouvons évoluer en termes de la pluie, hein? Et nous pouvons informer le public.
2: CW ने ये भी स्पष्ट किया है कि यदि स्थिति और बिगड़ती है तो उपायों नए उपायों से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ क्षेत्रों में 17 जून से ही पानी की आपूर्ति के समय में कटौती की गई है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में 5 अगस्त से प्रतिदिन 2 घंटे की कटौती लागू है। पीने के पानी के कुछ उपयोगों पर लगी पाबंदियों भी 30 नवंबर तक लागू रहेंगी। आज 27 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है जो 10 अक्टूबर को समाप्त होगा। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि है जिसमें लोग अपने पितरों को याद करते हैं, उनकी तृप्ति के लिए तर्पण करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विशेष रिपोर्ट विधिमा सिबुरन के साथ।
3: पितृपक्ष यानी वो समय जब हम अपने उन लोगों को याद करते हैं जो अब हमारे बीच नहीं है, उनके लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान करते हैं। आम भाषा में इसे 16 श्राद्ध कहा जाता है। भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक इस परंपरा को माना जाता है। मान्यता है कि हमारे सारे पूर्वज, हमारे सारे पितृ अपने परिवार के साथ पृथ्वी में वापस आते हैं और उनके लिए किए गए तर्पण और श्राद्ध को वे स्वीकार करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में धरती पर आते हैं और परिजनों द्वारा किए गए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म से तृप्त होकर सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।
4: जो लोग बड़े बुजुर्गों का वंदन, पूजन, पाठन करते हैं, उनकी 4 चीज़ें अपने आप बढ़ जाती हैं। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये चारों के चारों चीज़ें बढ़ाने के लिए पितृपक्ष हमारे सामने हमारे क्रांतिद्रष्टा ऋषियों ने दिया है। हम इसमें पितरों का पूजन करते हैं। उसमें कोई बहुत विशेष सामग्री नहीं है, बस आटे का, जौ के आटे का या चावल का पिंड बना करके पिंड को रख करते हैं, उसमें पितरों को बुलाते हैं। जो कुछ हमसे भोजन बनता है, भोजन सामने रखा, पितरों को प्रणाम किया, पितर आए, उन्होंने भोजन इत्यादि ग्रहण किया और आशीर्वाद दे करके वो चले जाते हैं। जहाँ पितरों का आशीर्वाद होता है वो घर फलता फूलता है, उस घर में समस्याएँ नहीं होती हैं। जहाँ पितरों का प्रकोप होता है, जहाँ पितर प्रसन्न नहीं होते हैं, उस घर में सुख शांति नहीं रहती है, वहाँ विकास रुक जाता है। कभी कभी तो वंश की वृद्धि भी रुक जाती है, वंश आगे नहीं बढ़ पाता है पितर के श्राप से। इसलिए ये बहुत अच्छा मौका होता है कि हमारे लिए 15 दिन का समय है कि हम 15 दिनों में पितरों का पूजन करें, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।
3: 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण है जिसके बाद किए जाने वाले पितरों, श्राद्ध और पिंडदान विस्तार से बताया गया है। इन दिनों में दान पुण्य, ब्राह्मण भोजन और गरीबों की मदद करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इन 16 दिनों में नए कपड़े, आभूषण या संपत्ति खरीदना और किसी भी तरह के मांगलिक या शुभ कार्य जैसे विवाह या गृह प्रवेश नहीं किए जाते हैं। पितृपक्ष केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अपने बुजुर्गों और पूर्वजों के प्रति प्रेम, निष्ठा और श्रद्धा प्रकट करने का एक सुंदर तरीका है।
2: स्वतंत्रता से वंचित होना बदलाव की इच्छा छोड़ देना नहीं है, यही संदेश वी आर पावरफुल नामक गीत के माध्यम से दिया गया है जिसे महिला कैदियों ने मिलकर तैयार किया है। ये पहल एनजीओ कॉब जेम की है। इसके तहत संगीत और आर्ट थेरापी कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य इन महिलाओं के पुनर्वास को बढ़ावा देना है। राजमीला सीतामणि, निर्मा नारायण रेड्डी।

यह पहल साल 2023 और 2024 के दौरान बोबासैन जेल में बंद महिलाओं के लिए आयोजित संगीत चिकित्सक कार्यशालाओं से शुरू हुई। इस कार्यक्रम को कलाकार और गैर सरकारी संस्था कॉपेडियम की संस्थापक शुरू किया था। एंजल ओंगो के

0: साथ मिलकर इस गीत को तैयार किया। ओजेल ओंगो कहते हैं
1: कि
0: पुनर्वास एक लंबी प्रक्रिया है। इन सत्रों में शामिल होकर बंधी महिलाओं को यह एहसास मिलाने की कोशिश की गई कि उनकी पहचान सिर्फ उनके बातें हुए इतिहास, उनके मामले या उनके किए गए काम से तय नहीं होती। उन्हें यह समझने का मौका मिला कि वे खुद कुछ नया बना सकती हैं, अपने फैसले ले सकती हैं और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकती हैं। ओंजेल ओंगो ने हमें सिखाया कि हमें खुद पर काबू रखना चाहिए और खुद को फिर से संभालना चाहिए। इस अनुभव ने मुझे बदल दिया। जब मैं जेल से बाहर आई तो पहले मुझे लोगों का सामना करने में डर लगता था, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। आजादी छीन जाने से सपने देखना, कुछ नया करना और खुद को फिर से संभलना नहीं रुकता। वी आर पावरफुल इसी जज्बे की एक मिसाल है।
2: विदेशी स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस का अंतिम महासभा सत्र है। गुटेरेस का कार्यकाल रिकॉर्ड संख्या में वैश्विक संकटों, संघर्षों, महामारियों, जलवायु आपदाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक अहम दौर से भरा रहा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। वे नए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के चयन की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। गौरतलब है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन के इस महासभा को संबोधित करने नहीं गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो अमेरिकी दौरे पर होने के बावजूद इसमें शरीक नहीं हुए। और पोप लियो 14 ने कैथोलिक चर्च में युवाओं द्वारा लाई जाने वाली उत्साह, ऊर्जा और प्रतिबद्धता की सराहना की। ये बात उन्होंने पेरिस में एक खुले मैदान में हुई प्रार्थना सभा के दौरान कही, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अनुमान है कि करीब 7 लाख लोग इस प्रार्थना सभा में शामिल हुए। पोप ने प्लास डी ला कोंकोर्ड में प्रार्थना सभा का संचालन किया। ये फ्रांस की उनकी 4 दिवसीय यात्रा का दूसरा दिन था। कई वरिष्ठ राजनेताओं ने भी इस प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। शुक्रवार को पोप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल माक्रों से मुलाकात की थी। खबरों के अंत में मौसम की रिपोर्ट। पूर्व की ओर से आने वाले बादल रह रहकर हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। अनुमान है कि आसमान में बादल घिरे रहेंगे सुबह के वक्त, खासकर पूर्व, दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर, जहां तहां थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। दोपहर में मौसम सुहाना रहेगा सिवाय की ऊंचाइयों पर, जहां थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाल रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। आज सूर्योदय हुआ 5:54 पर, सूर्यास्त होगा 6:07 पर।

खबरों के अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। एमएमएम बीते कल, आज और आने वाला कल, कर्तव्य और जिम्मेदारी, यही विषय चुना गया एमएमएम के 57वें स्थापना दिवस के लिए, जो कि आज 27 सितंबर को गिजवी में मनाया जाएगा। जनवरी 2027 से निजी माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक और बदलाव, दुशैक्षणिक संस्थानों को दी जाने वाली सरकारी वित्तीय सहायता समाप्त। मोगवाकवा का जलस्तर नवंबर के अंत तक 20% तक गिर सकता, यह अनुमान वाटर रिसोर्स

0: सर्विसेज कमीशन का है। देश का प्रमुख जलाशय फिलहाल 38.5% तक भरा। आज से पितृपक्ष शुरू। लोगों द्वारा अपने पितरों को याद करते हुए उनकी तृप्ति के लिए खास तर्पण एवं श्रद्धांजलि। और विदेश में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा। ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस का अंतिम महासभा सत्र। 6:53 हो चुके। ये बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है यूसुफ के सहयोग से। जुड़े रहिए हमारे साथ। कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
0: स्कूल लेन मेलरोज में 73 साल की 73 ईयर ओल्ड श्री किशोर साहू मोटी, श्री किशोर साही मोती जो किशोर से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती रत्ना मोती के मकान स्कूल लेन मेलरोज से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोटाई ब्लांश की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। न्यू रोड कच्ची मिलिटेयर में 71 साल के 71 ईयर ओल्ड श्री सूर्य शर्मा महादू, श्री सूर्य शर्मा महादू जो वैक ऑसिया फैक्ट्री से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनकी पत्नी श्रीमती मीरा महादू के मकान न्यू रोड कच्ची मिलिटेयर से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM। पारिजोलेन मेनिल में 77 साल की 77 ईयर ओल्ड बीबी फेरोज पीरू पैदाइशी नाम श्रीनिवास इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 10:30 इनके मकान पारिजोलेन मेनिल से उठाकर पहले हनफी मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान। फिनरल टुडे एट 10:30 AM। मोसेलमा पोलाजे में 70 साल के 70 ईयर ओल्ड श्री ज्ञानचंद सुकना जो भयवा से जाने जाते थे और पहले इजिडोरोज फ्लैक रहते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकी पत्नी श्रीमती देवयानी सुकना के मकान मोसेलमा पोलाजे से उठाकर दाह संस्कार के लिए बोशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। रॉयल रोड डेनिंगम थ्रियोले में 36 साल के 36 ईयर ओल्ड जनाब मुजाफर नूर सिंह जो जफर से जाने जाते थे, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन की 10 बजे के मकान रॉयल रोड डेनिंगम थ्रियोले से निकाल कर दफनाने के लिए बुआ मौशाओं का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फिनरल टुडे एट 10 AM। लाफोज लेन पालमा कास्ट्रोबोन में 70 साल के 70 ईयर ओल्ड श्री तहाल जैनोत जो राम से जाने जाते थे और पहले पुलिस कापोरल थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सोमवार को दिन के 10 बजे इनके मकान लाफोज लेन पालमा काट्रोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी पालमा काट्रोबोन की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। यंग टाउ रोड घोबुआ में 54 साल के 54 ईयर ओल्ड श्री अजय सिबारत जो लोलो से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10:30 इनके मकान यंग टाउ रोड घोबुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए घोबुआ की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। मोसेलमा ऑटेलमा फॉरेस्ट साइड में 84 साल के 84 ईयर ओल्ड श्री तानाजी लक्ष्मण जो ताजुमे से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 9:30 इनकी पत्नी श्रीमती यशवंती लक्ष्मण के मकान Moselle.

0: और टेलमा फोरेसाई से उठाकर दाह संस्कार के लिए बिगागा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ हाफ पावर्स इन 9 AM। रोतबा से कथोबोन में 85 साल के 85 ईयर ओल्ड श्री जसमनदेव नक्चे दी, श्री जसमनदेव नक्चे दी जो पहले मॉरिशस टेलीकॉम के कर्मचारी थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे दिनेश कुमार नक्चेदी के मकान हुडबासे कटोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी पालमा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। और कालीमाई गली बाउलो में 49 साल के 49 ईयर ओल्ड श्री उमा शंकर मंगर जो विशाल से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके माँ श्रीमती ललिता मंगर के मकान कालीमाई रोड बाउलो से उठाकर दाह संस्कार के लिए बाउलो की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे हुए इन सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: On MBC Play and MBC.MU. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5,
1: East, West,
2: 96.4,
1: Center,
2: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Good morning. It's 7 AM.
4: Chillax with Radio Musti.
1: Your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चिलैक्स, जहां पर चिल द मॉर्निंग मंत्रा ऑन गोइंग है गानों के जरिए ऑफ कोर्स विद नमनी टिल 8 AM। तो कैसे हैं आप? नींद अच्छी आई या फिर अभी तक का थकान महसूस हो रही है? अगर हाँ तो खुद को परमिशन दीजिए थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। संडे है दोस्त, लेट्स टेक इट इजी और हम जो वीडियो मस्ती पर ही
0: चिलैक्स with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Masti.
1: वैसे गाना था अकेली बाजार ना जाया करो, एंड वैसे संडे को होजमेल में मार्केट फेयर होता है तो लोग सुबह सुबह ही पहुंच गए होंगे वहां पर, एंड सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि उनकी खाने के लिए भी। ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म रोटी मिलता है, दाल पुआ, पता नहीं क्या क्या डिलीशियस चीज़ें मिलती हैं। वाह, सिर्फ नाम सुन के ही मुँह में पानी आ रहा है। वैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? नहीं किया है तो फिर इंतज़ार किस बात की है? संडे है भाई, थोड़ा शॉपिंग, थोड़ा घूमना, और सबसे ज़रूरी बात वो होता है पेट पूजा। अब जहाँ पर भी हो एंजॉय कीजिए अपने संडे को, और आरम जो रेडियो मस्ती के साथ में ही म्यूज़िक का मज़ा लेते रहिए।
0: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

आपकी स्वीट सी जो बातें हैं आप सुन रहे हैं, और एज यूजुअल गाना रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी बेटियों के लिए, रिमा, जनिता, श्रेष्ठा, अंशनी, यूवी, कृषि, सिल्विया के लिए और पूरे शिव सरन फैमिली के लिए जो कि फ्लैग के रहने वाले हैं। एंड ऑल्सो जयशन जी के नेक्स्ट डे हमारे साथ रिश्मा से, एंड नेक्स्ट गाना वो चलाना चाहते हैं हिमाक्षी, कुशमिजा, लवना, बिरमटी और अपने लिए भी, और विश कर रहे हैं सभी को वंडरफुल डे अहेड। एंड वी हैव हमारे लिटिल बड़ी यालेश जो साथ दे रही है साउथ से, यानी कि सुख नाम से, और वो मांग रही है नया वर्शन एक गाने का, जवानी तो इश्क होना है। ढूंढकर चलाएंगे जरूर आपके लिए। अभी के लिए नेक्स्ट गाना सनम पुरी की आवाज में हो जाए, 14 बजे जो साथ दे रहे हैं आरम जो वेडियो मसी पर ही। आपको बता देते हैं कि 6:30 बजे आप सुन पाएंगे स्पोर्ट्स न्यूज।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: And yes, the latest updates sunte hain aap se Vikash ji. Good morning.
4: Good morning, Nirmani. And a very good morning to all sports fans. कर भला हो भला, इस कारण दिल को चैन पहुंचता है. इंग्लैंड ने खेओस को अपनाया किंतु कंट्रोल नियंत्रण खो बैठा. कोच टोमा चुकेल ने इंग्लैंड के पूरे खेल और पूरी स्टाइल में उथल पुथल मचा दी, अफरा तफरी कर दी. फिर भी द थ्री लायंस हार गए क्योंकि सामने थे वर्ल्ड चैंपियन स्पेन, जो बहुत जिद्दी और थोड़ा पागल भी हैं. इट्स इंग्लैंड 2-3. हार के बावजूद मानना पड़ेगा कि खेल में परिवर्तन आया है, एक नई ऊर्जा एक नई एनर्जी साफ नजर आ रही है. इंग्लैंड 2-3. लामिन यमाल ने खेल के

आरंभ होने से 2 मिनट बाद ही खाता खोला और गोलकीपर जेम्स ट्राफोर्थ की कमर भी तोड़ी, किंतु 36वें 36 मिनट पर एंटोनी गार्डन का सुंदर इक्वलाइजर एक बहुत ही बढ़िया गोल, यहां तक मैच 1-1 और 4 मिनट बाद ही 40वें मिनट पर हैरी केन ऑन टारगेट, इंग्लैंड फर्स्ट हाफ में 2-1 से आगे और सेकंड हाफ बड़े प्यारे तरीके से आरंभ हुआ। इंग्लैंड के खेल में और भी अग्रेसिविटी आई, आक्रामकता आई, लेकिन उसके बाद जब हैरी केन को मिली एक पेनाल्टी, 3-1 ये स्कोर हो सकता था इन फेवर ऑफ इंग्लैंड, लेकिन हैरी केन मिस्ड अ पेनाल्टी, यानी इंग्लैंड को डांस पे चांस लेना अभी भी सीखना है। सो वहां तक स्कोर 2-1 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड, लेकिन एलेक्स बेना ने 60th मिनट पर इक्वलाइज किया और 74वें 74th पर मिकेल ओयोजाबाल ऑन टारगेट। इट्स फाइनली इंग्लैंड 2-3। हार के बावजूद द थ्री लायंस की कहानी अब सिर्फ उम्मीदों की नहीं बल्कि आत्मविश्वास, आक्रामक अग्रेसिव फुटबॉल और लगातार बेहतर होते प्रदर्शन की कहानी बनती जा रही है। अब कहानी का अगला पड़ाव मंगलवार रात 11:45 चेक रिपब्लिक के फोर्चुना अरेना में। यूएफए नेशंस लीग के बाकी नतीजे विस्तार से सुनिए। ग्रुप 1 में कल स्लोवेनिया और स्कॉटलैंड ने मैच ड्रॉ किया 0-0। इसी में फिनलैंड ने एवे जाकर सैन मैरिनो को 7-0 से पछाड़ा। फिनलैंड के लिए जो पोजान पालो की एक शानदार हैट्रिक, सो इट्स सैन मैरिनो 0 फिनलैंड 7। इसी में स्विट्जरलैंड ने एवे जाकर नॉर्थ मैसेडोनिया को 3-0 से तोड़ा। अल्बेनिया ने बेलारूस को 2-2 बार बेला, अल्बेनिया 2 बेलारूस 0। और ग्रुप 3 में फरवे आइलैंड्स 1 कजाकिस्तान 1 चेक रिपब्लिक 1 क्रोएशिया 2। क्रोएशिया के लिए वेटरन खिलाड़ी लुका मोड्रिच का एक पहला गोल रहा, मार्को पासालिच ने सेकंड विनिंग गोल स्कोर किया क्रोएशिया के लिए। इंग्लैंड 2 स्पेन 3। स्लोवेकिया ने इसी ग्रुप 3 में मोल्डोवा को 2-0 से हराया। तो ग्रुप 4 में बुल्गेरिया 1 लुक्जमबर्ग 2 आइसलैंड 1 एस्टोनिया 1। बाकी सभी मैच आज खेले जाएंगे। आज के मैच शाम 5 बजे से ही शुरू हो रहे हैं लिचुआनिया वर्सेस अजरबैजान के साथ, फिर रात 8 बजे से जिब्राल्टर वर्सेस अंडोरा, सर्बिया का मुकाबला नेदरलैंड से, ऑस्ट्रिया खेलेगा कोसोवो के विरुद्ध, तो डेनमार्क का मुकाबला वेल्स से, और 11:45 10:45 PM से जर्मनी वर्सेस ग्रीस। With a certain Jurgen Klopp in command of the national Manchaf, Germany versus Greece, Israel ka mukabla Republic of Ireland se, to Norway khelega Portugal ke virudh. International friendlies mein kal raat USA ne Peru ko 4-1 se parast kiya, to aaj subah hi Canada ne Chile ko 1-0 se haraya, aur Mexico 1, Colombia 1. Football mein hi the Manchester City saga ab pura dal saga ban gaya hai. 2009 से 2018 के बीच क्लब ने जिन फाइनेंशियल नियमों का उल्लंघन किया था वो अब सब ठोस आरोप के रूप में सामने आने लगे हैं। सिटी को 116 में से 115 चार्जेस के लिए दोषी पाया गया है। हालांकि क्लब मालिक एवं चेयरमैन खैदून अल मुबारक ने फिर भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि क्लब अपने आप को बेकसूर साबित कर पाएगा। फिर भी प्रीमियर लीग की ये सेस्मिक विक्ट्री 800 मिलियन पाउंड की लीगल क्लेम्स ट्रिगर कर सकती है। कुछ क्लबों ने यदि सारे टाइटल्स हड़पने वापस लेने की बात की है कि मांग की है, तो कुछ कंपेंसेशन मुआवजे और कुछ तो मैनचेस्टर सिटी को नेशनल लीग में भी भेजने की मांग कर रहे हैं। जो भी हो, ये फाइनेंशियल क्राइम या वित्तीय घोटाला मैनचेस्टर सिटी का गला घोंट डाला और जो फुटबॉल जगत के गले तले उतरता ही नहीं। प्रोसेस लंबी है पर मैनचेस्टर सिटी आसमान से गिरा और खजूर में अटका, इसलिए कर भला हो भला। क्रिकेट में आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच थिरुवनंतपुरम के ग्रेनफील्ड स्टेडियम में संपन्न होगा। फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप के अजरबैजान ग्रां प्री रेस के पोल पोजीशन में आया कल रात मर्सिडीज का जॉर्ज रसेल, जो अपने साथी किमी एंटोनेली से जनरल स्टैंडिंग में 66
पॉइंट्स पीछे हैं। आज अजरबैजान ग्रैंड प्री रेस लगने वाली है।

0: शेत्र स्तर पर लोकली मॉरिशस में कराची में द इंडो पैसिफिक कप 2026 का आज आखिरी दिन है। कुद्दू नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार से ही ये हाई लेवल उच्च स्तरीय शोटोकान कराते कंपटीशन शुरू हुई, जिसमें मॉरिशस और जापान सहित विश्व के 24 देशों से कराते खिलाड़ी एक दूसरे का आमना सामना कर रहे हैं। इनमें रेनियन टापू और रोड्रिग्स का भी एक एक डेलीगेशन है। जापान कराते एसोसिएशन मॉरिशस द्वारा आयोजित इस शोटोकान कराते प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए एंट्री फ्री है। आज सुबह 8:30 बजे से नोविस डिवीजन की बारी है। शामुनी में आज शाम 3:30 बजे एक गाला मैच खेला जाएगा बिटवीन संडे मॉर्निंग स्टार्स एंड ग्रांबे कोरिंथियंस। तो पंपलेमुसेस जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सहयोग से आज दिन के 2 बजे से वहां के गनर्स टीम आर्सेनल द शिवसागर राम गुलाम सुवेनियर कप आयोजित कर रही है। 2 मैच आर्सेनल एससी वर्सेस आर्सेनल वेटरन। तो पंपलेमुसेस एससी खेलेगी रोशबुआ बोल्टन सिटी के विरुद्ध वहीं के मैदान पे, और रोशनुआ स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतर्गत आज शाम स्पोर्टिंग बॉयज रिविया ड्यूरॉन पर टक्कर लेंगे ओलंपिक कप मालेगा से। खेलते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: धन्यवाद विकास जी।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.

0: टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: एक सवाल हमेशा मेरे मन में टिक टिक टिक टिक करता है कि लोग मछली की तरह तैर कैसे लेते हैं। काश मैं भी तैर पाती।
2: तो अब तुम्हें तैरना भी नहीं आता। तुम्हें तैरना नहीं आता तो ठीक है, मैं जाके बिल देके आता हूँ, तब तक तुम तैरना सीख लो। मुझे हर बार धोखा नहीं दे सकती।
1: मुझे बहुत डर लग रहा है।
2: 1 2 3 क्योंकि
0: सत्ताईस सितंबर रविवार को NBC4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म क्योंकि 2005 की मूवी सलमान खान और करीना कपूर पर फिल्माई गई क्योंकि

0: या जब हम मना रहे हैं वर्ल्ड रिवर्स डे एंड रिवर्स के बारे में सोचिए कितनी क्वाइटली फ्लो करती है बिना रुके बिना शोर किए अपना सफ़र जारी रखती है एंड हमारी ज़िंदगी भी ना कुछ ऐसी ही है कभी पानी बिल्कुल शांत होता है कभी करंट तेज़ हो जाता है लेकिन रिवर रुकती नहीं है वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है तो आज जब भी किसी रिवर स्ट्रीम या वाटरफॉल के पास से गुजरे एक मोमेंट के लिए रुक कर उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना ज़रूर अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि आ गई है परी आपके लिए टाइमलेस सेक्टर के साथ नेक्स्ट आपको एंटरटेन करने वाली है गानों के जरिए एंड ऑफ कोर्स आपके लिए बॉलीवुड न्यूज भी लेकर आएगी सो स्टे ट्यून यही आरएम2 रेडियो मस्ती पर
1: Chillax with Radio Masti
2: your number one Bollywood radio station

0: Chillax with Radio Musty.
1: सच जाने से पहले आपसे एक बात शेयर कर देती हूँ।

सब लोगन के नमस्ते एमएमएम बीतल कल आज और आय हुला कल कर्तव्य और जिम्मेदारी यही विषय चुनल गलबा एमएमएम के 57वां स्थापना दिवस खातिर जिनकी आज दिमास के 27 सितंबर के गिजवी में मनावल जाए मॉरिशस के राजनीतिक इतिहास में एमएमएम के महत्वपूर्ण भूमिका रहल बाते ई देश की राजनीतिक पार्टी में से एगो है जिनकी 60-0 के चुनावी जीत से जुड़ल रहल बा एकर में सबसे हालिया जीत नवंबर 2024 में होल रहल 57 बरिस के दौरान एमएमएम उतार चढ़ाव भी देखले बा जेकर में कई गो नेता और सदस्य के पार्टी से अलग होय के और नवा सदस्य के जुड़े के शामिल बाते दरअसल ई पार्टी के जन्म ऐसन राजनीतिक माहौल में होल रहल जब छात्र कार्यकर्ता के लामबंदी भी प्रमुख रहल उस समय पार्टी के कार्यकर्ता मॉरिशस के गो बेहतर द्वीप बनाए खातिर नवा विचार और मुद्दा संगे आवत रहलन जा ई विचार आज भी प्रासंगिक बाती जनवरी 2027 से निजी माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एगो और बदलाव देखे के मिली कहे कि दुगो शैक्षणिक संस्थान के जो सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त हुएला उस समाप्त कर देवल जाए इकर चलते छात्र और कर्मचारी के नवा व्यवस्था खातिर तैयार रहे के चाहिए छात्र के पढ़ाई में निरंतरता सुनिश्चित करे के और प्रभावित कर्मचारी के फिर से तैनात करे खातिर उपाय भी चाहेला लेखा के प्रभावित करे होला बुराई से निपटे खातिर रचनात्मकता और एगो साधन के रूप में इस्तेमाल करल जाबा राइस प्लस कार्यक्रम काल फिनिक्स रोटेरी क्लब द्वारा काठोबोन में स्थित हरिलाल चुरमुनी गवर्नमेंट स्कूल में पायलट आधार पर शुरू करल गल 3 बरिस खातिर चरणबद्ध तरीका से लागू करल जाए होला और परिणाम के आधार पर मापल जाए होला कार्यक्रम है जेकर उद्देश्य स्कूल में नशीली दवा से जुड़ल समस्या से निपटे के है महोवाकुआ के जलस्तर नवंबर के अंत तक 20% तक गिरे सकी ये अनुमान वाटर रिसोर्सेस कमीशन की है जकरा सेंट्रल वाटर अथॉरिटी बीफे के साझा करलक देश के प्रमुख जलाशय फिलहाल 38.5% तक भरल बा और यदि द्वीप के हिस्सा में भारी बारिश नहीं हुई तो CWA चेतावनी देले बा कि ऊ

0: बेन विलहम्स, मोका और गिवियनो के इगो हिस्सा में पानी की आपूर्ति खातिर हैजा से और पानी नहीं ले सकी। स्थिति में काफी अंतर देखे के मिलता 17 सितंबर 2025 के माहोवाकुआ के जलस्तर 93.1% रहल, जबकि ई बरिस के यही अवधि के 49.9% दर्ज करल गल बा। CWA कहता कि पानी के अतिरिक्त स्रोत के तलाश भी करल जान बा। CWA स्पष्ट कर ले बा यदि स्थिति और बिगड़ी त नवा उपाय से इनकार नहीं करल जा सकी। कुछ क्षेत्र में 17 जून से ही पानी की आपूर्ति के समय में कटौती करल गल बा, जबकि देश के बाकी हिस्सा में 5 अगस्त से प्रतिदिन 2 घंटा के कटौती लागू बाते। पानी के पिए के पानी के कुछ उपाय पर लगल पाबंदी भी 30 नवंबर तक लागू रही। आज 27 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो गल बा, जिनके 10 अक्टूबर तक चली। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एगो बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि है, जेकर दौरान लोग अपन पितर के याद करे लंजा, उन लोग के तृप्ति खातिर तर्पण करे लंजा, उन लोग के श्रद्धांजलि अर्पित करे लंजा। स्वतंत्रता से वंचित हो के बदलाव के इच्छा छोड़ दे के नहीं हा। यही संदेश वी आर पावरफुल नामक गीत के माध्यम से देवल गलबा, जिक्रा महिला कैदी लोग मिलके तैयार कर ले हवन जा। ये पहल NGO कॉप जेम के है। इसके तहत संगीत और आर्ट थेरापी कार्यक्रम चलावल जानबा, जिकर उद्देश्य कैद महिला लोग के पुनर्वास के बढ़ावा देवे की है। दूसरे देश के समाचार में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वां सत्र चलल बाते। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के अंतिम महासभा सत्र है। गुटेरेस के कार्यकाल रिकॉर्ड संख्या में वैश्विक संकट, संघर्ष, महामारी, जलवायु परिवर्तन, आपदा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक अहम दौर से भरल रहल बा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वां सत्र के अध्यक्ष चुनल गल बा। उनवा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के चयन के प्रक्रिया के देख रेख भी करियन। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UN के महासभा के संबोधित नहीं करे गयलन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के दौरा होला पर भी एकर में शरीक नहीं होलन। और अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्सा में कई मिलियन लोग एगो शक्तिशाली तूफान के चपेट में आए होला क्षेत्र में हवन जा, जेकर कारण तटीय इलाका में बाढ़, बिजली कटौती, यातायात में अव्यवस्था और स्टेडियम में होई होला कार्यक्रम के रद्द होय के स्थिति पैदा हो गल बा। अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार न्यूयॉर्क सिटी और बोस्टन समेत कई गो इलाका में खतरनाक तटीय बाढ़ और समुद्री तट पर जोखिमपूर्ण परिस्थिति, तेज हवा और भारी बारिश होय के आशंका बाते। न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी दोनों राज्य में आपातकाल घोषित कर देवल गल बा। इन दोनों राज्य के कुछ इलाका में अक्ते से ही तटीय जल भराव देखे के मिले सकी। एकरी संगी भोजपुरी समाचार समाप्त भल। एकर प्रसारण यूसुफ के सहयोग से करल जानबा। आप लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद। Your news on MBC Play and MBC.MU.
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: So well friends, with this beautiful track, आपका हम welcome कर रहे हैं भोजपुरी तड़का के साथ. हो गई है morning तो एकदम खास and special. और well, मैं हूँ परी आपके साथ. Time for your timeless तड़का. और Sunday का दिन, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा मौसम का हाल.
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
1: Your weather forecast on RM2.
3: Radio Musti.
4: पूर्व की ओर से आने वाले बादल रह रहकर हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे. अनुमान है कि सुबह के वक्त पूर्व, दक्षिण एवं सेंट्रल प्लेटों पर बादल घेराएंगे और जहां तहां बारिश हो सकती है. दोपहर में मौसम सुहाना रहेगा सिवाय की ऊंचाइयों पर जहां हल्की बारिश हो सकती है. तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच. साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा. दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं. दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है. आज के लिए सूर्योदय 5:54 पर, सूर्यास्त होगा 6:07 पर.
1: Your weather forecast on RM2.
3: Radio Musti.
5: Les prix malins débarquent chez Winners. Du 25 septembre au 8 octobre, profitez de super offres sur une sélection de produits du quotidien dans votre Winners préféré. Le litre d'huile de soja Alpa à 67,95 € et les 3 kilos de lessive machine en poudre blanc et couleur à 159,95 €. De nombreuses offres vous attendent dans le rayon. Alors remplissez votre caddie à prix malin et profitez-en chez Winners. Retrouvez notre brochure sur winners.mu.
6: On est

0: Express तड़का
1: RM2
2: सो वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर हैप्पीनेस की ट्रेन आकर रुक गई है बिल्कुल आपके दिल के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम लेकर आए हैं योर टाइमलेस तड़का।

0: सुबह के 8:18 संडे की एक खूबसूरत सी सुबह 27th of September और आपका हम स्वागत आपका हम वेलकम करते हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती। तो चलिए दोस्तों मैं हूं परी आपके साथ संडे मॉर्निंग में लेकर आए हैं आपके लिए गुडी गुड विशेज गुड मॉर्निंग विशेज जहां पर आपको हम जगाने आए हैं विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। आई नो आज तो है संडे कुछ लोग ऑलरेडी सुबह सवेरे उठ गए हैं कुछ लोग अभी भी आराम से लेजी लेजी मॉर्निंग एंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोग ऑलरेडी अपनी चाय की चुस्कियां एंजॉय कर रहे हैं। सो जो भी है आपका प्लान फॉर दिस संडे हम लेकर आए हैं वो प्लान जो आपके दिल को काफी लुभाने वाला है और वो है ब्यूटीफुल सॉन्ग्स का कारवां। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक मैं हूं आपके साथ टाइमलेस तड़का सो विल बी टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन विद सम ब्यूटीफुल ट्रैक्स डिफरेंट एराज के डिफरेंट सॉन्ग्स आपके नाम आपकी इस मॉर्निंग को खास एंड स्पेशल बनाने।
1: Timeless Tadka.
2: RM2.
1: Timeless Tadka.

0: टू रेडियो मस्ती। जब बात यार्ड सेल की होती है तो हम ख्वासिसा की ही बात करते हैं, जब बात जबरदस्त ऑफर्स की होती है तो हम ख्वासिसा की बात करते हैं, और जब बात बहुत कम कीमतों की होती है तो ख्वासिसा की ही बात होती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 1, 2 और 3 अक्टूबर को ग्रैंड ख्वासिसा यार्ड सेल होने जा रहा है लुशी पार्क जिनफई रिश्ते में। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, फोन, लैपटॉप और छोटे छोटे अप्लायंसेस पर 80% के डिस्काउंट, यानी शॉपिंग का एक जबरदस्त मौका। और वहाँ पहुँचना भी बहुत आसान है, गौजिरो से फ्री शटल सर्विस अवेलेबल होगी। तो डेट अच्छी तरह याद रखना, 1, 2 और 3 अक्टूबर।
1: कमुले वे लिकु काया काया मो पॉइंट डाई मो बो डाई Un tas nutriments séaillés pour mettre tous les coups séaillés.
2: You play.
3: Un produit made in Maurice.
0: RM2
4: Radio Musty.

Well, यहाँ पर जो घड़ी की टिक-टिक है वो यही इशारा कर रही है कि we are taking you down memory lane. Timeless तड़का लेकर आए हैं आपके लिए on this beautiful Sunday morning. संडे का ये दिन जहाँ पर आप भी थोड़ी सी मेमोरीज को स्पेशल बना सकते हैं. अभी के लिए ये गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम. आज प्रवेश ऑफ लाल माटी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. विशेज उनके लिए फ्रॉम सिस्टर आरती. साथ में है विशाल, अवनीश, सभी रामदयाल परिवार और सभी फ्रेंड्स उन्हें विश कर रहे हैं हैप्पी वाला बर्थडे. साथ ही फ्रॉम वकवा वी हैव मिस्टर गोविंद रघुनंदन हमारा साथ दे रहे हैं आप. सो संडे की ये मॉर्निंग आपको विश कर रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग. स्पेशल विशेज फॉर यू, फॉर योर ब्यूटिफुल वाइफ वेदा, बेटी है दीक्षा और साथ में बेटे युधिष एंड योगेश. सभी के लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज फॉर ऑल रघुनंदन फैमिली ऑफ वाकवा. साथ ही यहाँ पर कविता जी हमारा साथ दे रही हैं. आप भी जुड़ गई हैं हमारे इस म्यूजिक

0: sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: वेल दोस्तों, कहते हैं ना कि काइंडनेस का कोई रीज़न, कोई सीज़न नहीं होता या फिर कोई ओकेशन नहीं होता, बस एक अच्छा दिल चाहिए जो किसी की खामोशी समझे, किसी की थकान हल्का करे और बिना किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के एक अच्छा एहसास दे जाए। हर इंसान अपनी एक अनसीन बैटल लड़ रहा है और इसीलिए आपको अपने वर्ड्स केयरफुली चूज़ करने चाहिए। शायद आपकी एक जेंटल सी बात किसी के डिफ़िकल्ट डे में थोड़ी सी उम्मीद भर जाए। काइंडनेस कहते हैं ना काफ़ी छोटी सी होती है लेकिन समटाइम्स प्राइसलेस होती है। अच्छाई की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसका कोई शोर नहीं होता। आप क्वाइटली किसी का हाथ थामते हो, किसी को रिस्पेक्ट देते हो या फिर किसी के लिए वक्त निकालते हो, एंड समवेयर यू लीव द वर्ल्ड अ लिटिल सॉफ्टर, अ लिटिल ब्यूटीफुल देन यू फाउंड इट। तभी कहते हैं दोस्तों कि आपकी जो काइंडनेस है वो कभी वेस्ट नहीं जाती। जो वॉर्म्थ आप किसी और को देते हो वो कभी ना कभी आपकी लाइफ में समवेयर सम हाउ और भी खूबसूरत मोमेंट्स और खूबसूरत पल आपको देकर जाते हैं। कहते हैं ना कि जो फूल बांटते हैं हाथ उनके भी महकते हैं। सो बी दैट गुड काइंड पर्सन, डू गुड, बी गुड एंड स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ।
0: Le sport c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
5: Music all day long.

0: एस तड़का
1: RM2।
2: तो चलिए दोस्तों, खूबसूरत गीतों के साथ आपकी संडे मॉर्निंग में हम भी थोड़ा सा म्यूजिकल रस घोल रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती। वेल, यहाँ पर आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस पढ़ने का टाइम आ गया है ऑन 5499-1294। इतने प्यार से जो आपने स्वीट मैसेजेस हम तक पहुँचाई है, सो निशान संपत हमारा साथ दे रहे हैं और कहते हैं, एक छोटी सी पोयम शेयर करना चाहता हूं। कहते हैं कि डू नॉट बी फूल्ड बाय योर प्रेयर्स एंड फास्टिंग, लुक हाउ यू ट्रीट अदर्स एंड दैट्स द रियल रिफ्लेक्शन ऑफ योर हार्ट। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, और दिल अच्छा होना यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज। और हम जानते हैं आपका दिल काफी अच्छा है और तभी आप इतनी स्वीट मैसेजेस हम तक पहुंचाते हैं। सो वेल, गुड मॉर्निंग विशेस के साथ अगला गाना होगा आपके नाम एंड फॉर योर फुल फैमिली। और वंस अगेन तहे दिल से शुक्रिया फॉर दिस वंडरफुल स्वीट मैसेज। हैप्पी बर्थडे विशेज, ये है फॉर विनय गोलाप एक्वाया से है, एंड बेस्ट विशेज है फ्रॉम मामा संगीता, सिस्टर्स रेशमा मोना, और साथ में है नेफ्यूज रणवीर महवीश, ब्रदर इन लॉ रोशन और सभी परिवार जो आपको विश कर रहे हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और चलिए यहाँ पर कहते हैं, कयामत से कयामत तक का गाना मेमोरीज। रेखा जी, आप हो गई हैं खुश, तो आप खुश तो हम भी खुश। बस ऐसी जो स्माइल है उसे बनाए रखिएगा, अभी के लिए नहीं बल्कि पूरे दिन के लिए, पूरे हफ्ते के लिए। और गुड विशेस हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। यहाँ पर यलेश आए हैं अपनी गुड मॉर्निंग विशेस के साथ और कहते हैं कि शो तो एंजॉय कर रहा हूँ और मॉर्निंग भी एंजॉय कर रहा हूँ। Dedicating Ghana for Sham family of Suriname, and that's coming from Yalesh. Sweet message ke saath aaye hain apni sweet family ke liye. And Davisen from Lal Mati, aap bhi aaye hain apni goody good wishes ke saath. So gana hoga aapke naam, and of course for all your loved ones. Karishma ke liye gana, that's coming from someone very special, jo bilkul unhein khas aur special feel karwana chahte hain. Nisha Gokul Shamagrenye se kehti hain agla gana poore parivar ke liye, beti hai Raya, beta Tavish, pati Ramesh aur sabhi Gokul parivar ke naam. Wishing them a very happy Sunday. Wishing Mama Jamunti a very happy birthday. Wishing her loads of love, happiness, good health. Wishes hain from a beti Deepti, unke damad Dheeraj aur sabhi parivar jo unhe wish kar rahe hain happy wala birthday. So tamam log jo is waqt hamara saath de rahe hain on RM2 Radio Masti, bas aise hi saath nibhate rahiye. That's your timeless tadka abhi se lekar din ke 11 baje tak. Main hu Pari aapke saath.
0: Timeless Tadka
1: RM2
0: Timeless Tadka
2: टाइमलेस गानों की बात हो रही है, तो चलिए यहाँ पर सभी हमारे लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी लाइफ में भी कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज होंगी जिन्हें आप याद करना चाहते होंगे, तो शायद इन्हीं गानों के साथ आपकी भी कुछ खूबसूरत यादें जुड़ी हों। आप भी साथ निभा रहे हैं, सो मॉर्निंग को बना रहे हैं स्पेशल। इट्स योर टाइमलेस तड़का ऑन RM2 रेडियो मस्ती। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज है फ्रॉम द फिल्म चल मेरे भाई। एंजॉय दिस वन।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: तो चलिए दोस्तों, इट्स 8:57 विद दिस ट्रैक हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. परी का साथ टाइमलेस तड़का ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: सुबह के ठीक 9 बजे हैं देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं करुणा जी आपको नमस्कार
1: नमस्कार परी सभी को नमस्कार एमएमएम बीते कल आज और आने वाला कल कर्तव्य और जिम्मेदारी यही विषय चुना गया है एमएमएम के 57वें स्थापना दिवस के लिए जो कि इस रविवार 27 सितंबर को गिजवी में मनाया जाएगा बच्चों को प्रभावित करने वाली बुराइयों से निपटने के लिए रचनात्मकता को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना यही उद्देश्य है राइज प्लस कार्यक्रम का जो फिनिक्स रोटरी क्लब द्वारा काथोबोन में शुरू किया गया है माहोवाकवा का जलस्तर नवंबर के अंत तक 20% तक गिर सकता है यह अनुमान वाटर रिसोर्सेज कमीशन का है देश का मुख्य जलाशय फिलहाल 38.5% तक भरा हुआ है आज से पितृपक्ष शुरू हुआ है लोगों द्वारा अपने पितरों को याद करते हुए उनकी तृप्ति के लिए खास तर्पण एवं श्रद्धांजलि की जाएंगी विदेश में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा है ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस का अंतिम महासभा सत्र है गुटेरेस का कार्यकाल रिकॉर्ड संख्या में वैश्विक संकटों संघर्षों महामारियों जलवायु आपदाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक अहम दौर से भरा रहा और ईरान ने कहा कि वह अमेरिकी वार्ताकारों के आधिकारिक जवाब का इंतजार करेगा क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 दिनों के भीतर वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है इसी के साथ समाचार समाप्त हुए कुछ ही समय बाद शोक समाचार न्यू रोड कौचमिलिटेर में 71 साल की 71-year-old श्री सुशर्मा महादू जो जैक ऑंसियन फैक्टर से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनकी पत्नी श्रीमती मीरा महादू के मकान न्यू रोड कौचमिलिटेर से उठाकर दाह संस्कार के लिए सियाकोंस्टांस सेंट पियर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM और स्कूल लेन मेलरोज में 73 साल के 73-year-old श्री किशोर साहू मोती जो किशोर से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती रत्ना मोती के मकान स्कूल लेन मेलरोज से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोटाई ब्लाउस की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति
2: Your news on NBC Play and NBC.mu.
3: Timeless Tadka.
4: RM2.
3: Timeless Tadka.

0: तड़का
1: और RM2
0: टाइमलेस तड़का
2: वेल फ्रेंड्स सुबह के 9:09 मैं हूं परी आपके साथ वार्म वेलकम इन दिस आवर संडे की मॉर्निंग एंड आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सो कोशिश यही है कि ये जो एवरग्रीन ट्रैक्स हैं उन्हें हम आप तक पहुंचाएं जैसे हमने कहा कि गुड सॉन्ग्स जो हैं गुड म्यूजिक जो होता है उसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती ये गाने हमेशा ही पॉपुलर रहते हैं हमेशा ही दिल के करीब रहते हैं कभी कभार उन गानों को थोड़ा सा रीटच किया जाता है लेकिन कहते हैं ना गोल्डन मेलोडीज हमेशा दिल के करीब रहती है सभी के लिए दिस वन गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ अशान एंड ऑल द फैंस जो इस खूबसूरत गाने को पसंद करते हैं हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं टाइमलेस तड़का परी का साथ है ऑन RM2 रेडियो मस्ती

0: Express Tadka.
1: RM2.
2: तो चलिए दोस्तों, इट्स योर टाइमलेस तड़का और ऐसे ही कुछ टाइमलेस मेलोडीज के साथ अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम बनेंगे आपके हमसफर ऑन RM2 रेडियो मस्ती। तो चलिए, यहां पर चाचा महीन आए हैं अपनी गुड विशेस के साथ और कहते हैं लोड्स ऑफ लव, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, सक्सेस, गुड विशेस सभी लिसनर्स के नाम। और आपको भी हम ब्यूटीफुल संडे फंडे विश करते हैं चाचा महीन। थैंक यू सो मच, इतने प्यार से आप हमारा साथ देते हैं और इतनी गुड विशेस आप हम तक पहुंचाते हैं। सो हैव अ वंडरफुल संडे एंड अगला गाना डेडिकेट करेंगे फॉर यू एंड फॉर ऑल योर लव्ड वंस। विजया जी आई है अपनी गुड मॉर्निंग विशेस के साथ। सो गुड मॉर्निंग आपको विजया जी, एंड उम्मीद करते हैं ये संडे एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त हो। वैसे यहाँ मोका में तो बादल छाए हुए हैं, आपके वहाँ क्या हाल है हमें जरूर बताइए। मौसम का हाल चाल आप हमसे शेयर कर सकते हैं 5499124 पर। अभी ये तो लगता नहीं कि आज का जो मौसम है एकदम मस्त रहने वाला है, लेकिन क्लाउडी क्लाउडी मौसम अभी तो बना हुआ है। हैप्पी संडे विशेज ये है फ्रॉम अनिशा एंड नताशा, मेरीना है, शीतल, मेधा, रतीना, शीरू, नीरू, माधुरी, दिया, दनिशा, प्रिश्का, प्रिया, पूनम, अश्विना, सभी परिवार आज लेकर आए हैं अपनी स्पेशल विशेज। और चलिए कहते हैं हैप्पी संडे एंड वर्किंग राइट नाउ एट अमिची फिलिंग स्टेशन और विशेज हैं फॉर फ्रेंड केशव और साथ में है अब्दुल एंड सायरा बानू। तो चलिए यहाँ पर गाना होगा आपके नाम, काम कर रहे हैं आप, सो गुड विशेस टू यू, हैव अ वंडरफुल वंडरफुल संडे एंड गानों के साथ आपके दिल को बहलाए रखेंगे। यहाँ पर आए हैं एक ब्यूटीफुल शायरी के साथ, कहते हैं कि यादों में हमारी वो भी खोए होंगे, खुली आंखों से कभी वो भी सोए होंगे, माना हंसना है अदा गम छुपाने की, पर हंसते हंसते कभी वो भी रो दिए होंगे। That's coming from आकाश चेतन मनसुख बॉम्बू से हमारा साथ दे रहे हैं, सभी मनसुख परिवार के नाम गाना डेडिकेट कर रहे हैं और क्या बात है, शायरी के साथ आपने किया है वेलकम, सो गाना होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच आकाश एंड स्टे कनेक्टेड। ललिता चेतन आप भी साथ दे रही हैं और पहुंच गई हैं सी साइड टू एंजॉय दिस संडे और बिल्कुल हमारा डायलॉग मार रही है कि विटामिन सी की जरूरत है और फुल वॉल्यूम पर यू आर एंजॉयिंग रेडियो मस्ती। थैंक यू जी। सो आपकी लवली फैमिली के नाम गाना श्याम कुमार देवचन पेई बैसे सभी जीतन परिवार ऑफ लावॉन्चर सभी को याद कर रही हैं, सभी के नाम डेडिकेट कर रही हैं, ब्यूटिफुल गाना। मिस्टर रवि आए हैं अपनी हैप्पी संडे विशेस के साथ और चलिए यहाँ पर प्यारा सा गाना होगा आपके नाम एंड हैव अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम रेडियो मस्ती के साथ। प्रवेश सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे, उनके लिए लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल रामदयाल, जदू, लालमन, सीचन, नीलंबर, दयाल एंड दल्तमन फैमिलीज और गुड विशेज हमारे तमाम लोगों के नाम। साथ ही यहाँ पर स्पेशल विशेज उन लोगों के लिए जो आज ऑन 27th ऑफ सेप्टेम्बर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे।

So well friends, timeless तरह का 90s का वो खूबसूरत सा दौर ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स, लेकिन आज भी हम उन गानों को उतना ही पसंद करते हैं. एंड ऑफकोर्स फॉर द न्यू जनरेशन, शायद आपने इन गानों को ना सुना हो, तो बस उसी फ्लेवर को आप तक पहुंचा रहे हैं. फॉर ऑल द लिसनर्स, द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक लेकर आए हैं आपके लिए. एंड दैट्स योर टाइमलेस तड़का अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक. मैं हूं परी आपके साथ. और अगर आप भी कनेक्टेड हैं, ऑल यू हैव टू डू इज आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, आपके दिल का हाल ऑन 5499-1294. अभी के लिए उदित नारायण, साधना सरगम की आवाजें. फ्रॉम द फिल्म दिल वी हैव दिस खूबसूरत गाना. एंजॉय दिस वन.

0: तड़का
1: और एम टू
0: टाइमलेस तड़का
2: Sorry, kid, that show.

और चलिए आज बर्थडे है ऑफ अनीता बोगालू ऑफ सुदूस. आपके लिए बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम हस्बैंड देवी दत्त. साथ में है बेटे दिलीप, रॉबिन, डॉटर्स देविका, गीता, सीता, डॉटर इन लॉ पूजा, अनुषा एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन खुशी, सानवी, अनुष्का, अभी, तेजल, नीरल, निधि, शैली एंड अक्षत. सभी आपको विश कर रहे हैं वेरी हैप्पी बर्थडे. एंड ऑफकोर्स हमारी एंटायर टीम ऑफ RM2 रेडियो मस्ती आपको विश करेगी अ वंडरफुल वंडरफुल वन. इसी गाने के साथ बढ़ रहे हैं समाचारों की ओर. स्टे वेल कनेक्टेड.

0: The Time is brought to you by
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
2: Radio Musti.
3: North, South,
2: 103.5.
3: East, West,
2: 96.4.
3: Center,
2: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
2: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 10 a.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें करुणा जी से. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार. MMM बीते कल, आज और आने वाला कल, कर्तव्य और जिम्मेदारी, यही विषय चुना गया है MMM के 57वें स्थापना दिवस के अवसर के लिए, जो इस रविवार 27 सितंबर को गिजू में मनाया जा रहा है. कल सैमालू बेजिटोंबो में एक जानलेवा सड़क दुर्घटना पेश आई. शाम करीब 5:35 पर रॉयल रोड पर सैमालू फुटबॉल मैदान के पास एक मोटरसाइकिल कंक्रीट की दीवार से टकरा गई. मोटरसाइकिल चला रहे 27 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की परिस्थितियों की जांच की जा रही है. जनवरी 2027 से सेंट बार्थोलोम्यूज कॉलेज और रॉयल होलोवे कॉलेज को दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी. ये निर्णय प्राइवेट सेकेंडरी एजुकेशन अथॉरिटी के निदेशक मंडल ने लिया है. इसका कारण ये है कि दोनों कॉलेजों में छात्रों की आवश्यक न्यूनतम संख्या नहीं रही. अगले साल से संबद्ध छात्रों को उनके निवास स्थान के नज़दीक स्थित अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा. उनकी पढ़ाई में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे. दोनों कॉलेजों के स्थायी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को मॉरिशस एजुकेशन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड यानी कि मेटको में शामिल किया जाएगा. विदेश में ईरान ने कहा कि वह अमेरिकी वार्ताकारों के आधिकारिक जवाब का इंतजार करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 दिनों के भीतर वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए होमोज जलमार्ग को फिर से खोलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में ट्रंप की अस्वीकृति का उल्लेख किया. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति पर पहले विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया. इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा था कि तेहरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं. उन्होंने कहा कि ईरान तत्काल जल मार्ग को होमुज जल मार्ग को खोलने के लिए समझौता करना चाहता है, क्योंकि उन्हें बहुत बुरी तरह नुकसान हो रहा है. इसी के साथ समाचार समाप्त हुए. धन्यवाद. नमस्कार.
7: Your news on MBC Play and MBC.mu.
8: Timeless Tadka.
4: RM2.
8: Timeless Tadka.

तो चलिए दोस्तों इसी गाने के साथ वेलकम करते हैं आपका इन दिस आवर. 10:09 हो गए हैं. उम्मीद करते हैं दैट यू आर एंजॉयिंग हमारा टाइमलेस तड़का, टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन विद दीज क्लासिक सॉन्ग्स. और इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए आपको बता दूं, मैं हूं परी और साथ रहेगा

आपका और मेरा दिन के 11 बजे तक ऑन RM2 रेडियो मस्ती। मूड को सेट करने के लिए कुछ गाने ऐसे जो आपको हमेशा स्पेशल फील करवाते हैं, और अभी के लिए तो इट्स योर टाइमलेस तड़का। सो वंस अगेन एक और ब्यूटीफुल गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो दे रहे हैं हमारा साथ। एंड नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, 5499-1294 पर आपका इंतजार।

0: Lolo Hypermarché, low, low prices. Morcellement Saint-André et le Valentina Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: RM2
3: Radio Musty.
4: तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर खूबसूरत गाने शायद आप भी एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ, बिकॉज आज संडे का दिन जहाँ पर आपको मिले है कुछ आराम करने का टाइम, कुछ आराम के पल, और कोशिश यही है कि इन गीतों के साथ, इन गानों के साथ आपके दिल को हम बहलाए रखें। सो वेल, अभी के लिए गुड मॉर्निंग विशेज, ये है फ्रॉम रेखा जी, और कहती है गाना हो जाए फॉर मी, फॉर राकेश बोधन एंड स्पेशली हमारे सभी लिसनर्स के नाम। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच राकेश, हमारा साथ देने के लिए रेखा जी, और बस ऐसे ही आप स्वीट मैसेजेस हम तक पहुंचाती रहिए, प्यारे गाने आपके नाम हम करते रहेंगे। किरण यहाँ पर कहती है गाना हो जाए फॉर मामीज एंड मामू जो पुद्रदो विलेज रहते हैं, और सारे इतवारू परिवार के नाम। बिल्कुल जी, आपकी स्वीट फैमिली के नाम गाना हम जरूर डेडिकेट करेंगे। और कहती है हेलो परी जी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं ऑन दिस संडे मॉर्निंग? आई डो होप सब कुछ ठीक ठाक ऑन योर साइड। और कहते हैं हमेशा की तरह बहन हॉस्पिटल में है और उन्हें देखने जाएंगी आप, सो हम गेट वेल सून विशेज भेज रहे हैं उनके नाम, एंड ऑफकोर्स फॉर ऑल द पेशेंट्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर हॉस्पिटल में जो भी लोग काम कर रहे हैं। लोड्स ऑफ करेज टू यू ऑल, थैंक यू सो मच। ये जो स्वीट मैसेजेस आप हम तक पहुंचाते रहते हैं, और यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि इन गीतों के साथ आपके दिल को थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सुकून जरूर मिले। सो यहाँ पर आप जाएंगे अपनी सिस्टर को देखने, और अपने संडे को आप रेडियो मस्ती के साथ बता रही हैं। अनीता जी फ्लिक एंड फ्लैक से हमारे साथ कनेक्टेड हैं आप, सो गाना आपके नाम एंड फॉर ऑल योर लव्ड वंस। साथ ही यहाँ पर हमारी प्यारी सी रोशनी आई है अपनी गुड विशेस के साथ। तो चलिए रोशनी, आपकी गुड विशेस हम तक जरूर पहुंची है, और ऐसे ही कुछ स्वीट गानों के साथ आपके दिल को बहलाएंगे ऑन दिस संडे मॉर्निंग। और ऐसे ही जितने हमारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर।

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। टाइमलेस तड़का
1: RM2।
2: सो वेल फ्रेंड्स, फैशन टिप लेकर आए हैं आपके लिए। तो कभी आपकी कोई फेवरेट शर्ट या कुर्ती या ड्रेस बिल्कुल अच्छी होती है, लेकिन उसके बटन्स थोड़े से पुराने लुक देने लगते हैं। तो कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ बटन्स बदलकर आप इसका लुक कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। पुराने प्लास्टिक बटन्स हटाकर आप फैब्रिक के हिसाब से मेटल, पर्ल लुक, वुडन या फिर फैब्रिक कवर्ड बटन्स लगवा सकते हैं। और जरूरी नहीं कि सारे बटन्स बदले, कई बार सिर्फ ऊपर के एक, दो या तीन स्टेटमेंट बटन्स भी पूरा लुक चेंज कर देते हैं। छोटी सी टेलरिंग, खर्च भी कम और वही पुराना कपड़ा अचानक बिल्कुल नया दिखाई देने लगता है। सो ये तो आप ट्राई कर सकते हैं। और स्पेशली अगर हम लेडीज की बात करें, सो आपकी कुर्ती अगर सिंपल सी है तो इसमें भी आप अगर चाहें तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ जो बटन्स है उसे आप लगा सकते हैं। अगर आपको वीर ज़ारा में हमारी प्यारी सी जो प्रीति ज़िंटा है उसका लुक अगर आपको याद होगा, जो गाना था हम तो भाई

0: ऐसे हैं वैसे रहेंगे, जहां पर उन्होंने एक सिंपल व्हाइट कुर्ती डाली थी लेकिन जो बटन्स थे वो काफी डिफरेंट थे, यानी कि उसमें थोड़ी सी झांझर लगी हुई थी, थोड़े से घुंघरू लगे हुए थे, एंड इट वाज लुकिंग सो प्रीटी। सो बस आइडिया यही है कि सिंपल बटन्स के साथ आप अपने पूरे लुक को चेंज कर सकते हैं, अपने पूरे आउटफिट को चेंज कर सकते हैं। सो आज के लिए ये था आपका फैशन टिप, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: You're listening to RM2, a Radio Masti.

एक्चुअली दिस इज लव. चलिए आज कजिन, जीजू, दोस्त, ब्रदर विशाल, गोपीनाथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. पूरा परिवार उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा है. स्वस्थ रहें, खुश रहें एंड हैप्पी संडे विशेस टू एवरीवन. स्पेशल विशेस ये है रोशनी की ओर से. एंड वेल विशाल गोपीनाथ जी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो दिस वन गोज आउट फॉर यू एंड स्पेशली टू ऑल दोस्त जो आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन.

तो चलिए यहां पर आपका जन्मदिन सो आपके लिए स्पेशल विशेस एंड शुभकामनाएं और हैप्पी बर्थडे हमारे पूरे टीम की ओर से विशाल गोपीनाथ. साथ ही यहां पर ये जो प्यारा सा गाना है गोज आउट फॉर हस्बैंड सर्वेश एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम वाइफ दर्शनी. भाई विद्या सिंह नवोसा आपको हैप्पी बर्थडे विशेस, ये है आपके पूरे परिवार की ओर से. प्रीतम बेटू जी साथ दे रहे हैं पीतो से, गुड मॉर्निंग विशेस लेकर आए हैं आप फॉर यू फॉर योर वाइफ वर्षा. यहाँ पर हम चला रहे हैं ये खूबसूरत सा गाना. सीता गीता बोलू राम फ्रॉम शातो बनारस आप भी हमारी हम सफर बनी है, तो चलिए एंजॉय करें. ये गाना है स्पेशली आपके नाम और साथ ही हमारे जितने भी लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हैव अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम, गानों को एंजॉय करें आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ. और रेखा जी कहती है कयामत से कयामत तक जब आई थी आई वॉज इन स्टैंडर्ड सिक्स, काफ़ी छोटी सी थी और हिंदी फिल्मों का क्रेज काफ़ी ज़्यादा था और वो क्रेज़ तो आज भी बना हुआ है. चलिए सो यहाँ पर प्यारे गाने शामिल हो रहे हैं टाइमलेस तड़का. मैं हूँ परी आपके साथ दिन के 11 बजे तक.

0: And इसी track के साथ it's time for Pari to say goodbye. जाते जाते प्रकाश वती जी साथ दे रहे हैं आप. So this one goes out for you. बहुत सारा प्यार आपके नाम. For brother Abhishek Tarachand, आज अपना birthday celebrate कर रहे हैं. Best wishes from sister Bindiya, उनके जीजू सोना and सैनी और साथ में है स्वयं. आप उन्हें बहुत miss कर रहे हैं. वो Canada में हैं. तो चलिए good wishes इसी गाने के साथ. और इसी गाने के साथ it's time for Pari to say goodbye. आ रही है पूनम लेकर your Bolly Brunch. उनका साथ निभाइए. मुलाकात होगी कल. तब तक के लिए enjoy your Sunday. Take care, keep smiling and stay safe.
1: Ciao.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check, din ke 11 baje hain. सुनते हैं देश विदेश की खबरें करुणा जी से आपको नमस्कार
4: नमस्कार परी सभी को नमस्कार एमएमएम बीते कल आज और आने वाला कल कर्तव्य और जिम्मेदारी यही विषय चुना गया है एमएमएम के 57वें स्थापना दिवस की जो कि आज 27 सितंबर को गिजवी में मनाया जा रहा है 57 वर्षों के दौरान एमएमएम ने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं जिसमें कई नेताओं और सदस्यों का पार्टी से अलग होना और नए सदस्य

0: सदस्यों का जोड़ना भी शामिल है। महोवाकवा का जलस्तर नवंबर के अंत तक 20% तक हो सकता है। यह अनुमान वाटर रिसोर्सेज कमीशन का है, जिसे सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने गुरुवार को साझा किया। देश का प्रमुख जलाशय फिलहाल 38.5% तक भरा हुआ है और यदि द्वीप के इस हिस्से में तेज बारिश नहीं हुई तो CWA ने चेतावनी दी है कि वो प्लेन विलहम्स, मुक्का और गिवियनवा के एक हिस्से में पानी की आपूर्ति के लिए यहां से और पानी नहीं ले सकेगी। स्थिति में काफ़ी अंतर दिखने को मिल रहा है। 17 सितंबर 2025 को महोवाकवा का जलस्तर 93.1% था, जबकि इस वर्ष इसी अवधि में यह 39.9% दर्ज किया गया है। कल सैमालो बेजिटोबो में एक जानलेवा सड़क दुर्घटना पेश आई। कल शाम करीब 5:35 पर रॉयल रोड पर सैमालो फुटबॉल मैदान के करीब एक मोटरसाइकिल कंक्रीट की दीवार से टकरा गई। मोटरसाइकिल चला रहे 27 वर्षीय युवा की मौत स्थल पर ही हो गई। आज 27 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हुआ है, 10 अक्टूबर को ये समाप्त होगा। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि है, जिसमें लोग अपने पितरों को याद करते हैं, उनकी तृप्ति के लिए तर्पण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विदेश में अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से में कई मिलियन लोग एक शक्तिशाली तूफान की चपेट में आने वाले क्षेत्रों में हैं, जिसके कारण तटीय इलाकों में बाढ़, बिजली कटौती, यातायात में अव्यवस्था और स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रमों के रद्द होने की स्थिति पैदा हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार न्यूयॉर्क सिटी, बोस्टन समेत कई इलाकों में खतरनाक तटीय बाढ़ और समुद्री तटों पर जोखिमपूर्ण परिस्थितियां, तेज हवाएं और भारी बारिश होने की आशंका है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। सैंपल रोड फिनिक्स में विनर्स के सामने 67 साल के 67-year-old श्री अशोक डुमन, जो अशोक से जाने जाते थे और पहले फिशरीज के अफसर थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनकी पत्नी श्रीमती विदुषी डुमन के मकान सैंपल रोड फिनिक्स विनर्स के सामने से उठाकर दाह संस्कार के लिए आलिब्रियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे आतिफ रेपीएम। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
1: Bollywood Brunch RM2 Radio Masti.

0: Polly Branch RM2 Radio Masti.
1: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हेलो सभी को, कैसे हो आप सब। बज गए हैं 11:10 और आरएम टू रेडियो मस्ती में आप सभी का स्वागत है। वेलकम, मैं हूं आपके साथ पूनम। तो बताओ आज क्या प्लान है, कहीं बाहर जा रहे हो, कैसे हो, जो भी हो हमें मैसेज करो 5499124 पर, क्योंकि हम बैठे हैं आपके लिए वो प्यारे प्यारे गाने लेके जो इसका सुनने का आपका मूड है। क्योंकि आज है संडे, छुट्टी का दिन है, तो चलो कुछ ऐसा करते हैं, कुछ अच्छे गाने चलाते हैं, अच्छा मूड बनाते हैं। और हमें पता है ये जो टाइम है ना, ये इंजॉय करने का है। तो आरएम टू रेडियो मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आरएम टू रेडियो मस्ती हमेशा 24 आवर्स आप

0: के साथ रहता है दिल से प्यार से और हर तरह से हर मैसेज के साथ में। तो हम तो बस इंतजार में हैं आपके मैसेजेस का। मेरे साथ पहले थी आपके साथ परी और परी से पहले थी नीलमणि। तो देखिए हम आरजेस आपको सिर्फ खुश करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि गाने सुनो, अपने काम करते रहो, इंजॉय करो इन गानों को।
1: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
2: Let me hear you say.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:19 हो चुके हैं दोस्तों, और आज आपको हम बताएं कि 27 सितंबर है, जो कि आपको भी पता है पर आपको इतना नहीं पता जो हम मैं बताने वाली हूँ। जी हाँ, आज ही के दिन 1932 में जन्म लिया था बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस, यस हम बात करने जा रहे हैं यश चोपड़ा जी की। सोचो, जिस आदमी ने हमें मूवी दी होगी दीवार, कभी कभी, चांदनी, डर, दिल तो पागल है और वीर ज़ारा जैसी मूवी। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि यश जी जो थे इंजीनियर बनने वाले थे, पर लंदन जाने से पहले ही उन्होंने पढ़ाई के लिए कहा कि नहीं, मुझे पढ़ाई इतनी नहीं करनी, मुझे तो फिल्मों का रोग लगा है और मुझे तो बस फिल्म बनानी है। और पेरेंट्स ने बोला कि अरे अभी तुम कहाँ पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या कर पाओगे, फिल्मों में तो कुछ होता ही नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, मुझे मुंबई जाने दो प्लीज़, मुझे यही आता है, मुझे यही समझ आता है, मेरे दिमाग में स्क्रिप्ट और मूवीज़ और गाने ये सब चलते रहते हैं। तो उनके पेरेंट्स ने बोला ठीक है भाई, करना है तो करो, और उन्होंने फिर बनाई बहुत सारी मूवीज़। और एक दिन कहा कि जब मैं बनाने जा रहा हूं एक ऐसी यादगार मूवी, और बनाई कभी कभी, क्या बात है, क्या गाने हैं। और उसके बाद आई वीर ज़ारा, एक क्यों ना हम वीर ज़ारा मूवी का एक गाना सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना, एंजॉय कीजिए इस गाने को।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: FM 2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti AM 2 PM sunte raho.
3: MBC TV programs ki jhalkiyan.
4: Acha hua mili warna mera game kharab ho jata.
5: Excuse me.
4: Ha?
5: आपको मेरा नाम किसने बताया?
4: आपका नाम? मुझे क्या मालूम आपका नाम क्या है?
5: अभी अभी तो आपने कहा अच्छा हुआ मिली।
4: ओ, वो मैं अपने बॉल के लिए कर रहा था अच्छा हुआ मिली। आप भी मिली है क्या?
5: जाइए यहाँ से। एक तो मेरी पेंटिंग खराब कर दी ऊपर से।
4: पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग?
6: कहता है बाबू
0: रविवार 27 सितंबर को एमबीसी 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म बाबुल 2006 की मूवी सलमान खान और अमिताभ बच्चन पर फिल्माई गई बाबुल।

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:37 हो चुके हैं दोस्तों, और आज ही के दिन 2008 में हमसे विदा हुए थे एक ऐसे गायक जिनका नाम था महेंद्र कपूर साहब, जिनकी आवाज़ गोल्डन एरा के एक आखिरी पार्श्व गायक थे, जिनकी आवाज़ ने हमें हमारे देश की धरती चलो एक बार फिर से नीले गगन के तले छोड़ के तेरे प्यार का दामन, क्या ब्यूटीफुल सॉन्ग्स दिए। आप जानते हैं उन्होंने तकरीबन 25,000 यानी 25,000 से ज़्यादा गाने गाए थे बॉलीवुड के लिए, चाहे आप भजन कह लो, देशभक्ति गाने कह लो, रोमांटिक गाने कह लो, हर जॉनर में उनका कोई जवाब नहीं था। और वो कहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब के स्टूडेंट थे। मोहम्मद रफ़ी साहब से उन्होंने एक दिन कहा कि प्लीज़ मुझे आप ही सिखाइए, और वो बहुत छोटे हुआ करते थे, उम्र में एक बहुत बड़ा कहते हैं फ़र्क था, पर मोहम्मद रफ़ी साहब भी तो एक ऐसे गायक जिन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, जिनसे रफ़ी साहब से सीखा और ऐसा गायक बना जिनका नाम रहा महेंद्र कपूर। तो चलो महेंद्र कपूर जी की याद में एक गाना सुनते हैं, और वो जिनको पुराने गाने पसंद हैं उनको तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इन्जॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को, और उनकी याद में एक हम दिल से उनके लिए कहते हैं जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: हेलो ब्रांच
1: और रेडियो मस्ती
2: 11:47 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ और इस समय आपके साथ दे रही है पूनम। तो मैं तो आपको ये बोलूंगी कि मुझे एहसास है कि घर पे सबका माहौल जो है ना बड़ा थोड़ा सा टेंस वेंस हो रखा होगा। जिन जिन के घर में यंग बच्चे हैं जिनके कल से एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं तो हम आपको यही बोलेंगे बच्चों रट्टा मत मारना, बिल्कुल जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से फोकस होकर देखना, उसको समझना। अभी अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी भी अगर आप बैठेंगे ढंग से फोकस होकर फोन को साइड में रख दो, बस हल्का सा कुछ खाओ पियो, थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा आइज एक्सरसाइज करो, रियली थोड़ा सा 2-5 मिनट अपनी एक्सरसाइज पर जरूर देना। और हम पेरेंट्स को जरूर बोलेंगे कि आप थोड़ा सा कूल डाउन होकर बात कीजिएगा, उनको ज्यादा टेंशन मत दीजिएगा। और मुझे पता है कि बच्चे बहुत मॉरिशस के बच्चे इतने मतलब समझदार हैं, उनको स्कूल से ही मतलब सब प्रोफेसर्स टीचर्स प्रिंसिपल्स सब अच्छे से समझा के रखते हैं और वो बहुत काम करने वाले बच्चे हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर एक एनर्जी और फोकस होता है। बाकी कंट्रीज में मुझे नहीं पता कैसे होता है, बट यहाँ मॉरिशस में तो बहुत अच्छे बच्चे हैं तो उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, उनको ये भी पता है कि कल एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं। तो हम तो यही बोलेंगे आपको बेस्ट विशेस हमारी पूरी RM2 रेडियो मस्ती की टीम की तरफ से। स्पेशली हम आपको बोलेंगे पेरेंट्स का जो थोड़ा सा फिक्र होती है वो ज़रूरी भी है, पर ये आपका टाइम है, कल से आपका कुछ स्पेशल टाइम आ रहा है जहाँ पर आपको फोकस भी करना है, अच्छा खाना भी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहाओ थोड़ा सा फ्रेश हो, बाहर चिंता मत करो कि ठंडक है, थोड़ी सी ब्रीद मिलेगा ना, एक फ्रेश ब्रीद लेकर आओ, थोड़ा सा योगा कर सकते हो 5 मिनट 2 मिनट, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते रहना और उसके बाद आपको देखना कि आपको इतना अच्छा लगेगा, ऐसे लगेगा कि टेंशन ही नहीं है, शोल्डर से सारी टेंशन उतर जाएगी। और एक एक करके अपने चैप्टर्स को अच्छे से रीड करें, फोकस कीजिए। तो हम तो यही कहेंगे रट्टा मत मारो, पर गाना आपको वही चला के देंगे क्योंकि ये बड़ा टेस्टी सा बड़ा फ्लेवर अच्छा सा लगता है स्टूडेंट्स के लिए आता है। एंजॉय कीजिए इस गाने को।
0: बॉली ब्रांच
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: मस्ती ब्रांच
1: आर एम टू रेडियो मस्ती।
2: दोस्तों हम लेकर आए हैं एक हाउसहोल्ड डेकोरेशन टिप आप सभी के लिए कि अगर घर में कोई ऐसा खाली कॉर्नर है और समझ नहीं आ रहा वहाँ क्या रखें। कई बार ऐसी जगह होती है कि बहुत ही खूबसूरत जगह होती है बट हमें खुद ही नहीं पता होता है, हम वहाँ से ऐसे ही क्रॉस करते चले जाते हैं। तो हमें आपको यही कहेंगे कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा पॉट है उसके अंदर आप वो छोटी छोटी लाइट्स होती है ना उसका एक गोला सा बना दीजिए, उसके ऊपर रख दीजिए और उसके ऊपर

0: अंदर अगर आप एक ग्लास का कोई भी मिरर, जैसे कोई ग्लास होता है वैसे रख देंगे और नीचे से उसमें एक लाइट छोटी सी ऑन करेंगे, तो आप बिलीव में एक ऐसा कॉर्नर बन जाएगा जहाँ पे बहुत सारी लाइट्स होगी और जहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, उसी पॉट के बाहर कुछ मिरर्स, जैसे बच्चों के साथ में खेलते हैं तो आप बाहर जाइए मार्केट से छोटे छोटे से बड़े गोल कतर हैं कि जैसे हम जो कपड़ों पर लगाते हैं ना वो वाले जो मिरर्स होते हैं उसके पीछे ग्लू लगाइए और एक एक पॉट पर लगा दीजिए, वो आपका इतना कॉर्नर बहुत सुंदर बन जाएगा। उसके साथ में जहाँ पर बॉर्डर्स होंगे, जहाँ जहाँ पे वो कॉर्नर बना होगा वहाँ पर आप पेंट भी कर सकते हैं और ये एक ऑसम पॉट बन जाएगा। सिंपल कुछ ही रुपए का पॉट होगा और वो देखिएगा इनसाइड जो लाइट्स होगी उसके ऊपर ग्लास और बाहर ग्लास, वो आपका इतना एक्सपेंसिव पॉट हो जाएगा कम से कम 10 साल चलेगा। इंजॉय कीजिए गानों को।
1: RM2 Radio Musti Household and Decoration Tips brought to you by Lolo Hypermarket.
2: RM2
1: Radio Musti

0: Welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी से. करुणा जी आपको नमस्कार.
5: नमस्कार पूनम. सभी को नमस्कार. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल रात लंदन के लिए रवाना हुए. ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान वेशागुस द्वीप समूह के मुद्दे पर उच्च स्तर पर चर्चा जारी रखेंगे. खासकर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते के क्रियान्वयन से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर. इस दौरान उनकी मुलाकात बरतानी प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावल से भी होगी, जो शागुस मामले में एक प्रमुख वार्ताकार हैं. उन्हें ब्रिटिश सरकार ने शागुस द्वीप समूह को लेकर मॉरिशस के साथ बातचीत के लिए विशेष दूत भी नियुक्त किया था. प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आर्याना वोमाकी प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालेंगी. MMM ने अपने 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर गजवी में अपने समर्थकों को जुटाया. MMM के अध्यक्ष रेजा उद्दीन ने पार्टी के इतिहास पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि MMM का अस्तित्व ही सांप्रदायिकता को खत्म करने के उद्देश्य से है. उन्होंने ये भी कहा कि MMM एक ऐसी पार्टी है

0: जहां लोकतंत्र जीवंत है। रेजा उद्दीम के अनुसार केवल सरकार में रहकर ही चुनावी प्रोग्राम लागू किया जा सकता है। आज से पितृपक्ष शुरू हुआ है जो 10 अक्टूबर तक चलेगा। इसके दौरान खास रूप से पितरों को याद किया जाता है, उनकी तृप्ति के लिए तर्पण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कल सैमालो बेजितोंबो में एक जानलेवा सड़क दुर्घटना हुई। शाम 5:35 के करीब रल रोड पर सैमालो फुटबॉल मैदान के पास एक मोटरसाइकिल कंक्रीट की दीवार से टकरा गई। मोटरसाइकिल चला रहे 27 वर्षीय युवक की मौत स्थल पर ही हो गई। विदेशी स्तर पर ईरान ने कहा कि वो अमेरिकी वार्ताकारों के आधिकारिक जवाब का इंतजार करेगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 7 दिनों के भीतर वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए होमोज जलमार्ग को फिर से खोलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ट्रंप की अस्वीकृति का उल्लेख किया उन्होंने और अमेरिकी राष्ट्रपति पर पहले ही विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। सैंपल रोड फिनिक्स में विनर्स के सामने 67 साल की 67-year-old श्री अशोक दोमन जो अशोक से जाने जाते थे और पहले फिशरीज के अवसर थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 की पत्नी श्रीमती विदुषी दोमन के मकान सैंपल रोड फिनिक्स से उठाकर दाह संस्कार के लिए आलिब्रियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU.
2: Body Branch RM2 Radio Masti.
3: MBC TV programs की झलकियाँ।
4: अच्छा हुआ मिली, वरना मेरा गेम खराब हो जाता।
5: Excuse me.
4: हाँ?
5: आपको मेरा नाम किसने बताया?
4: आपका नाम? मुझे क्या मालूम आपका नाम क्या?
5: अभी अभी तो आपने कहा अच्छा हुआ मिली।
4: ओ, वो मैं अपने बॉल के लिए कर रहा था अच्छा हुआ मिली। आप भी मिली है क्या?
5: जाइए यहाँ से। एक तो मेरी पेंटिंग खराब कर दी ऊपर से।
4: पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग?
6: कहता है बाबुल
7: रविवार 27 सितंबर को MBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म बाबुल 2006 की मूवी सलमान खान और अमिताभ बच्चन पर फिल्माई गई बाबुल।

0: हाई ब्रांच
1: और रेडियो मस्ती। 12:11 हो चुके हैं दोस्तों, और तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ये सच बात है, जैसे आपका प्यार आता है मैसेजेस के थ्रू, हमारा दिल खुश हो जाता है। और इतने सारे मैसेजेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, हमने सोचा चलो भाई ये टाइम है, थोड़े से मैसेजेस भी ले लेते हैं। इस समय साथ दे रही हैं हमारी हिना, प्रिया एंड सुनीता जी, और इन्जॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच आप सबका। ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से, और अपनी पत्नी को बस इतना कहना चाहते हैं, इस समय आप ये प्रोग्राम सुन रही हो और मैं आपको इतना ही कह रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी इंडिया आऊँगा और आपसे मिलूँगा। क्या बात है भाई, जल्दी जाएँ, उनको और इंतज़ार ना कराएँ तो ही अच्छा है। रीता जी साथ दे रही हैं इटली से, और कह रही हैं सभी पेरेंट्स के लिए कि सभी पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बच्चे समझेंगे, और हम इतना सेक्रीफाइस करके यहाँ पर आए हैं, और ये ज़िंदगी में हम इतना उतार चढ़ाव सब कुछ सह रहे हैं सिर्फ बच्चों के लिए, और बच्चों को भी समझना चाहिए ज़िंदगी में कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। मैं बिल्कुल मानती हूँ आपकी बात को मैम, कि बच्चों को समझना चाहिए, पर बच्चों की भी एक ज़िंदगी में समझने की उम्र होती है। आप देखिए आज इटली में हैं, मॉरिशियस से गए हैं वहाँ पे, और आपको भी आपके ऊपर वाले ने कह लो या जितनी भी आपकी स्ट्रगल और मेहनत की, आपके बच्चे वो स्ट्रगल ना करें तो देखिए आप वहाँ पर है ना, तो बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। बस उनको प्यार और कहते हैं ना, प्यार और लाड ज़रूरी है इस समय, इस उम्र में, और साथ में थोड़ा सा उनके साथ साथ रहिए, उनको पढ़ाइए और उनका ख्याल रखिए, खिलाइए पिलाइए, बस अपने आप अपना रिश्ता बच्चे पकड़ लेते हैं। एक टाइम आता है जब उन्हें समझ आ जाता है कि फ्रेंड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, कोई भी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उनका पैशन और उनकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, और फिर देखिएगा सब ठीक हो जाएगा, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। चलिए जी, प्रकाश उन्ती जी साथ दे रही हैं, और उन्हें पुराने गाने बहुत पसंद है, इसीलिए जब मैंने ये महेंद्र कपूर साहब का गाना लगाया तो उनको बहुत अच्छा लगा, कह रहे मेरा दिल खुश हो गया। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही जुड़े रहिए, अभी भी बहुत सारे गाने चलेंगे। राजन रघुपति जी साथ दे रहे हैं लंदन से, और एंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और कह रहे हैं मैं वाईफाई पे ही प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, कभी भी बॉली ब्रंच को नहीं छोड़ता, मुझे बहुत अच्छा लगता है आरएम टू रेडियो मस्ती। क्या बात है, थैंक यू सो मच आप सभी का जो भी साथ दे रहे हैं, चाहे मॉरिशस से चाहे बाहर देशों से, हम तो बस यही कहेंगे जहां भी रहें आप सब खुश रहें, आपके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा ऐसे ही बनी रहे। एंजॉय कीजिए प्रोग्राम को, और ये गाना आप सभी के लिए।
0: बॉली ब्रंच आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: सीसीटीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: एक सवाल हमेशा मेरे मन में टिक टिक टिक टिक करता है कि लोग मछली की तरह तैर कैसे लेते हैं। काश मैं भी तैर पाती।
2: तो अब तुम्हें तैरना भी नहीं आता? तुम्हें तैरना नहीं आता? अच्छा ठीक है, मैं जाके बिल देके आता हूँ, तब तक तुम तैरना सीख लो। मुझे हर बार धोखा नहीं दे सकती।
1: मुझे बहुत डर लग रहा है।
2: 1 2 3 क्योंकि
3: सत्ताईस सितंबर रविवार

0: इतवार को NBC4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म क्योंकि 2005 की मूवी सलमान खान और करीना कपूर पर फिल्माई गई क्योंकि
1: रेडियो मस्ती सुनते रहो।

0: Family Brunch RM2 Radio Masti
1: 12:26 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ में। और यहाँ पर इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए और सभी कह रहे हैं, सभी का दिल कर रहा है एक

0: दूसरे को मैसेज करने का, साथ में अपने रिलेटिव्स को भी विश करने का कि वो इस बोल रहे हैं कि कजन्स हैं हमारे, ये हैं वो हैं, पर हम क्या करें इतने सारे मैसेजेस, पर कुछ तो हम ज़रूर लेने वाले हैं क्योंकि बहुत ही प्यार से और दिलों के साथ में मैसेजेस आए हैं कि प्लीज़ ज़रूर विश कीजिएगा। फर्स्ट तो राहुल के लिए बेस्ट विशेज आए हैं, रूमा हरीश काली चरण फैमिली एंड कैरू फैमिली की तरफ से, और उनको बस इतना ही बोल रहे हैं बेस्ट विशेज़ फॉर योर बर्थडे, हमेशा तुम खुश रहो, ये बर्थडे आज तुम्हारा है, स्पेशल है, तो बस भाई बनाओ बर्थडे और हमें भी फोटोज भेजिएगा। रवि जी साथ दे रहे हैं और बस मैसेज कर रहे हैं क्या बात है, अरे इतना छोटा सा मैसेज लिखा है क्या बात है, कुछ तो बताओ क्या बात है। मुझे पता है कि आपको गाना पसंद आया, एंजॉय कीजिए, थैंक यू सो मच। कृष्णा जी की मम्मी पापा उन्हें विश कर रहे हैं उनके कल के एग्जाम के लिए और बोल रहे हैं पढ़ाई कर लो आज, बस तुमको और कुछ नहीं करना है। मुझे पता है आज बच्चों को कोई काम नहीं देंगे, वरना आप लोग ये बोलते रहते हो अरे झाड़ू मार लो, कमरा साफ कर लो, ये कर लो वो कर लो, आज आपको सबको रियलाइज हो रहा है कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, तो हम तो यही कहेंगे भाई आज सारे काम छोड़ दो, आज सिर्फ पढ़ाई करो, और पेरेंट्स को भी यही कहेंगे खाना वाना देते रहो इन बच्चों को, प्यारे प्यारे छोटे मोटे बच्चों को। हिना जी और प्रीति के मम्मी पापा उन्हें विश कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई अपनी पढ़ाई करो और कल तुम्हारा एग्जाम है, उसके लिए बेस्ट विशेज। खुशी कृतिका ग्लेन पार्क से, आस्था त्रिशा युतिका प्रिशा रिद्वान और ग्लॉस के लिए उनके मम्मी पापा विश कर रहे हैं उनके एग्जाम के लिए, और सभी जने यही कह रहे हैं एक ही बात कि तुम्हारी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ भूल जाओ, फोन को कर दो साइड में, बस कंसंट्रेट करो पढ़ाई पे। हम भी यही कहेंगे आपको पूरी RM2 रेडियो मस्ती, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी कल आपका एग्जाम है उसके लिए हमारी तरफ से एडवांस में बेस्ट विशेस, पर इतना जरूर कहेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ में अच्छा खाइएगा और मुस्कुराइएगा, और पेरेंट्स का थोड़ा सा सपोर्ट अगर आपको मिल जाए और थोड़ा सा आप पेरेंट्स को भी एहसास दिला सकें कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इससे बढ़कर बात क्या होगी। इंजॉय कीजिए इस गाने को जो भी कर रहे हैं, बाकी सब करो पढ़ाई।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: Story Brunch RM2 Radio Masti
1: 12:43 हो चुके हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती के साथ और इस समय साथ दे रही है पूनम और आपके मैसेजेस के साथ तो बहुत ज़बरदस्त है। बस भेजते रहिए आपके दिल की कोई भी मैसेज है जो आपको लगता है कि आपको भेजना चाहिए 5491294 पर। और आज आपको बता दें कि आज है वर्ल्ड टूरिज़्म डे और हमारी तो कंट्री वैसे ही टूरिस्ट के लिए बनी हुई है जहाँ प्यार विश्वास और इतना सारा माहौल प्यारा सा पूरे मॉरिशस में हम इस को सेलिब्रेट करते हैं। और मैं तो ये बताऊँ अगर आपका भी कोई दिल कर रहा है कहीं घूमने का तो बिल्कुल चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि एग्ज़ाम्स हैं बच्चों के तो आप कह रहे होंगे अरे कैसे जाएं, दिल तो बहुत कर रहा है कोई नया शहर घूमने का कोई जगह जाने का। और भाई आ ही गया है अक्टूबर भी बिल्कुल एक दो दिन ही रह गए हैं और उसके बाद फिर अक्टूबर फिर नवंबर दिसंबर चले गए और दिसंबर में कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी पर पेरेंट्स कहेंगे नहीं नहीं अभी कहीं नहीं जाना अभी सिर्फ पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो हम तो आपको यही कहेंगे बिल्कुल पास है कोई बात नहीं, आप दिमाग में रखो कहाँ जाना है कहाँ घूमना है या आपके पास कोई आने वाला है तो उनके लिए कुछ तैयारी कर लो। बच्चों को पढ़ने दो और हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, तो हम तो यही कहेंगे आपका सफ़र जो भी आप प्लानिंग करेंगे हमेशा अच्छी करेंगे और ये इस डे को ज़रूर सेलिब्रेट करें क्योंकि ये जब सेलिब्रेट दिन आते हैं और सेलिब्रेट करने का मन करता है तो आसपास कुछ ना कुछ माहौल होना चाहिए। तो अगर आपके घर पर अभी माहौल नहीं बन रहा है कहीं नहीं जा पा रहे हैं कहीं ना कहीं बिजी शेड्यूल की वजह से तो कोई बात नहीं, हम आपका मूड बनाते हैं पर आपको यही कहेंगे थोड़ा दिमाग में कहीं घूम लो कहीं इसमें कौन सा खर्चा लगने वाला है, कोई टिकट नहीं लगेगी कहीं पे नहीं लगेगी। ये गाना आप सबके लिए जो कहीं नहीं जा सकते और मेरे साथ घूमेंगे दिमाग दिमाग में।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती

0: Radio Masti. Your number one Bollywood station. Sunte raho.
1: रेखा जी, स्पेशली आपके लिए, आपने बताया मौसम बाहर बहुत ही प्यारा हो रखा है, रोमांटिक हो रखा है, तो बस एंजॉय कीजिए गानों को। साथ में प्रकाश पंती जी साथ दे रही हैं बेल्जियम से, साथ में ललित जी जुड़ चुके हैं डायरेक्टली अपने पूरे परिवार के साथ में इंडिया से। एंजॉय कीजिए गानों को। सुया बिहारी जी भी साथ दे रही हैं, एंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को और अपने पूरे परिवार के लिए बेस्ट विशेज मांग रही हैं। साथ में बहुत सारे लोग और जुड़ते चलिए जी, फिर उसके बाद आराम से बात करते हैं।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहे हैं, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से। अदिति आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल शाम लंदन के लिए रवाना हुए। यूके में वे शागस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बातचीत में शामिल होंगे, खासकर इस संबंध में मॉरिशस और यूके के बीच तय हुए समझौते को लागू करने के सिलसिले में हुई हालिया प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस दौरे के अंतर्गत वे बरतानी प्रधानमंत्री दफ्तर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शागस दस्तावेज के साथ शुरू से जुड़े जोनाथन पावेल के साथ भेंट करेंगे। पावेल को शागस द्वीप समूह को लेकर मॉरिशस के साथ बातचीत के वास्ते बरतानी सरकार के खास दूत के तौर पर नियुक्त किया गया था। डॉक्टर नवीन राम गुलाम की अनुपस्थिति में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आरियाना वमारी अंतरिम रूप से प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालेंगी। एमएमएम की स्थापना की 57वीं वर्षगांठ मनाने के लिए रेजवी में कल दल के समर्थक और अधिकारी आज एकत्र हुए। एमएमएम के अध्यक्ष गिजाउद्दीन ने अपने संदेश में पार्टी के इतिहास की एक झलक पेश की और कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य ही सांप्रदायिकता खत्म करना रहा है। उन्होंने कहा कि एमएमएम एक ऐसी पार्टी है जहां लोकतंत्र पूरी तरह से जिंदा और मजबूत है। गिजाउद्दीन ने कहा कि चुनावी प्रोग्राम को मात्र सरकार में रहकर ही लागू किया जा सकता है। कनाडा में लग रहे साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंतर्गत हुई एलिट विमेन रोड रेस में हमारी हमवतन किम्बर्ली लुकोपियना ने 45वां स्थान लिया। वो विजेता बनी नेदरलैंड्स की राइडर डेमी वोलेरिंग से 5 मिनट पीछे रही। ये रेस

0: किम्बर्ली के लिए काफ़ी मुश्किल रही। फिनिश लाइन से 94 किलोमीटर पहले पेश आए एक हादसे में कई साइक्लिस्ट गिरे थे, जिनमें किम्बर्ली भी शामिल थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीस की राजधानी एथेंस में एक पर्यटन लॉज में हुए गैस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई है। इनमें अमेरिकी मूल के 4 लोग और बरतानी मूल का एक व्यक्ति शामिल है। इस भीषण धमाके के चलते 3 मंजिली वो इमारत ढह गई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on MBC Play and MBC.mu. MBC TV programs की झलकियाँ।
2: अच्छा हुआ मिली, वरना मेरा गेम खराब हो जाता।
3: Excuse me.
2: हाँ?
3: आपको मेरा नाम किसने बताया?
2: आपका नाम? मुझे क्या मालूम आपका नाम क्या है?
3: अभी अभी तो आपने कहा अच्छा हुआ मिली।
2: ओह, वो मैं अपने बॉल के लिए कर रहा था, अच्छा हुआ मिली। आप भी मिली है क्या?
3: जाइए यहाँ से। एक तो मेरी पेंटिंग खराब कर दी ऊपर से।
2: पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग?
4: कहता है बाबू
1: रविवार 27 सितंबर को MBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म बाबुल 2006 की मूवी सलमान खान और अमिताभ बच्चन पर फिल्माई गई बाबुल।
5: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
6: King Khan, yo, honey singer.

0: हमारी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:08 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ। और इस समय बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे लिसनर्स हैं जो गार्डन में काम कर रहे होंगे, घर की सफाई कर रहे होंगे, पानी को कह रहे होंगे कि पानी यहाँ पर डाल दो, झाड़ू यहाँ से लगा दो, और शॉपिंग कर रहे होंगे। कई जगह पर बिजी शेड्यूल होता है और क्या ना करें भाई, करना पड़ता है, घर चलाना है तो ये सब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। पर हमारे कई ऐसे लिसनर्स हैं जो इस समय बस आराम से बैठे हुए हैं, एक पैर के ऊपर पैर रख के, क्योंकि उन्होंने पूरा 5 दिन मेहनत की है, बहुत काम किया है। तो हम आपको भी कहेंगे भाई सल्यूट है आप सभी को, जो भी अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं जिस तरीके से भी, और कह रहे हैं चाहे वो घर पे हो चाहे वो बाहर काम कर रहे हो, करते रहो कोई बात नहीं, ये भी तो एक टाइम है ना। तो चलिए भाई हम उन लोगों के लिए भी जो कि इस समय विशेष दे रहे हैं और उसके लिए लेकर आए हैं प्रवेश जी के, जो कि लाल माटी से हैं, आज उनका बर्थडे है, और बहुत सारे प्यार और हैप्पीनेस के साथ में आरती, विशाल, अविनीश एंड ऑल कजन्स और सारे फ्रेंड सर्कल उन्हें विश कर रहे हैं। बट आपने उनका नाम जो बताया है प्रवेश जी, उनके लिए और भी 2-3 लोगों ने मैसेज किया और कह रहे हैं कि भाई आप आज अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करना और हमें भी बताना पार्टी के लिए कहाँ आना है। तो मैं आपको प्रवेश जी बता दूं, आपका बर्थडे है, हमारी तरफ से भी पूरी तरह से आपको बेस्ट विशेज हैं, पर हमें भी बता दो कहाँ पर आना है, कब कहाँ केक काटोगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं भेज सकते, नहीं बुला सकते, तो एटलीस्ट फोटो ज़रूर भेजिएगा क्योंकि हम भी शेयर कर सकें आपकी फोटोज़, और इन्जॉय कीजिएगा अपने बर्थडे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ती होती है। पर दिल से हम बेस्ट विशेज ही देते हैं। और आज है राकेश जुधा जी का भी बर्थडे, उनका निकनेम है शायद किरण, और पूरा सभी लोग उनको बेस्ट विशेज कर रहे हैं और स्पेशली उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, इतना ही कहना चाहते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं आपको और आपके बिना रह नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे RM2 रेडियो मस्ती को हमने चुना है आपको विश करने के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का जो भी एक दूसरे को बेस्ट विशेज भेजते हैं, और जो जिनका भी बर्थडे है, जिन्होंने हमें मैसेज भेजा है नहीं भेजा, पर हम दिल से आपको कहते हैं कि

0: रेडियो मस्ती।
1: देखिए मस्ती का टाइम है तो क्यों ना एक प्यारा सा गाना चला दें, चलाएं, एंजॉय कीजिए इसको।
2: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
3: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

0: सी टीवी, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: एक सवाल हमेशा मेरे मन में टिक टिक टिक टिक करता है कि लोग मछली की तरह तैर कैसे लेते हैं। काश मैं भी तैर पाती।
2: तो अब तुम्हें तैरना भी नहीं आता? तुम्हें तैरना नहीं आता? अच्छा ठीक है, मैं जाके बिल देके आता हूँ, तब तक तुम तैरना सीख लो। मुझे हर बार धोखा नहीं दे सकते।
1: मुझे बहुत डर लग रहा है।
2: 1 2 3 क्योंकि
0: सितंबर रविवार को NBC4 पर शाम के 6:30 हिंदी फीचर फिल्म क्योंकि 2005 की मूवी सलमान खान और करीना कपूर पर फिल्माई गई क्योंकि

0: Family Brunch RM2 Radio Masti
1: 1:21 हो चुके हैं और थर्ड आवर चल रहा है हमारा आपका साथ क्या. और मैं तो यही बोलती हूँ बॉली ब्रंच जो टाइम है ना बहुत ही ज़बरदस्त बना है क्योंकि बॉलीवुड की बातें और थोड़ा सा लंच की बातें. हम तो ये भी बोलेंगे कि आपको कि अगर अभी इस टाइम खाना खा रहे हैं या खा चुके हैं और थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं तो आराम से खाना खाइए. रेस्ट कर रहे हैं तो अच्छे से रेस्ट कीजिएगा. 5-10 मिनट अगर नैप ले सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसी के साथ में हम तो जुड़ेंगे भी आपके मैसेजेस के साथ में. इतने सारे टीचर्स एंड

0: क्लासेस कहाँ रहते हो, पूरे साल आप सबका पता नहीं चलता, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो तो, पर जब हमारा एग्जाम टाइम आता है उस टाइम आप कहाँ से आ जाते हो। पर चलिए भाई, आप आए, देर आए दुरुस्त आए, और सब भी टीचर्स इतना विश कर रहे हैं ना अपने स्टूडेंट्स को, और सभी कह रहे हैं कि सब अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके एग्ज़ाम दीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। और हम सब भी टीचर्स और प्रोफेसर्स को थैंक यू करते हैं दिल से कि भाई आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना ख्याल रखते हैं स्टूडेंट्स का, और इतना सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से RM2 रेडियो मस्ती को आपने चुना तो हम तो थैंक यू ही बोल सकते हैं आपको। बस आप कल हमारे सभी बच्चों का ख्याल रखिएगा। रॉयल पोर्ट लुइस के टीचर्स एंड सभी स्टूडेंट्स को विश कर रहे हैं और कह रहे हैं, और पेरेंट्स को भी, और बच्चों को तो कह ही रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, पर पेरेंट्स को कह रहे हैं टेंशन मत लो, हम हैं, हम सब संभाल लेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। कल निवेश का एग्ज़ाम है और उनकी फैमिली उनको विश कर रही है, उनको कह रही है टेंशन मत लो, हम हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए, और आप सबको इतना ही कहने के लिए कि बहुत एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है पर टेंशन मत लेना। साथ में ही बेस्ट विशेज आई हैं मम सिमी मेविश एंड फ्रेंड्स सेतुल जी एंड भोला फैमिली की तरफ से, और शायद किरण जी के लिए ही है उनके बर्थडे विशेज के लिए। तो हम तो आपको विश कर चुके हैं, पर फिर से हम कहते हैं आपके पेरेंट्स की तरफ से विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर अगेन। और हमारे एक दोस्त का मैसेज आया है, और वो लिसनर तो नहीं है पर उनकी मम्मी कह रही हैं कि हमारा बेटा कल एग्ज़ाम है और पैनिक हो रहा है, तो हम क्या करें। हम तो आपको यही बोलेंगे टेंशन मत लो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, रिलैक्स करो, फ्रूट जूस पियो, 5 मिनट उसको सुलाओ, और उसके बाद फिर से उसको बोलो फोकस करे। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, 5 मिनट की भी मेडिटेशन अगर उसने कर ली ब्रीद इन ब्रीद आउट तो बिल्कुल अलाइन हो जाएगा, और ये तो सबसे अच्छा है। पर जब खाएंगे और थोड़ा सा आप सपोर्ट देंगे, प्यार देंगे, तो बस अच्छा ही होगा। तो ये गाना आप सभी के लिए, एक प्यारे से गाने की फरमाइश आई है तेरी ओर, तो चलिए चलाते हैं ये गाना आप सबके लिए।
1: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:40 होने वाले हैं दोस्तों। कुछ लोग अभी उठे होंगे और हाँ, मुझे पता है कि संडे है और कई लोग बहुत देर तक सोते हैं और फिर लेट तक उठते हैं और फिर सुबह कहते हैं अरे दिन निकल गया, कैसे निकल गया, अभी सूरज कहाँ चले गए, चंदा मामा क्यों नहीं आए। अरे भाई आएंगे, टाइम लगता है, पर अभी आपको हम बोलेंगे कि मुँह धो, थोड़ा सा कुल्ला बुल्ला करो और थोड़ी सी मस्ती शुरू करो, क्योंकि ये टाइम जो है ना बार बार वापस नहीं आता। और अभी तो वीकेंड बस लगभग ख़त्म होने वाला है, पर अभी पूरा दिन बाकी है। अभी आप यहीं रहे हमारे साथ RM2 रेडियो मस्ती में, इस मोमेंट को ना थोड़ा सा यादगार बनाने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं कि मुस्कुराते हुए देखना है। अगर आपने मुस्कुराते हुए अपने आप को खुद को देख लिया ना, तो आपको एहसास होएगा आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, और पूरा दिन पड़ा हुआ तो साथ में हम भी यहाँ पे हैं और हमारे गाने भी यहीं पर हैं। थोड़ा सा इंजॉय कीजिए, थोड़ी सी मस्ती कीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर प्रेशर डालिए कि भाई हाँ अभी मुझे कुछ करना है, अभी मेरे पास कुछ लास्ट आवर्स पड़े हैं। तो जब आपने उन लास्ट आवर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, थोड़ी सी मस्ती के साथ में थोड़े से अपने कुछ काम कर लिए, कुछ पेंडिंग बिल्स को देख लिया, तो बस आप फिर आपका कल बहुत अच्छा जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे भाई कल आपका अच्छा जाना है, तो उससे पहले आपको अभी इस समय अपने आप को अच्छा बनाना है। तो एंजॉय कीजिए ये गाना आप सबके लिए जो भी अभी उठे हैं।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:52 हो चुके हैं दोस्तों, और आज के जो ये वॉली ब्रंच है ये प्रोग्राम यहीं पर रुकता है। आपने जो प्यार दिया चाहे मैसेजेस के साथ में और बहुत सारे लोगों ने कॉल्स भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जाओ, मुस्कुराओ, मस्त रहो और साथ में यादगार बनाओ इस दिन को। पर कहते हैं ना कि जब एक आरजे आ जाता है तो उसके बाद दूसरा आरजे आ जाता है, पर मैं वॉली ब्रंच से जाने के लिए

बोल रही हूँ, बट वैसे नहीं कहीं जाने को बोल रही है। मैं तो यही कहूँगी आप हमारे साथ ही बने रहिए। मैं आऊँगी नेक्स्ट सैटरडे और संडे 11 से 2 RM2 रेडियो मस्ती पर। मेरे बाद आपको साथ मिलेगा हंसनी का, और ये 2 गाने जो हैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। बहुत ही मस्ती के साथ इंजॉय कीजिएगा अपने वीकेंड को, और फिर कल मॉर्निंग से फिर शुरू हो जाइएगा हंसते हुए मुस्कुराते हुए। अपने दिन की शुरुआत बहुत ही प्यार से करिएगा। और

0: जो घर पे रहेंगे उनके लिए हम यही कहेंगे, घर की काम काज साफ सफाई सब कीजिए, अपने घर को खूबसूरत बनाइए जैसे आपको लगता है, खुद को टाइम जरूर दीजिएगा, इंजॉय कीजिए इस दो लास्ट गानों को।
1: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Masti.
0: Radio Masti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
4: Wishing you all a very good afternoon. Check your time. It's already 2 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति के साथ. आपको नमस्कार.
5: नमस्कार अंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल शाम लंदन के लिए रवाना हुए. यूके में विषागत मुद्दे पर उच्च स्तरीय बातचीत में शामिल होंगे. खासकर इस संबंध में मॉरिशस और यूके के बीच तय हुए समझौते को लागू करने के सिलसिले में हुई हालिया प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इस दौरे के अंतर्गत विवर्तानी प्रधानमंत्री दफ्तर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शागस दस्तावेज के साथ शुरू से जुड़े जोनाथन पावेल के साथ भेंट करेंगे. पावेल को शागस द्वीप समूह को लेकर मॉरिशस के साथ बातचीत के वास्ते बरतानी सरकार के खास दूत के तौर पर नियुक्त किया गया था. डॉक्टर नवीन राम गुलाम की अनुपस्थिति में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अगिया नवामारी अंतरिम रूप से प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालेंगी. शोमैगोनिया का बाजार अब एक नई जगह पर स्थित है. दक्षिणी प्रांत के विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए एक बिल्कुल नई इमारत तैयार हुई है. सब्जी फूल से लेकर कपड़े और खाने पीने के सामान वहां सब उपलब्ध किए जाएंगे. इस परियोजना का मकसद है विक्रेताओं को काम करने का उचित माहौल प्रदान करना. एमएमएम की स्थापना की 57वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गजुई में दल के समर्थक और अधिकारी एकत्र हुए. एमएमएम के अध्यक्ष गैसा उतीम ने अपने संदेश में पार्टी के इतिहास की झलक पेश की और कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य ही सांप्रदायिकता खत्म करना रहा है. उन्होंने कहा कि एमएमएम एक ऐसी पार्टी है जहां लोकतंत्र पूरी तरह से जिंदा और मजबूत है.

0: गजा उतीम ने कहा कि चुनावी प्रोग्राम को मात्र सरकार में रहकर ही लागू किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूसी और यूक्रेनियन ताकतों के बीच हुए सिलसिलेवार ड्रोन और मिसाइल हमलों में पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम 16 लोगों की मौत हुई है। पिछले कुछ समय से कीव और मॉस्को दोनों की तरफ से महत्वपूर्ण ढांचों को निशाना बनाकर लंबी दूरी के हमले किए जा रहे हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने आम नागरिकों के मारे जाने की बढ़ती संख्या को लेकर चेतावनी दी है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: On NBC Play and NBC.mu.
0: शोक समाचार सुनिए। सैपल रोड फिनिक्स में विनर सुपरमार्केट के सामने 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड श्री अशोक दुमन जो अशोक नाम से ज्यादा जाने जाते थे और फिशरीज विभाग के पूर्व अफसर थे, इनकी मृत्यु हो गई है। आज दिन के तीन बजे इनकी पत्नी श्रीमती विदुषी दुमन के मकान सैपल रोड फेनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू रिया 3 PM। देवेग गली ग्लेनपॉक वाकवा में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड श्री बाला सुब्रमण्य पाथी जो किसना नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह दस बजे इनकी पत्नी श्रीमती जेंसी पाथी के मकान देवेग गली ग्लेन पॉक वाकवा से उठा कर अंतिम संस्कार के लिए सल्फेरिनो वाकवा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
2: RM2 Radio Masti.
3: Radio Masti AM to PM sunte raho.
2: Plug and play.
4: RM2
2: Plug and play.

0: Lolo Hypermarché, low, low prices. Morcellement Saint-André et le Valentinat Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, साड़ीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
3: जब बात यार्ड सेल की होती है तो हम थ्वासिसा की ही बात करते हैं। जब बात जबरदस्त ऑफर्स की होती है तो हम थ्वासिसा की बात करते हैं। और जब बात बहुत कम कीमतों की होती है तो थ्वासिसा की ही बात होती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 1, 2 और 3 अक्टूबर को ग्रैंड थ्वासिसा यार्ड सेल होने जा रहा है लुशी पार्क जिनफई रिश्ते में। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, फोन, लैपटॉप और छोटे छोटे अप्लायंसेस पर 80% के डिस्काउंट, यानी शॉपिंग का एक जबरदस्त मौका। और वहां पहुंचना भी बहुत आसान है, गॉजिरो से फ्री शटल सर्विस अवेलेबल होगी। तो डेट अच्छी तरह याद रखना, 1, 2 और 3 अक्टूबर।
4: RM2 रेडियो मस्ती।
5: And play.
4: RM2.
6: 2:13, check your time, it's the afternoon of our show और Radio Musti is here आप लोगों का स्वागत करने के लिए। और यहाँ पर आ गई है आपकी दोस्त, आपकी होस्ट RJ Hansini, और बिल्कुल हम है तैयार आपको बस चले जाने के लिए in the beautiful world of music। It's a Sunday afternoon और इसी यहाँ पर लेजी लम्हों में हम चले आए हैं to welcome you, कुछ entertainment हो जाए तो that will be great। तो सभी का स्वागत है, मुझे पता है it's afternoon टाइम और कई लोग इस समय कुछ आराम फरमा रहे हैं, सो इसी के साथ हम म्यूजिक को लेकर आएंगे टू मेक यू फील अ बिट मोर इजी एंड मोर हैप्पी। और ऐसे में कई लोग तो यहाँ पर कनेक्टेड है क्योंकि वो तो बस काम कर रही हैं संडे वाला दिन और आज भी काम जारी है। तो उन सभी हार्ड वर्किंग लिसनर्स को एक बिग सल्यूट, आपका संडे ड्यूटी पर हम है और हम आपका हम सफर बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कंपनी जो हम देने वाले हैं ऑन रेडियो मस्ती। सो आज के शो में क्या होने वाला है, या आज के शो में बातें होंगी म्यूजिक की, वीकेंड वाले प्लान्स की कुछ चर्चा होने वाली है और थोड़ी सी मस्ती की, और ऑफ कोर्स आपके मैसेजेस और डेडिकेशंस की। तो वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और ड्राइव करते समय ये तो होना ही है, थोड़ा सा वॉल्यूम अप हम कर लेते हैं टू एंजॉय म्यूजिक, टू एंजॉय आवर ड्राइव। और इट विल बी नियरली टी टाइम, सो चाय या फिर कॉफ़ी के पास आप जाइए एंड do make the most of your weekend. It's a Sunday time, officially chilling wala mode hai, so why not make the most to have some rest, to chill with our families, kyunki weekend time is family time. Family time ko bas hum aage badhayenge, aur especially un logon ko hello and welcome jo dur hote hue bhi strongly connected rehte hain to Radio Musti. I mean jo hamare listeners, hamare parivar abroad se hai, saath samundar paar hote हुए भी, मिलो दूर होते हुए भी वो कितने पास रहते हैं रेडियो मस्ती। सो इस प्यार के लिए आपको शुक्रिया तो कहना चाहेंगे। सो आज भी विल बी टुगेदर, साथ साथ हम रहने वाले हैं, ऑल अबाउट म्यूजिक, ऑल अबाउट योर फ्रेंडशिप, योर लव, योर सपोर्ट एंड योर मैसेजेस। तो सभी का स्वागत इन प्लग एंड प्ले प्रोग्राम।
5: प्लग एंड प्ले
4: RM2
5: प्लग एंड प्ले।

जी हाँ, यहाँ पर समडे वाला गाना था और वो समडे तो बहुत ही जल्द आएगा. आई रियली होप, स्ट्रॉन्गली प्रे कि जल्द से जल्द वो दिन आए जब वो आएगी आपके पास. तो यहाँ पर गानों का ये पेशकश यहाँ पर जारी हम रखते हैं ऑन अवर वे टू मस्ती फॉर आवर प्लग एंड प्ले प्रोग्राम. यहाँ पर कितने सारे हमारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं, हम सभी का वार्म वेलकम कर लेते हैं. एंड बिग हेलो, गुड आफ्टरनून ऋषभ जी, कैसे हो? ऑल सेट फॉर अ मैजिकल सफर अप टिल द एंड? तो बिल्कुल, आपका हंदर से वेलकम करेंगे. और आज कुछ खास आया है, तुमसे दूर रहकर समझ आया कि किसी को याद करना कितना खूबसूरत और कितना दर्द भरा एहसास होता है. हर पल बस उनकी याद आती है. तो मेरी जाने जा, आज फिर दिल तुम्हें बहुत याद कर रहा है. काश तुम इस वक्त मेरे पास होती तो ये शाम, तो ये आफ्टरनून कुछ और ही खूबसूरत होती. तो यहाँ पर रिलेटेड टू योर मैसेज, हमने सोचा ये गाना बिल्कुल फिट हो जाएगा. सो कम ऑन, जितने भी हमारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं, जितने भी लवर्स इस समय जुड़े हुए हैं और अपनों के लिए, अपने प्यार के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे. सो वी आर हियर दिल की बातें सुनने के लिए ऑन 5499 1294. यहाँ पे हम सुनी है आपके साथ जी, वेलकम ऑन रेडियो मस्ती.

0: Tag and play.
1: RM2.
2: वेल दोस्तों यहाँ पर हक की बात हुई है तो व्हाई नॉट ये पूरा हक आपका है टू बी द मोस्ट स्पेशल हम सफर ऑन रेड मस्ती क्योंकि ये तो है आपका आशियाना जहाँ पर हम मिलते हैं कुछ खास बातें शेयर कर लेते हैं और ऐसे में जो रेडियो कनेक्शन है वो कुछ और स्ट्रॉन्गर बन जाता है जब भी आपका साथ यहाँ पर होता है इट्स अ प्लेजर टू वेलकम यू इन द म्यूजिकल वर्ल्ड ऑफ प्लग एंड प्ले और इस वक्त हंसनी है आपके साथ चलिए कुछ खास वक्त बताते हुए आपके मैसेजेस यहाँ पर बरस रही हैं थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग द लव टू द शो जो है आज का प्लग एंड प्ले यहाँ पर रिधिमा का साथ फ्रॉम सेंट क्वा हाय हंसनी एंड हेलो टू ऑल द टीम हेलो जी वेलकम टू यू और अभी इट्स टी टाइम और मैं तो बना रही हूँ एक केक बेक किया जा रहा है राइट सो विशिंग यू हैप्पी टी टाइम परिवार के साथ एंड वैसे आज आपके कजिन यशवीर का जन्मदिन है विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे सो ऑन दिस स्पेशल ओकेजन आपने सोचा व्हाई नॉट एक केक बेक किया जाए बिल्कुल सही सोचा है विशिंग यू अ हैप्पी टाइम एंड चलिए डू एंजॉय द आफ्टरनून शो विद रेट मस्ती यहाँ पर करिश्मा हेलो टू यू यहाँ पर गाना आपकी प्यार केविन के लिए जो कुछ नाराज हो गया है पता नहीं क्यों सुबह से फोन नहीं उठा रही है तो एक गाना उनके लिए हो जाए ऑफ कोर्स व्हाई नॉट अगर कोई रूठा हुआ है सो उनको मनाना ये तो रेडियो मस्ती का काम होता है ना तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीलिंग्स और गाना एकदम नाइस रोमांटिक सा गाना चल जाएगा आप दोनों के लिए एंड वी हैव इट फॉर अश्विन जी थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद रेडियो एज ऑलवेज और अभी काम जारी है सो विश यू कुराज और आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं आपके कोलीग्स हैं जो इस समय रेडियो हम सफर बने हुए हैं तो चलिए उन सभी का वार्म वेलकम कर लेते हैं वेल आई होप यू एंजॉयिंग द सिलेक्शंस फॉर दिस ब्यूटिफुल म्यूजिकल जर्नी जो चलेगा अप टिल 4 पीएम आप भी कुछ कहना चाहेंगे सो वी आर हियर टू लिसन टू यू आपकी बातें आपकी फीलिंग्स जो दिल कहना चाहता है आज वेलकमिंग यू 105.99 12.94

सो यहाँ पर शायद दो कदम पे जाके रुकेंगे ठहरेंगे क्योंकि अभी तो सगन अवर बाकी है ना। यस, ये तो एक सुपर वाला नाइटीज हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारे सभी म्यूजिक चाहने वालों के लिए जो यहाँ पर कनेक्टेड है फॉर प्लग एंड प्ले। चलिए इस गाने के साथ हम बढ़ेंगे ठीक 3 बजे के समाचारों की ओर। उसके बाद जरूर हम मिलेंगे, कुछ बातें शेयर करेंगे। हम सुनी है ना आपके साथ अब चल 4 PM।

0: अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति के साथ। आपको नमस्कार अदिति।
1: नमस्कार हंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार। एमएमएम की स्थापना की 57वीं वर्षगांठ मनाने के लिए रिजवी में दल के समर्थक और अधिकारी एकत्र हुए। एमएमएम के अध्यक्ष गिजाउद्दीन ने अपने संदेश में पार्टी के इतिहास की एक झलक पेश की और कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य ही सांप्रदायिकता खत्म करना रहा है। उन्होंने कहा कि एमएमएम एक ऐसी पार्टी है जहां लोकतंत्र पूरी तरह से जिंदा और मजबूत है। गिजाउद्दीन ने कहा कि चुनावी प्रोग्राम को मात्र सरकार में रहकर ही लागू किया जा सकता है। श्रीमैगोनिया का बाजार अब एक नई जगह पर स्थित है। दक्षिणी प्रांत के विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए एक बिल्कुल नई इमारत तैयार हुई है। सब्जी, फूल से लेकर कपड़े और खाने पीने के सामान वहां सब उपलब्ध हैं। इस परियोजना का मकसद है विक्रेताओं को काम करने का उचित माहौल प्रदान करना। कनाडा में लग रहे साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंतर्गत हुई एलिट वुमेन रोड रेस में हमारी हमवतन किम्बर्ली लेकोपियनो ने 45वां स्थान लिया है। वो विजेता बनी नेदरलैंड्स की राइडर डेमी वॉलरिंग से 5 मिनट पीछे रही। ये रेस किम्बर्ली के लिए काफ़ी मुश्किल रही। फिनिश लाइन से 94 किलोमीटर पहले पेश आए इस हादसे में कई साइक्लिस्ट गिरे थे जिनमें किम्बर्ली भी शामिल थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीस की राजधानी एथेंस में एक पर्यटन लॉज में हुए गैस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई है। इनमें अमेरिकी मूल के 4 लोग और बर्तानी मूल का एक व्यक्ति शामिल है। इस भीषण धमाके के चलते 3 मंजिली वो इमारत ढह गई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। सुवाची रोड बोनाकई में में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड श्री रवीन जाना जो एनटीसी के चालक थे और मुनू नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे इनकी पत्नी श्रीमती दीपा की सुंदुयाल जाना के मकान सुवाची रोड बोनाकई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 8 अगस्त नून। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
2: RM2 रेडियो मस्ती

0: Plug and play.
1: RM2.
2: और यहाँ पर ये तो थे द थ्री मैजिकल वर्ड्स और आई लव यू कहने से अगर आपका प्यार और भी बढ़ जाए और भी मजबूत हो जाए सो व्हाई नॉट. अगर कई टाइम हो चला है और अब तक आपने नहीं कहा है आई लव यू फॉर योर समवन जो आपके अजीज है आपका सबसे स्पेशल है सो व्हाई नॉट ये चांस आपका राइट. सो वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ द म्यूजिकल शो. दिस इज प्लग एंड प्ले जहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स. हेलो टू ऑल द फ्रेंड्स. हेलो दोस्तों, वीकेंड आ गया है ना और मूड होना चाहिए एकदम फुल एंड हैप्पी. बिल्कुल मंडे से फ्राइडे जो स्ट्रेस रहता है ना उनको बस साइड में रखेंगे क्योंकि अब टाइम हो चला है तो चिल आउट कुछ आराम फरमाने के लिए टू रिलैक्स एंड अपने फेवरेट लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. सो जरा आप बता लीजिए कि ये जो वीकेंड आया है इसमें क्या प्लान है. मूवी के लिए आप जा रहे हो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, फ्रेंड्स के साथ एक आउटिंग, फैमिली के साथ एक पिकनिक या फिर घर पर ऐसे ही फुल ऑन आराम मोड. अगर ये आपने चूज कर लिया है सो परफेक्टली योर्स. दिस इज प्लग एंड प्ले प्रोग्राम जो लेकर आ रहे हैं द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स. तो हमारे लिसनर्स के लिए एक स्पेशल मैसेज, वीकेंड सिर्फ लेट उठने का नाम नहीं होता है, वीकेंड है अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम निकाले. मी माई सेल्फ जो टाइम है ना वो बस होना जरूरी है फैमिली के साथ हंसी मजाक करने का और छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने का. दिस इज वीकेंड वाला टाइम और रेडियो मस्ती इज हियर टू ऐड ऑन सम मोर लव. ये तो है जहां पर भी साथ जारी हो गया है. इट्स अ वार्म वेलकम टू एवरीवन. यहां पर आपके मैसेजेस थोड़ी ही देर में हम लेकर आएंगे. आपने कुछ टाइम निकाला है ना टू बी विद अस सो व्हाई नॉट. ये तो हमारा काम होता है यहाँ पर आपके मैसेजेस को बढ़ाने के लिए. अगर इसमें है कोई ऐसी बात जिससे किसी की नाराजगी छुपी हुई है और उनको मनाना है या फिर किसी का प्यार छुपा हुआ है और मैसेजेस सुनाने से प्यार और भी स्पेशल हो जाएगा सो व्हाई नॉट. ये तो हमारी कोशिश है. जहाँ पर दूरी होती है वहाँ पर दूरियों को हम मिटा लेते हैं. ऐसी है ये कशिश ऑफ रेडियो मस्ती, ऐसा है वो मैजिक. तो भैया है आपके साथ एंटरटेनमेंट यहाँ पर जारी है. इट्स अ वार्म वेलकम इन आज का प्लग एंड प्ले.
0: प्लग एंड प्ले
1: RM2
0: प्लग एंड प्ले.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: यहाँ पर है दीवानी सॉन्ग दैट वाज जोश दैट वाज जुनून वो जस्तजू जो यहाँ पर महसूस किया जाता है हमारे इन गानों के साथ. वेलकम इन द म्यूजिकल शो, दिस इज प्लग एंड प्ले. और अब बारी है टू हैव सम डेडिकेशंस. चलेंगे मेबग. रेशमा जी का वार्म वेलकम है. रियली होप कि सब ठीक है. एंजॉयिंग अ वेरी नाइस वीकेंड. कजिन शर्मिला, आज उनका जन्मदिन है. विशिंग शर्मिला हैप्पी बर्थडे. गॉड ब्लेस विद गुड हेल्थ और हमेशा वो खुश रहे. विशेज उनके लिए है फ्रॉम रोशन, जसवीर एंड शयाशी और साथ में फोफा जी आए हैं टू कन्वे द लव. इसके बाद चलते हैं पोर्टविस, थोड़ा सा घूमना होता है यहाँ पर हमारे इस शो के साथ. शाहीन का वेलकम फ्रॉम पोर्टविस. यहाँ पर गाना हो जाए फॉर लव शमशाद के लिए जो अभी भी काम कर रही हैं. सुकुहाश है तू शमशाद और जिनसे आप बहुत ही प्यार करती हैं. सो प्यार के नाम एक गाना ऑफकोर्स चल जाएगा. मैं अपने पेरेंट्स से यही कहना ज़रूर चाहूँगी कि भले यहाँ पर आप अच्छा लगता है काफ़ी कुछ पर्सनल हो गया.

0: शेयर करेंगे तो यहाँ पर दिल पर कुछ असर हो जाएगा जी. ओके देखिए आई गॉट योर मैसेज. थैंकिंग यू. अगर दिल दुखा है सो आई स्ट्रॉन्गली प्रे, दिल से हम यही प्रार्थनाएं करेंगे कि जल्द से जल्द दिल सवर जाए. और बेशक यहाँ पर हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे गाने जिनसे राहत मिलती है ना. अगर दिल परेशान है, दिल उदास है तो यहाँ पर रेडियो मस्ती काम कर लेता है उन उदासियों को दूर करने के लिए. यहाँ पर कविश, हेलो जी, वेलकम एज ऑलवेज कनेक्टिंग विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स. ये तो है प्लग एंड प्ले, ये तो है रेडियो मस्ती. बिल्कुल सही जगह पे आए हो और ड्राइविंग के साथ थोड़ा सा एंजॉय भी आप कर रही हो. हफ्ते भर के लिए आप बिजी थे एंड यू हैड वेरी लाइक लेट्स से खास प्रोजेक्ट था आपका, लेकिन फाइनली बाय द ग्रेस ऑफ महादेव सब कंप्लीट हो गया है और अभी थोड़ा सा चिलिंग टाइम. ये तो बहुत ही अच्छी सी बात है. कविश जी, वेलकम इन द शो और गाना आपके लिए चल जाएगा एंड फॉर ऑल योर फैमिलीज एज वेल. यहाँ पे विकास एंड नंदिनी सेलिब्रेटिंग देयर वेडिंग एनिवर्सरी एंड इस समय वो दोनों सी साइड पर है एंजॉइंग म्यूजिक और एंजॉइंग द ब्यूटिफुल नजारा. And we can say Mauritius is indeed a paradise. हाँ जी बिल्कुल, आपने सही सोचा है. और रवि रवि जी का भी वार्म वेलकम. वो शुरुआत से कनेक्टेड है enjoying the songs, enjoying the feelings of plug and play. तो यहाँ पर एक गाना आपके लिए बन जाएगा. तो जितने भी हमारे परिवार, हमारे दोस्तों यहाँ पर साथ निभा रहे हैं और आप चाहते हो कि आपका मैसेज यहाँ पर पहुँच जाए तो ये तो है प्लग एंड प्ले प्रोग्राम जो बस हम सजाते जाएंगे अप टिल 4 PM.
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: Plug and Play.
1: RM2.
2: That was a wonderful feeling from Bodyguard. तेरी मेरी कहानी और कई लोगों के साथ यहाँ पर बिल्कुल ये कनेक्शन बन गया है जहाँ पर आप अपने लव स्टोरीज के बारे में सोच रहे थे. कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होने के लिए नहीं होती है ना, बस दिल में एक खूबसूरत याद बनकर रह जाती है. कहानी अधूरी रह जाती है लेकिन एहसास कभी अधूरा नहीं होता. कुछ रिश्तों का कोई नाम तो नहीं होता ना, कोई मंजिल नहीं होती, फिर भी उनकी याद उम्र भर साथ चलती है. शायद यही अधूरी मोहब्बत की खूबसूरती है. कभी कभी दो लोग एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं लेकिन किस्मत उन्हें साथ नहीं लिखती. कहानी खत्म हो जाती है पर दिल में उनका जिक्र हमेशा बाकी रहता है. वो मिला भी दिल के करीब आया भी बस मेरा होकर रह नहीं पाया. कुछ लव स्टोरीज ऐसी ही होती है जी, शुरू तो खूबसूरत होती है मगर अंत नहीं मिलता. लेकिन यहाँ पर जो सच्चे प्यार करने वाले हैं अगर साथ है वो तो यहाँ पर हम प्रार्थनाएं करेंगे. स्ट्रॉन्गली वी प्रे कि जुदाई ना आए. ये दर्द भरा जो आलम है वो कभी भी ना आए आपकी ज़िंदगी में. यहाँ पर हम खुशियों के बारे में बात करेंगे, सुकून के बारे में बात करेंगे. वेल शेयर द गुड वाइब्स, लव एंड पीस, लाइट फॉर एवरीवन जो यहाँ पर साथ निभाते हुए बस एंजॉय कर रहे हैं आज हमारे इस म्यूजिकल जर्नी को. यहाँ पर है आपके साथ हंसनी और मिलकर हम इस सफ़र को यूँ ही बेहतरीन बनाएंगे, यूँ ही खास बनाते जाएंगे.

0: Tag and play.
1: RM2.
2: वो है आपका प्यार, वो है आपकी जान, आपकी जिंदगी, आपकी सांस, और वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अधूरा है। आपकी जिंदगी कुछ फीकी पड़ रही है, तो उनको ढूंढिए और जस्ट मेक हिम या फिर मेक फिर स्पेशल अगेन, ताकि जो आपकी जिंदगी है वो फिर से सर जाए। यहाँ पर टाइम फॉर सम मैसेजेस नाउ। वी हैव सीता जी, हेलो एंड वेलकम इन द शो। यहाँ पर वाज हैविंग चाय और ऐसे रोमांटिक सॉन्ग्स जो एंजॉय कर रही थी, और यहाँ पर गाना फॉर माय लव कमल के लिए, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल हिम आई लव हिम वेरी मच। वो इस समय काम कर रही हैं, तो कुराज उनको एंड थैंक यू फॉर द मैसेज। वी हैव विमल, हाई वेलकम, आप तो हो फ्रॉम काठबोन। मेरे लिए एक गाना हो जाए फॉर माई लव रेशमी।

0: I want to say she is my lovely wife and I just love her. Ye hui na baat, simple but very deep and very sweet. तो एक गाना तो आप दोनों के लिए चल जाएगा. हेलो टू मिस्टर विकी, कैसे हो? यहाँ पर दुबोरी फैमिलीज के लिए गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे. थैंक यू फॉर सेलेक्टिंग रेडियो मस्ती. और आप जा रहे हो सी साइड, तो हैव अ सेफ ड्राइव एंड एंजॉय योर फैमिली वाला टाइम. कविता जी का भी वेलकम है, जयसरी फैमिलीज का वेलकम ऑन रेडियो मस्ती. स्पेशल हेलो टू एवरीवन. वैसे साथ होकर हम साथ साथ है जैसा फील है, वेरी नाइस जी. अगर हो सके तो गाना जो है चलाएंगे आपके लिए अगर टाइम मिले तो, अदरवाइज हम रिक्वेस्ट करेंगे और जी संजय को ताकि वो चला सके उस फैमिली वाला सॉन्ग इन हिज शो जो रहेगा बॉलीवुड अटक टकाटक. सो कीप लिसनिंग. हेलो टू मिस्टर जेसन, हाय एंड वेलकम एज ऑलवेज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड फ्रॉम इटली. यहाँ पर आपका दिल से वेलकम हम करेंगे इन मॉरिशस. फैमिली टाइम को एंजॉय आप कर रहे हो, इवन अब्रॉड से भी आप प्यार पहुँचा रहे हो टू रेडियो मस्ती, ये बहुत बड़ी बात है. सो थैंक यू ईच एंड एवरी वन यहाँ पर इतना सारा प्यार हमको पहुँचाने के लिए ऑन रेडियो मस्ती. दिस इज योर म्यूजिकल शो.
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

वेल आई होप यू एंजॉयड आज का कलेक्शन जो हम लेकर आए फॉर प्लग एंड प्ले प्रोग्राम जो 2 बजे से शुरू हुई थी और अभी खत्म होने वाला है इस गाने के साथ. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मैसेजेस एज वेल. यहाँ पर द एंड ऑफ प्लग एंड प्ले लेकिन आने वाली है और जो संजय टू कंटिन्यू द म्यूजिकल जर्नी ऑफ बॉलीवुड टक टकाटक विद ग्रेट सॉन्ग्स एज ऑलवेज. सो स्टे वेल कनेक्टेड ऑन रेडियो मस्ती. ठीक 4 बजे सुनेंगे समाचार. तो यहाँ पर मुलाकात तो होती रहेगी ऑन रेडियो मस्ती. तो जाते जाते बस हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉट्स ऑफ गुड विशेस. हैव अ वंडरफुल वीकेंड एंड टेक वेरी गुड केयर.

0: South
1: 103.5,
0: East West
1: 96.4,
0: Center
1: 99.4.
2: RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: शाम के 4 बज रहे हैं। सुनते समाचार अभी के साथ नमस्कार।
5: नमस्कार संजय, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम कल शाम लंदन के लिए रवाना हुए। यूके में वे शागस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बातचीत में शामिल होंगे, खासकर इस संबंध में मॉरिशस और यूके के बीच तय हुए समझौते को लागू करने के सिलसिले में हुई हालिया प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस दौरे के अंतर्गत वे बर्तानी प्रधानमंत्री दफ्तर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शागस दस्तावेज के साथ शुरू से जुड़े जोनाथन पावेल के साथ भेंट करेंगे। पावेल को शागस द्वीप समूह को लेकर मॉरिशस के साथ बातचीत के वास्ते बर्तानी सरकार के खास दूत के तौर पर नियुक्त किया गया था। डॉक्टर नवीन राम गुलाम की अनुपस्थिति में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आरियान नावामारी अंतरिम रूप से प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालेंगी। एमएमएम की स्थापना की 57वीं वर्षगांठ मनाने के उद्देश्य से रेजवी में दल के समर्थक और अधिकारी रेजवी में एकत्र हुए। एमएमएम के अध्यक्ष गजाउद्दीन ने अपने संदेश में पार्टी के इतिहास की एक झलक पेश की और कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य ही सांप्रदायिकता समाप्त करना रहा है। उन्होंने कहा कि एमएमएम एक ऐसी पार्टी है जहां लोकतंत्र पूरी तरह से जिंदा और मजबूत है। गजाउद्दीन ने यह भी कहा कि चुनावी घोषणा पत्र को मात्र सरकार में रहकर ही लागू किया जा सकता है। श्रीमेघरिया का बाजार अब एक नई जगह पर स्थित है। दक्षिणी प्रांत के विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए एक बिल्कुल नई इमारत तैयार हुई है। सब्जी, फूल से लेकर कपड़े और खाने पीने के सामान वहां सब उपलब्ध है। इस परियोजना का उद्देश्य है विक्रेताओं को काम करने का उचित माहौल प्रदान करना। कनाडा में लग रहे साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंतर्गत हुई एलिट वुमेन रोड रेस में हमारी हमवतन किम्बर्ली लेकोपिनिया ने 45वां स्थान प्राप्त कर लिया है। वो विजेता बनी नेदरलैंड की राइडर डेमी वोलरेन से 5 मिनट पीछे रही। ये रेस किम्बर्ली के लिए काफी मुश्किल रही। फिनिश लाइन से 94 किलोमीटर पहले पेश आए एक हादसे में कई साइकिलिस्ट गिर गए थे जिनमें किम्बर्ली भी शामिल थी। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि ग्रीस की राजधानी एथेंस में एक पर्यटन लॉज में हुए गैस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई। इनमें अमेरिकी मूल के 4 लोग और बर्तानी मूल का 1 व्यक्ति शामिल है। इस भीषण धमाके के चलते 3 मंजिली इमारत भी ढह गई। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। 6 बजे आप विस्तार के साथ सायंकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक अभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार और आदाब।
6: Your news on MBC Play and MBC.mu.
7: Music.
2: RM2 Radio Musti.

कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे सभी लिसनर्स को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेलकम इन म्यूजिक टक टक ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती

घुटनों के लिए बस आप आराम फरमाएं, जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। चाहे तो आंखें भी बंद कर लीजिए एंड ब्रिंग ए स्माइल ऑन योर फेस। सारे टेंशन को आप ड्रॉप कर दीजिए एंड जस्ट एंजॉय।

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू रेडियो मस्ती. वैसे तो हम हमेशा बर्थडे विशेस ब्रॉडकास्ट करते हैं फॉर दोज सेलिब्रेटिंग द बर्थडे, लेकिन आज एक कुछ अलग सा हो रहा है. जिनका बर्थडे हो चुका है और जिन्होंने बहुत ही पसंद किया अपना बर्थडे पार्टी, शी जस्ट वांट्स टू से अ बिग बिग हार्टी थैंक यू उन सबों के लिए, उन सबों के प्रति जिन्होंने उनका बहुत ही शानदार तरीके से बर्थडे पार्टी आयोजित किया. Could you please dedicate a song for me? I wish to thank everyone for my birthday wishes. Especially thanks to Mama and Janil, Devika, Roshan, Preeti, Ajay, Jay, Dilan, Sarah, Naushad, Zia, Zara. My brother Janil is cooking for me. Indeed, we had a very lovely birthday party. और ये मैसेज है अनुषा लविश राजकुमार की ओर से फ्रॉम बंदेर. कुछ ऐसी घड़ियां होती हैं दैट यू विल नेवर फॉरगेट इन योर होल लाइफ, और खासकर व्हेन यू गॉट पीपल अराउंड यू हु रियली केयर फॉर यू. आप बहुत ही भाग्यशाली हैं अनुषा जी फॉर हैविंग सच केयरिंग लविंग पीपल अराउंड यू. यही है आपकी सबसे बड़ी विरासत. टेक केयर योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ ऑल दोज अराउंड यू. वंस अगेन बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम रेडियो मस्ती टीम.

0: राजीव जी जो सेपिया के रहने वाले हैं, वांट टू विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे उनकी प्यारी छोटी बहन अंजलि जी को जो पापड़ी मिसेस के रहने वाली हैं. लोड्स ऑफ हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, लक एंड बेस्ट विशेस भाई राजीव की ओर से एंड फ्रॉम द होल फैमिली. अंजलि जी हमारी ओर से भी, रेडियो टीम की ओर से भी आपको वेरी हैप्पी बर्थडे.
1: म्यूजिक ऑल

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: फॉर योर न्यूमरस मैसेजेस हमें ये बताने के लिए हाउ मच यू आर लविंग एक के बाद एक गाना गाने जो चल रहे हैं ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती ये हैं म्यूजिक टकटकाटक संजय के साथ आज एवरी संडे आफ्टरनून जी आपका आपकी हैप्पी संडे आफ्टरनून सन के साथ थैंक यू डियर लिसनर्स आपके न्यूमरस ब्यूटीफुल मैसेजेस के लिए कोई सिर्फ मैसेज भेज कर कहता है थैंक यू संजीव फॉर दिस ब्यूटीफुल uplifting songs. नेक्स्ट सॉन्ग जाता है इनके लिए जिन्होंने एक बहुत ही लंबी सी मैसेज भेजी है आपसे बस ये दरख्वास्त है कि दैट यू कीप योर मैसेज एज सिंपल एंड एज शॉर्ट एज पॉसिबल वैसे जिससे कि हमें भी दिक्कत ना हो टू फाइंड द नेम्स सुनीता जी पेची त्रिविया से हमारा साथ निभा रही हैं और आज उनकी पोते सोहन रंजया का 21st जन्मदिन है एंड हैप्पी बर्थडे विशेस फ्रॉम बहन सुरेखा हैप्पी बर्थडे गॉड ब्लेस 21st बर्थडे कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम द होल रंजया फैमिली पापा यनीश मामा तीशा नानी सुरेखा विकी निखिल उलाश फैमिली एंड नानी मोहिनी गिरीश एंड गणेश फैमिली की ओर से फ्रॉम फ्लक

संग इश्क हुआ, लेट लव हैपन, लेट लव ब्लूम। जब ऐसे गाने चलते हैं तो स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल दैट लव शुड फ्लो फ्रॉम द हार्ट। जैसे कि इस समय उर्मिला जी ने हमें लिखा है फ्रॉम इटली। यस, वो कहते हैं कि वो रोज रेडियो मस्ती सुनती हैं और इस समय वो रेडियो मस्ती के साथ जुड़ी हुई हैं। वो कहती हैं रेडियो मस्ती मेक्स लाइफ इजी, इट मेक्स वर्क इजी। ये तो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन इट रियली मेक्स लाइफ इजी। थैंक यू उर्मिला जी, एक तो इटली में हमारा साथ निभाने के लिए, एंड टू टेक आउट सम टाइम फ्रॉम योर बिजी वर्क स्केड्यूल टू राइट दिस ब्यूटीफुल लाइंस टू रेडियो मस्ती। और जितने भी लोग इस समय काम करते हुए हमारा साथ निभा रहे हैं, विशिंग यू ऑल बॉन कुराज।

Hoping you all having a very nice time in गीतों के साये में. And this lovely message आया है सूरज जी की ओर से from Elvisia Saint Pierre. उन्होंने लिखा कि एक प्यारा सा गाना हो जाए मेरी प्यारी पत्नी करिश्मा के लिए, जिन्हें मैं बहुत ही प्यार करता हूँ. Also going for songs Bhavesh and Yajnesh, and for all those connected right now.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.5.

5:10 वेलकम डियर लिसनर्स इन द सेकंड आवर ऑफ म्यूजिक टक टका टक संजय के साथ यो हैप्पी संडे आफ्टरनून सन के साथ ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन और आपके मैसेजेस ऑन 5499 1294 ये मैसेज आया है हॉट अभी आया है हंसुया की ओर से लिखते हैं हंसुया ही है पिछले हफ्ते गणेश चतुर्थी के दिन मेरी माँ दिवीना कावलीसा का जन्मदिन था माँ वो होती हैं जो बाकी सभी लोगों की जगह ले सकती हैं लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले सकता वेरी हैप्पी बर्थडे मामा फ्रॉम पापा शैलेन शवीस कविश हंसुया एंड द होल कावलीसा फैमिली ऑफ Catrabone.

0: बहुत ही गहरा मैसेज तो नाशन जी ने हमें भेजा है, कोटिंग फ्रॉम रूमी विद अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ बर्निंग कैंडल, और उस पर लिखा है मैसेज, इन ऑर्डर टू गिव लाइट वन मस्ट फर्स्ट लर्न टू बर्न. Beautiful. Thank you, Nashreen.
1: Music, Dr. Gata.
2: RM2, Radio Musti.
0: चलिए आपके मैसेजेस का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं. थैंक यू वंस अगेन नशरीन. ये मैसेज है नूतन जी की ओर से फ्रॉम त्रियोले. शुक्रिया साथ निभाने के लिए नूतन जी. नेक्स्ट सॉन्ग वाज़ गोइंग फॉर मेधा मनीष श्रिया आर्यन नील शीतल विकी रितिना नितिन संगीता जो मोहतैब्लॉन्स से हमारा साथ निभा रहे हैं. रेशमा जी मेबर्ग से रेडियो मस्ती के साथ जुड़ी हुई हैं, रिक्वेस्टिंग नेक्स्ट सॉन्ग फॉर शर्मिला जो आज अपना जन्मदिन मना रही हैं, विशिंग हर गुड हेल्थ फ्रॉम रोशन जसवीरा श्रेयसी एंड फूपा. थैंक यू आपके मैसेज के लिए. नेक्स्ट सॉन्ग ऑल्सो गोइंग फॉर भरद्वाज विदेशी जो त्याग से हमारा साथ निभा रही हैं. ललिता जीतन जी जो ऑलवेज रेडियो मस्ती के साथ जुड़ी रहती हैं, और विजया जी जो लिखती हैं फ्रॉम वाकवा, सो सो हैप्पी टू लिसन टू योर वॉइस संजी. विजया जी जितनी खुशी आपको मिलती है हमारी आवाज़ सुनकर उससे ज़रा खुशी तो हमें मिलती है आप लोगों के मैसेज पाकर.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: हमें यकीन है दैट यू आर अप्रिशिएटिंग दिस सूथिंग मेलोडियस जर्नी ऑन दिस संडे आफ्टरनून सन के साथ अंदर फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती। शुक्रिया आपके न्यूमरस ट्रिमेंडस मैसेजेस के लिए। दिस वन कमिंग फ्रॉम वीना जी। वीना जी लिखते हैं, हर संडे को हम आपके प्रोग्राम का इंतजार करते हैं क्योंकि इस प्रोग्राम को सुनते ही हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। थैंक यू वीना जी फॉर सच ए ब्यूटीफुल मैसेज, शॉर्ट एंड स्वीट। रोशन जी ने हमें याद किया है, उनकी ओर से गाना जाता है फॉर बेटी अवनी एंड वाइफ मनीषा, साथ ही साथ गाना जाता है फॉर द होल बलोरम फैमिली ऑफ शातू बेनारस, भाई कमलदीप के लिए जो हमारा साथ निभा रही हैं, निशा गोकुल जी जो शिमे गोनिया से हमें सुन रही हैं, उनकी ओर से उनकी पूरी फैमिली के नाम बेटी राया, बेटी तवीश और पति रमेश के लिए एंड फॉर द होल गोकुल फैमिली।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: गाना तो लाजवाब था ही गायकी भी बहुत ही अच्छी लेकिन अगर फुर्सत मिले तो कभी इस गाने के शब्दों में लिरिक्स में उतर कर देखें कितनी गहराई है थैंक यू फॉर एंजॉइंग दिस म्यूजिकल सफर ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो मसी संजय के साथ कृष्णी जी कॉन्फोको से हम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जय सिया राम कृष्णी जी चंदा जी जाऊंगी से अगले गाने की फरमाइश अपने बेटे यश आश्ले बहुदर्शिनी के लिए मांग रही हैं विद मेमोरीज ऑफ पति रवीन माला जी कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल यात्रा में गई हुई थी एक धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा में गई हुई थी लेकिन घर लौटी तो ये प्रोग्राम उन्हें ऑसम लग रहा है एंड शी इज लविंग दिस एज वेल ये भी कुछ कम नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग पीस प्रमोटिंग लव इन द हार्ट्स ऑफ पीपल चलें ये अगला मैसेज लेते हैं नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग फॉर रीमा जेनिता श्रेष्ठा आशिनी सिल्विया यूवी क्रिस्टी स्यूसरन फैमिली ऑफ लक ये है मैसेज जाना जी की ओर से और ये मैसेज हेलो संजी युन जी हमें लिखते हैं वन ऑफ द टेक इन द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माय इन लॉज हु आर कुकिंग मिनबुई फॉर मी वाओ

रविवार 27 सितंबर 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ट्रॉपिकल इलाके में तैयार हो रहा एक ध्रुवीय जहाज कैप्टन ऑटिक इन दिनों पोटली में अंतिम रूप ले रहा है। हिंद महासागर के शिपयार्ड में बन

0: रहा ये नई पीढ़ी का अन्वेषण पोत ऑटिक क्षेत्र में कम से कम प्रदूषण के साथ यात्रा के लिए तैयार किया गया है। एमएमएम ने आज रिजवी में अपनी स्थापना के 57 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। अंतरिम प्रधानमंत्री और पार्टी के उपनेता आर्यन नवमारी सहित पार्टी के नेताओं ने समर्थकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र जैसे मूल मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ओजेम्पिक, वेगोवी और मुंजारो जैसे इंजेक्शन्स का इस्तेमाल वजन घटाने के लिए तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि ये दवाएं मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के इलाज के लिए दी जाती हैं और इनका इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टरों की सलाह और कड़ी चिकित्सकीय निगरानी में किया जाना चाहिए। और विदेश में उत्तर पूर्वी अमेरिका में शक्तिशाली तूफान से तटीय बाढ़, बिजली कटौती और यात्रा में भारी बाधा आई है। खराब मौसम के कारण स्टेडियम के कार्यक्रम भी रद्द किए गए हैं। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ और समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि ट्रॉपिकल इलाके में तैयार किया जा रहा एक ध्रुवीय जहाज, यह लगभग असंभव लगने वाली परियोजना इस समय पोटवी में आकार ले रही है। हिंद महासागर के शिपयार्ड में कैप्टन ऑटिक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये नई पीढ़ी का एक अन्वेषण पोत है जिसे ऑटिक क्षेत्र में कम से कम प्रदूषण के साथ यात्रा करने के लिए तैयार किया गया है। आइए शहजाद अली जुमन के साथ जाने इस विशाल समुद्री पोत की कहानी जो मॉरिशस में निर्मित हो रहा है। विवरण गीता सुनारायण के साथ।
1: पिछले 25 साल से पोर्टविस में स्थित शौचे नवाल डे लुसियन दुनिया भर के ग्राहकों के लिए जहाज बना रहा है। इसमें खास तौर पर रक्षा, औद्योगिक मछली पकड़ने और ऑफशोर परिवहन के क्षेत्र शामिल हैं। यहां इससे पहले कभी ऐसा जहाज नहीं बनाया गया था। कैप्टन ऑटिक दुनिया के सबसे आधुनिक खोजी जहाजों में से एक है जिसे लगभग बिना प्रदूषण के समुद्र में चलने के लिए तैयार किया गया है। शौचे नवाल डे लुसियन लिमिटेड के उप महानिदेशक निकोला पेरिये कहते हैं,
2: C'est un bateau révolutionnaire où nous sommes très très fiers de le faire parce que ça représente pour nous 450 000 heures de travail.
1: ये एक आधुनिक जहाज है, इसे बनाकर हमें गर्व है। दुबई से इसके ढांचे आए हैं। नवंबर में ये यहां आया, अक्टूबर के अंत तक या नवंबर में डिलीवरी करेंगे।
2: Et donc elle est arrivée au mois de novembre mais on le livre normalement vers la fin octobre entre la fin octobre et début novembre dépendant des essais.
1: इसका राज है 5 विशाल कठोर सोलर सेल्स जो फिलहाल नीचे रखे गए हैं। इन्हें खड़ा किए जाने के बाद हवा और सूरज की ऊर्जा इसके इंजन्स को चलाएगी। डेविड टोमासो कहते हैं,
3: C'est la première fois que nous faisons un bateau comme ça, il y a un prototype.
1: दुनिया में पहली बार इस तरह का जहाज बनाया गया है। ये इकोलॉजिकल है, इसमें सोलर पैनल्स हैं, लकड़ी और कार्डबोर्ड से इसमें गर्मी पैदा होती है। निकोला पेरिये कहते हैं, कार्यों का संचालन एक मुख्य चुनौती थी। मॉरिशियन कामगारों और विशेषज्ञों के साथ इस परियोजना को विश्वास के साथ पूरा किया। इस फ्रांसीसी जहाज का ऑर्डर सेलर नाम की शिपिंग कंपनी ने दिया है। अब तक 40 से ज्यादा परियोजनाएं पूरी कर चुके सीएनओई को अपनी अच्छी प्रतिष्ठा और काम के अनुभव की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। निकोला पेरिये कहते हैं, ये एक आधुनिक जहाज है, दुनिया में इस तरह का ये पहला जहाज है। मॉरिशन विशेषज्ञता मजबूत है, बड़ा कार्यदल है जो सबसे बड़ा निवेश है।
2: एलिवेटर असंग मोबिल की ले प्लू पुसान औ मोंड की पे लेवे 1500 टन de charge utile, mais le plus gros investissement est humain. Vous allez voir en faisant le tour du bateau à quel point le savoir-faire mauricien est fort et grand.
1: कैप्टन ऑटिक की लंबाई 70 मीटर है और इसमें 36 यात्री तथा 24 क्रू सदस्य सवार हो सकते हैं। तकनीक का ये शानदार नमूना यात्रियों को उत्तरी ध्रुव क्षेत्र तक ले जाने के लिए बनाए गए इस जहाज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि समुद्र में इसके उत्सर्जन को न्यूनतम रखा जा सके, एक ऐसी उपलब्धि जिस पर इसे तैयार करने वाले कामगारों को गर्व है। मॉरिशस के कामगारों के हाथों तैयार हो रहा है। जोनाथन सामची को कहते हैं, शुरू में जटिल था पर बाद में सभी कामगारों ने

0: मेहनत की ताकि इसे पूरा किया जा सके। Jean-Éric Désiré कहते हैं, कम अवधि में सभी लोगों ने मिलकर इसे पूरा किया। हमारी भूमिका ये आश्वस्त करना है कि कोई दुर्घटना न हो। कैप्टन आर्कटिक की डिलीवरी इसी साल होनी है। जल्द ही मॉरिशस में जन्मा ये जहाज आर्कटिक की बर्फीली दुनिया की ओर अपना सफर शुरू करेगा।
1: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मूवमेंट मिलिटेंट मॉरिशिया यानी कि MMM ने आज रेज्यूमे अपने 57 वर्षों के अस्तित्व का जश्न मनाया। दल के नेताओं जिनमें अंतरिम प्रधानमंत्री और पार्टी के उपनेता आरियन नवामारे भी शामिल थे, उन्होंने उपस्थित समर्थकों को संबोधित किया। नेताओं ने कहा कि MMM आज भी अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जिनमें राष्ट्रीय एकता, योग्यता के आधार पर अवसर और लोकतंत्र के प्रति सम्मान शामिल हैं। सिल्वाना पारिमामन की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
0: MMM के पहले कार्यकर्ता हो या फिर पार्टी की अगली पीढ़ी, जोश और उत्साह के साथ साथ संस्थापक सदस्यों को श्रद्धांजलि भी दी गई। मूवमेंट मिलिटेंट मॉरिशियन यानी MMM के 57वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के इतिहास को याद किया गया। MMM के अध्यक्ष गिजा उद्दीम ने पार्टी के सफर पर प्रकाश डाला।
2: Contre la venue de princesse Alexandra, la police y arrête un certain nombre de dirigeants de clubs des étudiants militants. Par la suite, ils ont fini de créer le MMM, où les mots symbolisent l'équerre. Telle partie dans Maurice qui finit de gagner 3 élections générales, 60-0. Une seule partie dans Maurice qui depuis l'indépendance, depuis qu'il nous a créé, depuis 69, toute élection qui finit, il y en a au moins une dizaine de MMM qui délire.
0: MMM qui Yuva Shakha qui adhyaksh Drish Babulal ne parti ke bhavishya par baat ki.
3: Nous visons être plus vivants parce qu'il y a un mouvement politique. Il arrive juste avec son passé. Il vit avec son capacité pour préparer l'avenir. Façon qui va nous engager l'information fait changer. Façon qui se communique fait changer. Et politique aussi, déjà qu'on évolue.
0: MMM के महासचिव राजेश भगवान का कहना है कि पार्टी आज एक अहम मोड़ पर खड़ी है।
4: Parce que je mérite sa considération là. Nous le président du gouvernement pour l'éviter pour eux, pour travailler et pour terminer ce programme là.
0: Parti qui उपनेता आर्यन नवामारे ने MMM के मूल्यों को अपने भाषण में प्रमुखता दी।
5: L'unité nationale n'est pas une option. Il y a une responsabilité, il y a un devoir. Nous en vivons l'île Maurice que nous pour continuer et dans la justice sociale. Le respect de la démocratie et ben institution. En l'île Maurice, code pour une égalité hommes-femmes. Pour le MMM, sa bande valée là, n'est pas une option. Il y a un devoir, il y a une responsabilité.
0: सभी वक्ताओं के अनुसार सितंबर 1969 में युवा आदर्शवादियों द्वारा बनाई गई MMM ने अपने सफर में कई बड़े दौर देखे हैं, कुछ गौरवपूर्ण तो कुछ मुश्किल भरे। उनका कहना है कि MMM आज भी अपने मूल्य सिद्धांतों पर कायम है। इस तरह पार्टी की 57वीं वर्षगांठ कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता और उनके विश्वास का जश्न मनाया गया।
1: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम शनिवार 26 सितंबर की शाम को लंदन के लिए देश से रवाना हो गए। वे यूनाइटेड किंगडम की अपनी इस यात्रा के दौरान शागस मामले पर उच्चतम स्तर पर चर्चा जारी रखेंगे, विशेष रूप से मॉरिशस और ब्रिटेन

0: ब्रिटेन के बीच समझौते के क्रियान्वयन से संबंधित नवीनतम विकास पर बातचीत करेंगे। इस प्रकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शागस मामले पर मुख्य वार्ताकार जोनाथन पावल के साथ उनकी बैठकें होंगी। उन्हें द्वीप समूह पर मॉरिशस के साथ बातचीत के लिए ब्रिटिश सरकार के विशेष दूत भी नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आरियन नवामारी अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगी। दुनिया में मीठे पानी के भंडार लगातार कम होती जा रही है और वर्ष 2025 पिछले 3 दशकों से अधिक समय में सबसे सूखे वर्षों में से एक रहा। ये निष्कर्ष विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 17 सितंबर 2026 को प्रकाशित दुनिया के जल संसाधनों की स्थिति पर जारी नवीनतम रिपोर्ट में सामने आया है। मॉरिशस भी इससे अछूता नहीं है। इसका उदाहरण हमारा मुख्य जलाशय मोगवाक्वा है, जिसमें पानी का स्तर नवंबर 2026 के अंत तक घटकर 20% के गंभीर स्तर तक पहुंच सकता है। वह 32 वर्ष की थी। वह गन्ने के खेतों में काम करती थी और अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली थी। 27 सितंबर 1943 को बेल्वी आगल में हड़ताल कर रहे श्रमिकों के एक जुटाव के दौरान अंजलि कुपेन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका नाम श्रमिक आंदोलन के इतिहास और श्रमिकों के अधिकारों की लड़ाई से हमेशा जुड़ा रहेगा। उनकी मृत्यु के 83 वर्ष बाद मॉरिशस तमिल टेम्पल्स फेडरेशन ने पोटली में उनके स्मारक के सामने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी स्मृति को जीवित रखने का संकल्प दोहराया। सांताना पोस्नो की रिपोर्ट पर अदिति अवतार का विवरण।
1: मॉरिशस के इतिहास की एक महत्वपूर्ण हस्ती बनने से पहले अंजलि कुपेन गन्ने के खेतों में काम करने वाली एक आम महिला थी। 1911 में रिविया जोंपा में जन्मी सुंदरम पावतन बाद में बेल्वी आगल में बस गईं, जहां उन्होंने खेतों में मजदूर के तौर पर काम किया। सितंबर 1943 में बेहतर वेतन और बेहतर कार्य शर्तें जैसी कई मांगों के साथ शक्कर कारखाने के मजदूर हड़ताल पर गए। 27 सितंबर को प्रतिष्ठान के मजदूर एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए इकट्ठा हुए। तनाव बढ़ा, पुलिस ने हस्तक्षेप किया और गोलियां चली। मात्र 32 साल की अपने प्रथम बच्चे के लिए गर्भवती अंजलि कुपेन की गोली लगने से मौत हो गई। घटनास्थल पर ही और 2 लोगों ने जान गंवाई और कुछ दिनों के बाद घायल हुए एक चौथे मजदूर की भी मौत हो गई। इस वारदात ने देश पर गहरा असर किया। जूनियर मिनिस्टर राजन नौसिंगन कहते हैं, ये महान महिला मॉरिशस की हैं और पूरे मॉरिशस को, विशेष रूप से तमिल समुदाय को उन पर गर्व होना चाहिए। अंजलि कुपेन धीरे धीरे मजदूरों के संघर्ष और उस दौर के सामाजिक आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी का प्रतीक बन गई। उनकी कहानी पीढ़ियों तक याद रखी गई और आज तक कई जगहों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं। 27 सितंबर 1943 को जान गंवाने वाली इस महिला की याद में पोर्टलुई में एक स्मारक बना है। मॉरिशस तमिल टेम्पल्स फेडरेशन के अध्यक्ष दौसेन गंगादू कहते हैं, अंजलि कुपेन मजबूती का प्रतीक है। उनके संघर्ष पर कई लेख लिखे गए हैं। मैं नौजवानों से उन्हें पढ़ने की मांग करता हूं ताकि वे सही मायने में एक कामगार की लड़ाई को जान सकें। वे मात्र एक तमिल महिला नहीं बल्कि प्रथम मॉरिशन स्त्री थी जिन्होंने मॉरिशन श्रमिकों के लिए संघर्ष किया था ताकि उन्हें उनका अधिकार प्राप्त हो। ये दिन उस महान महिला के साथ साथ उन सभी अन्य लोगों को श्रद्धांजलि देने का मौका है जिन्होंने बेहतर कार्य शर्तों और उचित सम्मान के संघर्ष में अपनी जान बाजी पर लगाई थी।
0: कई भाषाओं में प्रार्थनाएं, दूर दराज से आए गीत और कई महाद्वीपों के रंगों में रंगी एक चर्च पाम्पलमूसेस के सेंट फ्रांसवा दासीज में मॉरिशस के लोग और इस द्वीप पर रहने तथा काम करने वाले विदेशी इस रविवार को मोंसेनियर जो मिकाएल जोरन के साथ एकत्र हुए। ये उत्सव 112वें विश्व प्रवासी और शरणार्थी दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसे इस वर्ष प्रवासी और शरणार्थी बच्चों के नाम समर्पित किया गया है। साहा ओनो की रिपोर्ट पर अदिति

0: अवतार का विवरण।
1: अलग अलग शब्द लेकिन प्रार्थना एक ही। इस रविवार कॉम्प्रोमाइज़ के सैन फ्रांसवा दासीज गिरजाघर में भिन्न प्रकार की जिंदगी जीने वाले लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं में प्रार्थनाएं की। मलागासी, कमेरूनी, नाइजीरियाई, भारतीय, ये लोग आज मॉरिशस में रहते हैं और काम करते हैं। इस प्रार्थना सभा में हर एक अपने देश का एक हिस्सा

0: मलगासी कामगर कहती है, मैं वाकवा में रहती हूँ, वहाँ सभी परिवार की तरह रहते हैं। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, इसके साथ ही व्यापारी भी अच्छे हैं। केरला मूल के नागरिक कहते हैं, मॉरिशन लोग अच्छे हैं, वे हमेशा हमारी मदद करते हैं, हम यहाँ सभी के साथ मिलकर रहते हैं। नाइजीरियाई मूल के नागरिक कहते हैं, मेरा यहाँ अच्छा स्वागत हुआ है, लोग भले हैं, लेकिन हमें कभी कभी अपने देश की याद आती है, खासकर वहाँ के लोग और खान पान। इस सभा ने उन सभी की पहचान उजागर की। ये पहल एक बहुभाषी टीम की रही। प्रार्थनाओं के दौरान अलग अलग भाषाओं में पाठ, भजन और प्रार्थनाएं हुई, बच्चे भी इसमें शामिल हुए। ये मौका रहा अपनी मातृभाषा में प्रार्थनाएं करने का। इन आवाजों ने उस विषय को दोहराया जिसे पोपलियो 14 प्रवासियों और शरणार्थियों के 112वें विश्व दिवस के लिए चुना है, यानी इनमें से एक बच्चा भी। ये आंकड़े से आगे देखने और उन नाबालिगों के चेहरों और कहानियों पर ध्यान देने का आह्वान है जिन्हें अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, कभी युद्ध, कभी गरीबी तो कभी हिंसा के कारण। मॉरिशस के बिशप जॉन मिकाएल जॉन ने कहा, जब बड़े एक जगह छोड़ते हैं तो अक्सर बच्चों को भी साथ जाना पड़ता है। कभी कभी यहाँ जब उन बच्चों की दस्तावेजें नियमित नहीं होती तो वे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लेकिन कानून कहता है कि अगर किसी अभिभावक के पास जरूरी दस्तावेज न भी हो तो उसके बच्चे को शिक्षा का अधिकार होता है। आप प्रवासी भी इंसान होते हैं, हम भी अलग अलग जगहों से आए हैं, तो हम भी एक तरह से अप्रवासी हैं। इसके अलावा कई मॉरिशन परिवार के सदस्य भी विदेश में बसने जाते हैं। मॉरिशस में भी आप्रवास कई रूपों में मौजूद हैं। विदेशी कामगारों के सफर के पीछे एक कहानी, एक संस्कृति और कभी कभी हजारों किलोमीटर दूर पीछे छूटा हुआ परिवार होता है। पोम्पलेमोसिस में लगी इस प्रार्थना के अंतर्गत सरहदें कुछ हद तक धुंधली हुई।
1: ओजेम्पिक, विगुवी या फिर मुंजारो, सितारे और अन्य इन्फ्लुएंसर्स इन इंजेक्शन के वजन घटाने वाले गुणों का बखान करते हैं जिन्हें आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के इलाज के लिए निर्धारित किया जाता है। वे इन दवाओं का इस्तेमाल भूखे दबाने वाली दवा के रूप में करते हैं जिसके दिखाई देने योग्य परिणाम भी मिलते हैं। केवल डॉक्टरों के प्रेस्क्रिप्शन पर मिलने वाली इन दवाओं का इस्तेमाल सख्त मेडिकल निगरानी में किया जाना चाहिए। सिंचा मुटु की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
2: मॉरिशस में हाल ही में उपलब्ध हुई दवा ओजेम्पिक में मुख्य रूप से GLP-1 नाम का एक हार्मोन होता है। ये हार्मोन मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है और ब्लड शुगर तथा भूख को नियंत्रित करने में मदद देता है। ओजेम्पिक में इसे अधिक मात्रा में इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। मेडाक्टिव की फार्मासिस्ट हेमानंद कुसिरतन कहती हैं, ओजेम्पिक एक इंजेक्शन है जो खासकर टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों को दिया जाता है। ये खून में शक्कर की मात्रा नियंत्रित रखने के लिए दिया जाता है। सप्ताह में एक बार प्रेस्क्रिप्शन पर ही मिलता है और मेडिकल फॉलोअप भी करना पड़ता है। इसका इस्तेमाल मोटापे के इलाज के लिए भी किया जाता है जिसमें शरीर के वजन में 16% तक कमी आने की संभावना होती है। डॉक्टर निशांत नंदलाल कहते हैं, इसका असर सिर्फ वजन पर ही नहीं पड़ता, दिल के लिए भी ये अच्छा है, खासकर जिन्हें दिल की परेशानियां होती हैं, ये किडनी के लिए भी अच्छा है। किस मरीज को और कैसे ये देना चाहिए ये जानना जरूरी है।

0: दुनिया भर में इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल सौंदर्य और शरीर का वजन कम करने के लिए भी किया जा रहा है और किसी भी दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डॉक्टर निशांत नंदलाल कहते हैं, साइड इफेक्ट्स में खासकर पाचन की समस्या हो सकती है। कुछ मरीज मसल्स खो देते हैं, इस तरह उनका मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। दुनिया के कई हिस्सों में दृष्टि से जुड़ी समस्याओं के मामले भी सामने आए हैं। ये दवाई का असर नहीं बल्कि तेजी से वजन घटने का असर है। अगर डायबिटीज या दृष्टि पर नियंत्रण नहीं रखी गई, ध्यान नहीं दिया गया और जब इस दवाई का प्रेस्क्रिप्शन देते हैं तो ये खतरा पैदा होता है। इलाज बंद करने के बाद दोबारा वजन बढ़ने की संभावना भी रहती है और कम किए गए वजन का 60% तक वापस बढ़ सकता है। इसलिए डॉक्टर की निगरानी में इलाज कराना बहुत ही जरूरी है।
1: पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र अवधि है जिसमें लोग अपने पूर्वजों यानी पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार यह आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस साल 27 सितंबर को पितृपक्ष शुरू हो रहा है जो 10 अक्टूबर को समाप्त होगा। विधिमा सिबरन की रिपोर्ट।
2: पितृपक्ष यानी वो समय जब हम अपने उन लोगों को याद करते हैं जो अब हमारे बीच नहीं है, उनके लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान करते हैं। आम भाषा में इसे 16 श्राद्ध कहा जाता है। भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक इस परंपरा को माना जाता है। मान्यता है कि हमारे सारे पूर्वज, हमारे सारे पितृ अपने परिवार के साथ पृथ्वी में वापस आते हैं और उनके लिए किए गए तर्पण और श्राद्ध को वे स्वीकार करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में धरती पर आते हैं और परिजनों द्वारा किए गए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म से तृप्त होकर सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।
3: जो लोग बड़े बुजुर्गों का वंदन, पूजन, पाठन करते हैं, उनकी 4 चीज़ें अपने आप बढ़ जाती हैं। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये चारों के चारों चीज़ें बढ़ाने के लिए पितृपक्ष हमारे सामने हमारे क्रांतिद्रष्टा ऋषियों ने दिया है। हम इसमें पितरों का पूजन करते हैं। उसमें कोई बहुत विशेष सामग्री नहीं है, बस आटे का, जौ के आटे का या चावल का पिंड बना करके पिंड को रख करते हैं, उसमें पितरों को बुलाते हैं। जो कुछ हमसे भोजन बनता है, भोजन सामने रखा, पितरों को प्रणाम किया, पितर आए, उन्होंने भोजन इत्यादि ग्रहण किया और आशीर्वाद दे करके वो चले जाते हैं। जहाँ पितरों का आशीर्वाद होता है वो घर फलता फूलता है, उस घर में समस्याएँ नहीं होती हैं। जहाँ पितरों का प्रकोप होता है, जहाँ पितर प्रसन्न नहीं होते हैं, उस घर में सुख शांति नहीं रहती है, वहाँ विकास रुक जाता है। कभी कभी तो वंश की वृद्धि भी रुक जाती है, वंश आगे नहीं बढ़ पाता है पितर के श्राप से। इसलिए ये बहुत अच्छा मौका होता है कि हमारे लिए 15 दिन का समय है कि हम 15 दिनों में पितरों का पूजन करें, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।
2: 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण है जिसके बाद किए जाने वाले पितरों, श्राद्ध और पिंडदान विस्तार से बताया गया है। इन दिनों में दान पुण्य, ब्राह्मण भोजन और गरीबों की मदद करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इन 16 दिनों में नए कपड़े, आभूषण या संपत्ति खरीदना और किसी भी तरह के मांगलिक या शुभ कार्य जैसे विवाह या गृह प्रवेश नहीं किए जाते हैं। पितृपक्ष केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है बल्कि ये अपने बुजुर्गों और पूर्वजों के प्रति प्रेम, निष्ठा और श्रद्धा प्रकट करने का एक सुंदर तरीका है।
1: शिमगिरी में बाजार की अब एक नई जगह है, एक बिल्कुल नया भवन जो दक्षिण के इस हिस्से के व्यापारियों और उपभोक्ताओं को रोज स्वागत करता है। सब्जियां, फूल, कपड़े, खाद्य उत्पाद, ये मंडी यहाँ काम करने वाले लोगों को अधिक जगह और सबसे बढ़कर बेहतरीन स्थिति प्रदान करना चाहता है।

विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वी अमेरिका में करोड़ों लोग एक शक्तिशाली तूफान की चपेट में हैं, जिसके कारण तटीय इलाकों में बाढ़, बिजली कटौती, यात्रा में भारी बाधा और स्टेडियम के कार्यक्रम रद्द करने पड़े हैं। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने वाला है अगले 24 घंटों के लिए। पूर्वानुमान, आज रात के दौरान बादलों के घेराव के साथ हल्की सी बारिश होगी। कल सुबह पूर्वीय ढलानों और ऊंचे इलाके पर बादल घेराएंगे और वर्षा होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। तापमान, सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त 6:07 पर, जबकि कल सूर्योदय 5:54 पर।

तो देश विदेश की नई खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

0: अशोक समाचार सुनते हैं। Chemin du Verga, Glenpark Vakwa में, Chemin du Verga, Glenpark Vakwa में 77 साल के 77 years old के श्री बाला सुब्रमण्यन पाती, श्री बाला सुब्रमण्यन पाती, जिन्हें सब लोग किसना के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे, कल दिन के 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती जेंसी पाची के घर Chemin du Verga, Glenpark Vakwa से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए Solferino Vakwa की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। नाटुआ रोड ट्रियांगुडलेंस में 67 साल की 67 years old की श्रीमती स्वस्ति पुरेश पैदाइशी नाम पुनाई, और जिन्हें सब लोग स्वस्ति मदन कोंगो के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके बेटे श्री मनेश्वर पुरेश के घर नातवा रोड थ्रियांगल गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की श्मशान भूमि ली जाए जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। क्लियाफोन नंबर दो वाकवा में 65 साल की 65 years old की श्री श्याम गजादव, जिन्हें सब लोग रोशन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे उन्हीं के घर क्लियाफोन नंबर दो वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट हाफ पास्ट नून। रॉयल रोड मोंफेयर चिल में जो स्नो वाइट सुपरमार्केट के पास हैं, 73 साल की 73 years old की श्री जन्मजय मुतुजी, जिन्हें सब लोग गासों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री गजन मुतुजी के घर रॉयल रोड मोंफेयर चिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंचिलिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 11 AM। सुभ्राची रोड बुनाकोय में 56 साल के 56 years old के श्री रविन जमना, जिन्हें सब लोग मुनु के नाम से भी जानते थे, और जो NTC के पूर्व चालक थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनकी पत्नी श्रीमती दीपा किसुंदेया जमना के घर सुभाची रोड भुनाकई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट हाफ पास्ट नून। और महात्मा गांधी रोड थ्वाबुचिक थ्रियोले में 84 साल की 84 years old की श्रीमती लीलावती गुलजा, पैदाइशी नाम काउल, और जिन्हें सब लोग मामा सुदेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के ढाई बजे उन्हीं के घर महात्मा गांधी रोड थ्वाबुचिक थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यमिनिस्त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट हाफ पास्ट 2 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है। Your news on NBC Play and NBC.mu.
1: Music, tap tap tap. RM2 Radio Musti.

0: Your number one Bollywood station.
1: एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है रोशनी जी की ओर से, जिन्होंने लिखा है, किशन जी हम आपको 4 बजे से सुनते आ रहे हैं, सभी के सभी गाने एकदम लाजवाब। अफसोस हमें पहले मैसेज करने का समय नहीं मिला, अब मैं मैसेज कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इन सभी गानों के लिए। रोशनी जी आपकी तरह हम यकीन है और हमारे बहुत सारे लिसनर्स के दिल में कुछ ऐसी भावना होगी। फॉर यू ऑल दिस सॉन्ग।

0: करे हर खुशी अधूरी है। वो खुशी ही क्या जिसमें मेरे राम का नाम न हो, वो खुशी ही क्या जिसमें मेरी माँ शामिल न हो, वो खुशी ही क्या जिसमें हम अपने पिता का हाथ थाम न सके, जिसमें अपनी बहन की राखी धारण न कर सके। This next one going for Anju ji और उनकी पूरी फैमिली जो नुवेल फ्रांस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
1: Radio Masti
0: साथ ही साथ देविका रानी जी के लिए और उनकी पूरी फैमिली के नाम और भाई सोना के लिए

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती,
2: क्योंकि तू धड़कन में दिल, दिल और धड़कन कभी जुदा नहीं हो सकते। धड़कन दिल के बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, और दिल धड़कन के बिना अपना वजूद भी खो देता है। सो हम आपको छोड़े जा रहे हैं, लेकिन दिल और धड़कन की तरह हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दिल का ख्याल रखिएगा, और हमारी धड़कनों को भी आप उनका ख्याल रखें। आपको छोड़े जा रहे हैं हमारे दोस्त निखिल के हाथों में। बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा गाता भी है, और उनका सिलेक्शन भी लाजवाब है। I'm going to catch you once again next weekend. तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद, आदाब, जय सिया राम।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: Good evening, Mauritius. क्या हाल चाल? आज है 27 सितंबर, यानी सितंबर का आखिरी संडे. एक और महीना और मुझे खत्म होने को है. अब पता नहीं आपके लिए सितंबर कैसा रहा. कुछ अचीवमेंट्स, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स, कुछ नए एक्सपीरियंसेस और कुछ ऐसे प्लान्स जो भी पेंडिंग है. लेकिन फिलहाल इस सब टेंशन को साइड में रखती है. जो हो गया सो हो गया. वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा. जो आने वाला है उसकी फिक्र भी हम कल ही करेंगे. आज की शाम म्यूजिक के नाम, यादों के नाम और उन गानों के नाम जो कभी पुराने नहीं होते. मैं हूं निखिल और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड सिजला ओनली ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर अपनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स का वेट करते रहते हैं सेलिब्रेट करने के लिए कि हाँ जब ये हो जाएगा तो पार्टी करेंगे, ये डिप्लोमा मिल जाएगा तो पार्टी करेंगे, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी विंस को भी एक्नॉलेज करना चाहिए। एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन कर ली, एक पुराना काम कंप्लीट कर लिया, किसी अपने के लिए कुछ वक्त निकाल लिया, या बस एक डिफिकल्ट दिन को हैंडल कर लिया। दीज थिंग्स काउंट। तो सितंबर खत्म होने से पहले अपने आप को थोड़ा क्रेडिट दीजिए। आप जितना सोचते हैं शायद उससे ज्यादा आप हैंडल कर पाए। आप इससे बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत स्ट्रांग हो। और आपके लिए ये अगला गाना

0: Hollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: छुपाना मुश्किल है. अगर आपके सितंबर का एक साउंडट्रैक होता तो वो कौन सा गाना होता? कुछ हैप्पी या फिर इमोशनल या फिर वो जो आप रिपीट पर सुनते रहते हैं? थिंक अबाउट इट, सोचकर बताना. 5499-1294 पर आपके फरमाइशों का हमें है इंतजार.

0: Hot Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूंगा आपसे, आपके साथ, क्योंकि म्यूजिक के बारे में भी है और किसी भी आर्ट फॉर्म के बारे में भी है। आप एक ही गाना 10 साल पहले सुनते हैं ना और आज सुनते हैं तो एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। पहले जो गाना रोमांटिक लगता था आज उसमें यादें मिलती हैं, जो बोल पहले समझ नहीं आते थे आज एकाएक रिलेटेबल लगने लगते हैं। गाना वही है लेकिन लिसनर बदल जाता है। शायद इसीलिए कुछ कॉम्पोजिशंस टाइमलेस होती हैं क्योंकि वो हमारे साथ ग्रो करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं।

And yes, this was Tum Mile title song from the movie Tum Mile 2009 Shafqat Amanat Ali ki awaaz. और तुम मिले से याद आया कि अब अक्टूबर आने वाला है भाई, तो रेजोल्यूशंस का सीजन भी शुरू हो सकता है. सितंबर को गुड बाय कहने से पहले एक छोटी सी विश करते हैं, अक्टूबर में हम थोड़ा ज्यादा प्रेजेंट रहें, अपनों को थोड़ा ज्यादा टाइम दें और खुद पर थोड़ा कम प्रेशर डालें. गोल जरूर रखें लेकिन रास्ते में जो अच्छा मिल रहा है उसे मिस ना करें, और जो बुरे रास्ते हैं वो हम वहीं पर छोड़ दें, उन्हें हम खुद कह दें कि छोड़ आए हम वो गलियां.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, मार्च 1996 से होकर आते हैं 2026 की ओर विद द फर्स्ट रिक्वेस्ट ऑफ दिस इवनिंग. जी हाँ, आपके कुछ मैसेजेस हम पढ़ लेते हैं. जी हाँ, सुया बिहारी जी ने हमको मैसेज भेजा है. हेलो भाई जी, होप ऑल इज गोइंग वेल इन RM2. थैंक यू वेरी मच. All is indeed going well. आपका साथ रहा तो सब ठीक होगा. I'm with my radio in my kitchen, cooking and enjoy the lovely songs. और आपने मांगा था सैयारा का एक गाना जो आपको पहले से मिल गया. क्या बात. यहाँ ये अगला मैसेज फ्रॉम अंतिश. वांट टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू एवरीवन लिसनिंग टू वंडरफुल शो एंड आल्सो टू माय वाइफ वर्षा. वर्षा जी आपके लिए और अंतिश जी आपके लिए ये अगला गाना जिसको रिक्वेस्ट किया है. And this is a very special request from Roshni ji. Bahut hi acha selection hai. May I request the song Tera Hua Sahiba?

द मूवी मुसाफिर कैफे प्लीज थैंक यू शुभ रात्रि आपको ये फिल्म जिन जिन लोगों ने देखी है आप हमको बता सकते हो मुझको बता सकते हो इज इट वर्थ वॉचिंग बहुत सारे लोगों ने इसके बहुत अच्छे रिव्यूज डाले हैं और म्यूजिक एल्बम तो भाई वाह

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, वेलकम बैक दोस्तों. और जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें ये है बॉलीवुड सिज़ला और मैं हूं निखिल आपके साथ इस संडे इवनिंग पर. बज गए हैं 8 और हम आ चुके हैं अपने शो के दूसरे घंटे में. वैसे एक बात नोटिस की है आपने, संडे की शाम जो होती है वो एक अजीब सा एनर्जी होता है, उसमें एक मिक्स होता है. एक तरफ वीकेंड खत्म होने का दुख होता है और दूसरी तरफ एक नए वीक शुरू होने का जो एक्साइटमेंट है वो और ज्यादा होता है. और सितंबर का तो आज लास्ट संडे है, मतलब कुछ ही दिनों में कैलेंडर बदलने वाला है. लेकिन कैलेंडर बदलने से जिंदगी ऑटोमेटिकली नहीं बदलेगी ना, है? इसके लिए हमें खुद को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. तो नए महीने के रेजोल्यूशंस बनाने से पहले आज की शाम एंजॉय कर लेते हैं. बाकी लाइफ को सॉर्ट करने के लिए पूरा अक्टूबर पड़ा है. फिलहाल लेट द म्यूजिक डू द टॉकिंग.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, ये गाना आदि शाह फ्रॉम गांव की तरफ से उनके राजा पति के नाम, जी हाँ उनके पति का नाम राजा है, खासकर आपके नाम, ये स्पेशल रिक्वेस्ट।

0: यहाँ दिस सॉन्ग गोज आउट स्पेशली टू ऑल दोस हु आर ड्राइविंग. अभी ड्राइव कर रहे हैं तो सेफली कीजिएगा, वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा, लेकिन स्पीड थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि किसी ना किसी को तो आपका इंतज़ार होगा ही होगा, उसको डिसअपॉइंट मत कीजिएगा. ये गाना खास आपके लिए.
1: बॉलीवुड सीज़लर
2: RM2, your number one Bollywood radio station.

0: Hollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: माही वे फ्रॉम हाईवे, क्या गाना है और गाने के साथ एक सोच भी। या आजकल के एक अजीब सा प्रेशर है ना कि फोन खोलो तो किसी की प्रमोशन, किसी का एंगेजमेंट, किसी का नया घर, किसी के हॉलीडेज पिक्चर, और फिर अपनी लाइफ को देखकर लगता है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। आपको भी लगता है ना, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सोशल मीडिया पर हम अक्सर लोगों की लाइफ की सिलेक्टेड मोमेंट्स देखते हैं, उनकी पूरी कहानी नहीं। हमें उनके अचीवमेंट्स दिखाई देते हैं, उनके जो पार्टीज हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल, उसके पीछे का मेहनत, जो सैक्रिफाइस वो करते हैं, शायद वो नहीं दिखाई देता। और फिर हम अपनी पूरी इम्परफेक्ट लाइफ किसी और के बेस्ट मोमेंट्स से कंपेयर करने लग जाते हैं। ये थोड़ा सा अनफेयर हुआ ना। या सितंबर का आखिरी संडे है, हो सकता है किसी और के लिए ये महीना ब्रेक थ्रू रहा हो, या फिर इट वाज अ बिग विक्ट्री और आपके लिए ये बस सर्वाइवल बनकर रह गया। लेकिन दोनों एक्सपीरियंसेस रियल हैं, आपका रेस और उनका रेस अलग है, आपका फिनिश लाइन और उनका फिनिश लाइन बहुत ही अलग है। आप बस परेशान मत होइए, बस हमारे साथ ये गाना सुनिए।
0: RM2, Radio Masti.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: John from Tere Ishq Mein, A.R. Rahman ki awaaz mein. और साथ साथ में ये शायद कामिल भी हैं दीवाना दीवाना वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट जो कवाली प्रॉपर कवाली सॉन्ग्स हम कह सकते हैं और कोशिश यही रहती है मेरी कि जब भी मैं आता हूँ हर बार जब मैं आता हूँ तो ऐसे कुछ गाने चलाऊँ जो आपने शायद रेडियो पर कम ही सुने होंगे ये अगला गाना खास उसी कैटेगरी में आता है ये दो अगले गाने उसी कैटेगरी में आते हैं और ये जाता है खासकर सोना भाई के लिए जो परेशान गाने से इतने परेशान हुए कि उन्होंने कहा कि कुछ लाइट बजाओ भाई उनको भी कल काम पर जाना है तो ठीक है सोना भाई के सोने के लिए ये दो गाने कसम We'll start with Kasam from Adnan Sami. Teri Kasam, album ka naam hai. It was 2004 and it's one of the most romantic tracks jo mujhe pata hai.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: तेरे बिन आपके बिन मेरा भी दिल नहीं लगता, लेकिन क्या करें, अभी वक्त को तो चलना है और शो शुरू हुआ है तो खत्म भी होना है। सितंबर का आखिरी संडे भी गुजर गया, एक और महीना हमारी जिंदगी की किताब में जुड़ गया, अपनी कुछ यादों के साथ, कुछ लेसन्स के साथ, कुछ अनसुलझे सवालों के साथ। लेकिन शायद जिंदगी का मजा भी इसी में है कि हर चीज का जो सॉल्यूशन है वो मिलना जरूरी नहीं, कभी कभी बस सफर को एंजॉय करना भी काफी होता है। तो इस नए हफ्ते में अपना ख्याल रखिएगा, अपनों के लिए वक्त निकालिएगा और अपने ड्रीम्स को थोड़ा और टाइम दीजिएगा। मैं हूं निखिल, आपसे इजाजत चाहता हूं इन दो आखिरी गानों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय संडे इवनिंग। आपका प्यार और आपका साथ इस शो को स्पेशल बनाता है। हैव अ ब्यूटीफुल संडे इवनिंग, और अक्टूबर में फिर मिलेंगे नए गाने, नई बातें और कुछ नए ख्यालों के साथ, नए सोच के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लिसनिंग और म्यूजिक से अपना कनेक्शन बनाए रखिए थ्रू रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
1: Late night grooves.
0: RM2 Radio Musti.
3: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। आप सभी लोगों का स्वागत है इन योर लेट नाइट ग्रूव्स ऑन RM2 रेडियो मस्ती। वैसे रात धीरे धीरे अपनी बाहों में हमें समेट रही है। कभी कभी ना दिन के भागदौर के बाद बस एक सुकून भरी रात, एक अच्छा सा गाना और किसी अपने की याद ही काफ़ी होती है। वैसे अगर आज आपका दिन अच्छा नहीं गया तो प्लीज़ उसे अपने दिल पर लेकर मत सोइए। कल एक नई सुबह होगी, नए मौके होंगे और शायद वो खुशियाँ भी जो आज आपसे थोड़े से दूर हैं। सो रिलैक्स, स्माइल, लेट द म्यूजिक हील योर हार्ट, क्योंकि यू आर लिसनिंग to your late night grooves with me, RJ Ginisha.

दोस्तों, प्यार हमेशा बड़े बड़े वर्ड्स का एक्सपेंसिव। मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, प्यार जो है ना, हमेशा बड़े बड़े वर्ड्स या एक्सपेंसिव गिफ्ट्स से प्रूव नहीं होता है। कभी कभी एक सिंपल सा हैव यू ईटन और टेक केयर माई स्वीट हार्ट या बिना किसी रीजन का एक कॉल करना ही दिल को बता देता है ना कि कोई है जो हमारी फिक्र करता है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है तो प्लीज उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आज रात उन्हें एक छोटा सा मैसेज जरूर भेजिए, बस कह दीजिए थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, क्योंकि प्यार जताना भी जरूरी है और प्यार निभाना भी।

0: रेडियो मस्ती।
1: आई रियली होप कि जितने प्यारे प्यारे गाने हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इन योर लेट नाइट ग्रूव्स, आपको दिल से अच्छा लग रहा है। वैसे कभी कभी हम बातों को लेकर परेशान होते रहते हैं ना, जो हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। किसी ने क्या कहा है, किसी ने क्या सोचा है, किसने हमें समझा और किसने नहीं समझा, बट डार्लिंग हर किसी को एक्सप्लेन करते करते अपने आप को मत थका दीजिए। आज रात बस इतना कीजिए, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। डीप ब्रेथ लीजिए, अपने दिल को हल्का कर लीजिए और म्यूजिक म्यूजिक के साथ फ्लो कीजिए, क्योंकि पीस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल काइंड ऑफ

वैसे देखा जाए तो रात का एक अलग ही कनेक्शन होता है यादों के साथ, है ना। दिन में हम कितने बिजी होते हैं, कितने बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है दिल उन लोगों के पास चला जाता है जो शायद हमसे दूर है। किसी की स्माइल, किसी की आवाज, किसी

किसी के साथ गुजरा हुआ एक छोटा सा मोमेंट सब याद आने लगता है। अगर आप आज रात भी किसी को मिस कर रहे हो तो याद रखिए, डिस्टेंस सिर्फ दो जगह के बीच होते हैं, दिलों के बीच में नहीं। अब बस इस खूबसूरत एहसास का नाम लीजिए और ये अगला गाना आप आराम से सुन लीजिए।

0: I really hope कि आपको दिल से ये खूबसूरत गाने ये तराने जो हम पेश कर रहे हैं on Radio Masti in your late night grooves आपको अच्छा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर फिलहाल अपनों से दूर अभी भी आप काम पे हो, you are working to home, आपको विश करना चाहेंगे पों को गाश माई डिया। और खूबसूरत अगला गाना जो हम पेश करने वाले हैं वो खासकर हमारी तरफ से आपके लिए, तो चलिए आप एंजॉय कीजिए, गुनगुनाने के लिए तैयार हो जाइए।
1: RM2 Radio Masti.

मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, लाइफ परफेक्ट नहीं होती है और शायद इसीलिए ब्यूटीफुल होती है। कभी हम हंसते हैं तो कभी हम रोते भी हैं, कभी जीते हैं और कभी हार कर भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। अगर आज आप किसी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं तो बस एक बात याद रखिए, दिस फेज इज नॉट योर होल लाइफ। ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपने पहले भी बहुत कुछ फेस किया होगा अपनी जिंदगी में और आज भी आप यहाँ हैं, स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, है ना। सो यू डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ। कभी भी लाइफ में द बेस्ट चैप्टर्स ऑफ योर लाइफ में स्टिल बी वेटिंग फॉर यू।

आज रात एक प्रॉमिस खुद से कर लीजिए आप कि आप अपने आप को थोड़ा ज्यादा प्यार करेंगे। हम सब दूसरों के लिए इतना करते हैं, उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी खुशियों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, लेकिन कभी कभी खुद से भी पूछना चाहिए, मैं ठीक हूँ ना। यू डिजर्व लव, यू डिजर्व रिस्पेक्ट, पीस एंड ऑल्सो हैप्पीनेस, नॉट बिकॉज समवन एल्स ने कहा है, क्योंकि आप जो हो उसके लिए यू डिजर्व एवरीथिंग। सो टुनाइट स्माइल एट योरसेल्फ एंड बी प्राउड कि आप जिंदगी में इतना कुछ कर गए हैं, फिर भी यू आर स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्गर।

एक गाने की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या होती है? एक ही गाना किसी के लिए बस म्यूजिक होता है और किसी के लिए उनकी पूरी कहानी। एक गाना सुनते ही कोई चेहरा याद आ जाता है, कोई जर्नी, कोई पहली मुलाकात या फिर वो पल जो कभी वापस नहीं आएगा। That's the magic of music. It keeps our memories alive. तो आज की इस रात को let's create some beautiful memories together in your late night grooves. क्योंकि years later maybe आप इस गाने को सुनेंगे और याद रखेंगे कि हाँ I used to listen to this beautiful show and a beautiful गाने किनिशा के साथ on Radio Masti.

RM2 Radio Masti. तो चलिए जी, टू ऑल दोस्त हु आर ट्रूली मैडली डीपली इन लव, हाँ जी, टू ऑल दोस्त जो बड़े प्यार से शिद्दत से भी हमारा साथ दे रहे हैं, एक छोटी सी बात, प्यार में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, प्रेजेंट होना जरूरी है। अपने जो बिजी स्केड्यूल में ये थोड़ा सा वक्त आप निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए, उनकी बात सुनिए, उनके इमोशंस को समझिए। समटाइम्स द पर्सन यू लव डजंट नीड अ सॉल्यूशन, दे जस्ट नीड टू नो दैट यू आर देयर। सो होल्ड ऑन to the people who make your heart feel like home. Late night grooves mein aise hi romantic gaanon ka ye silsila chalta hi rahega, dil ki baatein aur beautiful vibes ke saath. Main hu aapka saath dene ke liye, it's all Jaggi Nisha. To raat abhi baki hai dosto, music bhi abhi baki hai aur dil ki baatein karenge aap logon ke saath.

So my प्यारे प्यारे listeners, रात का ये वक्त इतना खूबसूरत होता है ना कि दिन भर की आवाजें धीरे धीरे खामोश हो जाती हैं और फिर बस हम हमारे thoughts और music जो है साथ दे जाते हैं. कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है. तो अगर आज आपके दिल में कोई बात है जो किसी से कह नहीं पा रहे हो तो उसे म्यूजिक के हवाले कर दीजिए. शायद कोई गाना आपकी फीलिंग्स को लफ्जों में बयां कर दे. मैं हूँ आज एक निशा जो लेट नाइट ग्रूव्स में आपका साथ दे रहे हैं, जहां हर रात एक नई कहानी और हर गाने में एक नया एहसास मिलता है.

Well guys, I really hope कि हर एक गाना आपको दिल से अच्छा लग रहा है और बस आप भी हमारे साथ गुनगुना रहे हैं। तो वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यार प्यार क्या होता है, तो शायद उसके बहुत सारे डेफिनेशंस होंगे आपके लिए, लेकिन प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं होता है, इस बात को याद रखना। कभी इंतजार का, कभी दुआओं का और कभी सिर्फ एक मुस्कान का नाम भी होता है प्यार। आज के रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग्स आपके दिल को जरूर छू जाएंगे। बिल्कुल हमारे प्यारे प्यारे रेडियो मस्ती फैमिली, अगर आप किसी को मिस कर रहे हो, आप किसी की यादों में खोए हुए हो, कहना मुश्किल लग रहा है, तो आज का गाना उसकी जगह बोल देगा। दिल से सुनिए, क्योंकि म्यूजिक कभी झूठ नहीं बोलते।

टाइम बीता चला जा रहा है और हमें पता है कि इस वक्त बहुत सारे लोग जो है फिलहाल ड्राइव कर रहे हैं, यस, या कहीं से लौट रहे हैं या कहीं जा रहे हो आप, या हो सकता है कि आप ड्राइवर का काम करते हैं, यू आर ड्राइविंग राइट नाउ. कहीं से भी अगर आप ड्राइव करते करते हमारा साथ दे रहे हो, सो प्लीज़ ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चला दीजिए और बस रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए, क्योंकि अगला गाना जो हम पेश करने वाले हैं आप लोगों के लिए, इन योर लेट नाइट ग्रूव्स, आई एम प्रीटी मच श्योर यू आर गोइंग टू लव इट. तो बस दिल को थाम लीजिए.

खूबसूरत बातें तो हम करते ही रहते हैं लेकिन खूबसूरत खूबसूरत गाने भी हम पेश कर रहे हैं जितने भी हमारे लिसनर्स अक्रॉस द ग्लोब हमारा साथ दे रहे हैं मॉरिशस के बाहर हो लेकिन हमारे दिल के जो करीब रहते हैं उनके लिए हम अगला नगमा पेश करना चाहेंगे। हाँ जी मुझे पता है अपनों से दूर रहकर जब आप ऐसे सुनते हैं ना गाने ऑन रेडियो तो बस अपनों की ही याद आ जाती है और उम्मीद करते हैं कि इन खूबसूरत गानों से आपकी हम यादों को ताज़ा कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में आपके होंठों पर मुस्कुराहट लेकर आए हैं। तो चलिए ये अगला गाना किनिशा की तरफ से हमारे सारे म्यूजिक लवर्स के नाम जो मॉरिशस के बाहर हैं और हमारा साथ दे रहे हैं।

0: FM 2
1: Radio Masti
0: Feel the Masti
2: दिल की बातें जो है ना दिल में दबा के रखने से कोई फायदा नहीं होता है कभी-कभी क्या होता है ना कि कुछ गाने ऐसे हम सुनते हैं इट रिलेट्स टू आवर स्टोरी और ऐसा लगता है कि ये गाना तो सिर्फ हमारे लिए ही बनाया गया है जी हां दोस्तों बॉलीवुड का ऐसा कोई भी गाना नहीं है जो किसी ना किसी के लाइफ के सिचुएशन के साथ फिट नहीं होता है तो चलिए अगर यादों में कोई है दिल में ये कोई है और फिलहाल के लिए आप मुस्कुरा रहे हो उनको याद करते करते तो ये अगला नगमा हमारी तरफ से आपके उनके नाम जो आपके दिल में बसते हैं

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारा साथ देने के लिए इन योर लेट नाइट ग्रूव्स. लेकिन फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए. जी हाँ, हम अभी जा तो रहे हैं लेकिन वादा करते हैं फिर से लौट के आएंगे कभी भी फिर से लेट नाइट ग्रूव्स में आपका साथ देने के लिए. शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना और कीप ऑन स्प्रेडिंग लव.

0: कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: गारे गारे
1: ये गरबड़ दे
0: गारे गारे
1: ये सुर बदल
0: गारे गारे
1: ये हमक बटला
0: गारे गारे
1: ये सुर की तरह दिए ये सुर ये इन्ना आया है तो ये
2: कचतुर नार।

0: क्या रहा गोला चतुर गोला चतुर एक पे रहना या गोला बोलना या चतुर बोलना का
1: एक चतुर ना।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते